0: प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Ashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new term.

श्रोताओं, शनिदेव हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। वे किसी के शत्रु नहीं बल्कि न्याय के प्रतीक हैं। जो सत्य, परिश्रम, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए अब सुनते हैं हनुमान चालीसा मनोज मिश्रा की आवाज में।

हे मारुति नंदन, हे पवन सुत, हमारे जीवन से अहंकार, आलस्य और अन्याय को दूर करें। हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य का, समृद्धि का वास हो। आपके आशीर्वाद से हम अच्छे कर्म करें और समाज की सेवा करने का सामर्थ्य प्राप्त करें। आइए इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं ये आरती।

हे पवन सुत हनुमान, हमें बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें, हमारे मन से भय अहंकार और निराशा को दूर करें, हमें सत्य धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें तथा सभी के जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करें। इसी मंगल कामना के साथ आइए अब सुनते हैं ये शब्द।

एक बार बाल गंगाधर तिलक जी अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। वकालत पास करने पर उनके सभी मित्र उनसे पूछ रहे थे कि वे अब आगे चलकर क्या करेंगे। एक मित्र बोला, तिलक भाई, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए भी कुछ सोचा है? क्या अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की बात सुनकर तिलक बोले, मित्र अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बनाकर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं करना चाहता जहां दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई। सभी व्यक्ति अपने अपने कामों में लग गए। समय बीतता चला गया। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और तनख्वाह थी मात्र 30 रुपए महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ जिसने कुछ

समय पहले उनका मन जानना चाहता कि वे वकालत पास करने के बाद क्या करेंगे। मित्र से ना रहा गया, वह अपना काम धाम छोड़कर तिलक के पास जा पहुंचा और उनसे बोला, अरे तिलक, यह क्या किया तुमने? तिलक बोले, क्यों क्या किया मैंने? मित्र बोले, भला वकालत की डिग्री लेकर भी कोई अध्यापक बनता है? अरे, क्या आपको शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं मालूम? आज अध्यापक वर्ग समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है। दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ भाई, अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम में बहुत योग्यता है, सरकारी अधिकारी बनो, नामी वकील बनो। अरे, अगर इन सब में भी मन नहीं है तो व्यापार ही कर लो। मित्र की बात सुनकर तिलक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मित्र, मैंने जो पेशा चुना है ना, यह बहुत पवित्र है, ईमानदारी वाला है। रही अंतिम समय की बात, मेरे दाह संस्कार का प्रबंध नगर पालिका कर देगी और फिर तुम जैसे मित्र कर देंगे, भला मैं इसकी चिंता क्यों करूं? तिलक की बात सुनकर मित्र हैरान रह गया। उसने आज तक संतुष्टि के ऐसे भाव किसी व्यक्ति पर नहीं देखे थे। वह मन ही मन तिलक के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो गया।

बाल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

0: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से बालकांड का भाग 106।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिव जी के धन

होश को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं, बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। यह शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

0: बालकांड का भाग 106 अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है। थोड़ी देर में सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल

0: से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. The Prime Minister will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra.

संगीति का कार्यक्रम में अभी आप स्नेहा चंद की आवाज में भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आप सभी का स्वागत है एक नए ताजगी भरे सवेरे में। उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कुराहट और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होगी। तो चलिए ऐसा ही एक जोश भरा गीत और सकारात्मक ऊर्जा वाला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

अमित त्रिवेदी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म केदारनाथ का ये गीत। और दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन शानदार बन सकता है। जी हाँ, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ भी अपने कार्य में अगर हम पॉजिटिविटी लेकर आए तो वो कार्य जरूर संपन्न होता है, अच्छे से होता है। चलिए सुनते हैं ये गीत थ्री इडियट फिल्म से।

जी हाँ दोस्तों, कितनी भी तकलीफें आए आप यही बोलिए दिल पर हाथ रखे कि ऑल इज वेल। जी हाँ, और भाई जिंदगी और सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये वो मौका होता है जब हम कल की थकान को अलविदा कहकर आज के सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों में क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं और अपने जो हमारे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं।

0: 한글.
1: दोस्तों, अगर आज मन थोड़ा भारी है तो याद रखिए, सूरज को उगने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए और आपको चमकने के लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। तो आइए, जो उलझने हैं, जो दिल की उलझनों को संगीत में घोल देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा सच ये है कि हालात हमेशा हमारे मन के मुताबिक नहीं होते, लेकिन उन हालात में हम क्या बनते हैं और वो पूरी तरह हमारे साथ में होते हैं। जी हाँ, हार हर इंसान को मिलती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई उसी हार से सीखकर आगे बढ़ जाता है। अगर आज थक गए हों तो रुक जाना गलत नहीं, लेकिन डर की वजह से चलना छोड़ देना यही असली हार है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आज जो लोग आज तुम पर जो शक कर रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही कल तुम्हारी मेहनत की मिसाल देंगे। बस चलते रहो, धीमे सही, लेकिन रुको मत।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम

0: परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब 400

0: $70 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ, श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to

0: को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी जिलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोजगार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से एमएसएमईज, पैकेजिंग, कपड़े की सनअतों, ऑटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फरोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवियत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी जिला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: बाद में शाम को वजीर आजम मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनंद इलाके में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संग मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज ओसैट से एक खुदकफील टेक्नोलॉजी इको निजाम की जानिब भारत के सफर में एक बड़े संगे मील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मसनूई जहानत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेजी से तरक्की हुई है। ये यूनिट एडवांस्ड मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज्यादा पैदावार से अहम सनतों में आलमी और घरेलू सारफीन को बराह रास्त फायदा होगा। इन सनतों को ऑटोमोटिव, सनती खुदकारी, 5G मवासलात और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तौसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश ए मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश ए मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जबान में तर्जुमा करने का काम भी कर रहे थे। कौमी राजधानी में अब तक 1,02,000 से ज्यादा शुमारियाती फॉर्म्स डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के हिस्से के तौर पर तकरीबन 33,14,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर शुमारियाती फॉर्म्स तकसीम करने का काम फिलहाल जारी है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवां माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कल नई दिल्ली में तिजारती मीटिंग के बोर्ड से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए अशिया की बरामदात में इजाफे की जरूरत होगी। ये बरामदात अभी तकरीबन 480 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, जिसमें इजाफा करके इन्हें तकरीबन 530 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का किया जाएगा, जबकि खिदमात की बरामदात में सरदस्त तकरीबन 421 अरब डॉलर की मालियत में इजाफा करके इसे तकरीबन 470 अरब अमरीकी डॉलर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात से मुतालिक सूरतेहाल का जायजा लिया। میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں النینو کی وجہ سے معمول سے کم بارش اور خشک سالی کے امکانی حالات سے متعلق صورتحال پر لگاتار قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ انہوں نے زراعت کی وزارت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی کہ وہ چوکنا رہیں اور ریاست

भारतीय सरकारों के साथ तालमेल रखें ताकि किसानों को सही फसल बोने के बारे में मशवरा दिया जा सके। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सदाकत, मोतबरियत और आला तरीन पेशावराना मेयारात पर अहदबस्ता रहना चाहिए। कल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि जब मीडिया मुत्तला करता है, सवालात करता है और मोतबरियत बरकरार रखते हुए अवामी मुबाहिसे को फरोग देता है तो जमहूरियत को फरोग हासिल होता है। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में हर रोज हजारों यात्री पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अकीदतमंदों, सयाहों और मकामी लोगों के लिए नई दिलचस्प सरगर्मियां शामिल की गई हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तवी दरिया के किनारे कश्ती की सहूलत शुरू की है। इसके अलावा पैडल वाली कश्तियां, राफ्ट्स, मोटरबोट्स और शिकारा की सहूलियात से भी यात्री लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कल सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट्स ने बालतल के दो बेस कैंपों से यात्रियों को 3,880 मीटर बुलंदी पर वाकई पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी इंदराज के बाद उनके लिए मखसूस की गई तारीखों पर ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएं। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं। ईरान के सीनियर रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने आयतुल्ला अली खामनई को ईरान के मुसल्ला अजीम में खराज अकीदत पेश किया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और खारिजी उमूर के वजीर ममलिकत पवित्रा मार्गरीता ने आखिरी रसूम में शिरकत की। उनके जसद खाकी का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मुकद्दस शहर मशहद में इस महीने की 9 तारीख को उनकी तदफीन कर दी जाएगी। सरकारी तौर पर यह सोग 40 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज दो रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह रियासत का पहला दौरा होगा। पहले दिन वो इंदौर पहुंचेंगे जहां वो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जनाब कुमार ओमकारेश्वर और महेश्वर के मजहबी और तारीखी मकामात जाएंगे। आयुर्वेदिक उलूम में तहकीक के मरकजी कौंसिल सीसीआरएएस ने कल नई दिल्ली में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 5वीं मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग आयुष वजारत के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा की सदारत में मुनाकिद की गई। वजारत ने बताया कि यह मीटिंग शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निजाम को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस इको निजाम में आयुर्वेद की तालीम, तहकीक, साइंसी मवासलात और डिजिटल हुक्मरानी को फरोग देने के मकसद से 3 बड़े इकदाम किए गए हैं। सीसीआरएएस के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने कहा कि कौंसिल शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निजाम की तामीर का पाबंद है जिससे आयुर्वेद को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होगी। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मगरबी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में शदीद से शदीद तर और कहीं कहीं पर इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मशरकी राजस्थान, मशरकी मध्य प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले 2 दिन के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान आज दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने कल दर्ज हरारत ज्यादा तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक और कम से कम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की पेशगोई की है। महकमे ने जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई के साथ इक्का दुक्का मकामात पर अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे ने लोगों को नालों, झरनों और चट्टाने खिसकने के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया है। उधर केरलम में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के 14 जिलों में से 11 में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
फीफा आलमी कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3

0: दो से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमेरिका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी T20 बैन अल-अक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अल-अक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी, जिसे मुसल्ला अफवाज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सम्त में बड़ा कदम माना गया है। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजा प्रताप ने वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसमें वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा होगा, फिर सिंध तास आबी मुहिदे पर बात होगी। आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम के आगाज की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनिनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरी T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी योग फॉर हेल्दी एजिंग। योग एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। स्वस्थ आयु के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रोताओं को विभिन्न योग आसनों की जानकारी के साथ सही प्रकार से योग आसन की मुद्रा के प्रदर्शन के लिए आकाशवाणी दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग द्वारा भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में एक सजीव लेक्चर और योग डेमोन्स्ट्रेशन सेशन का आयोजन हुआ। आमंत्रित विशेषज्ञ थी योग थेरेपिस्ट, प्रकृति योग और अल्टरनेट थेरेपी की डायरेक्टर डॉक्टर नीलम जोशी कांठपाल। कार्यक्रम में विशेषज्ञ ने आमंत्रित अतिथियों की योग संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया। इसके बाद कक्षा सातवीं की छात्रा काशवी सिंह द्वारा योग नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट योग चैंपियनशिप सहित कई योग चैंपियनशिप्स प्राप्त की हैं। प्रस्तुत है इसी कार्यक्रम के संपादित अंश।
2: आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल आज आपके

हमने बहुत ही अच्छे एक टॉपिक के साथ आई हूँ, जिसका है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो ये जो दिवस है, ये बहुत ही ज्यादा एक ऊर्जा से भरपूर हमें कर देता है पूरे साल के लिए। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था आपके यहाँ पे और उससे पहले भी। तो हम लोग हर साल एक संकल्प लेते हैं कि अब योगा डे आ गया है और अब पूरे साल के लिए हम फिर से ऊर्जावान हो गए हैं। तो ये इस ऊर्जा को भरने के लिए हम एक सेलिब्रेशन करते हैं योगा डे के रूप में। तो इस बार का जो थीम रखा गया है, वो रखा गया है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। उसमें योग की क्या भूमिका है, तो देखा जाए तो ये जो विषय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और गंभीर है, क्योंकि इस बारे में हम नहीं सोचते कभी भी। जब एज आ जाती है या जब बुढ़ापा आ जाता है, तब हमको कुछ सोचते हैं कि पहले से कर लिया होता काश, या एक रूटीन फॉलो किया होता, तो आज ये नौमत नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो एजिंग है या जो एज का बढ़ना है, वो प्राकृतिक है। प्रकृति उसको होना ही होना है हमारे साथ। मतलब हर एक इंसान पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो एक वो नियति चलती रहती है। तो वो तो एक शाश्वत सत्य है कि वो होगा, लेकिन हम कितना अवेयर हैं उस चीज के लिए, हम कितना कॉन्शियस हैं कि ये स्थिति जब आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, एक जो बच्चा होता है, जब वो जैसे एग्जाम होते हैं, एक साल के बाद एग्जाम होते हैं, तो दो बच्चे हैं मान लीजिए, एक बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है, मतलब डे वन से उसने पढ़ाई करी, नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करे अपने, और फिर उसने एग्जाम दिया। और एक बच्चा ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, कल एग्जाम है और आज पढ़ रहा है और कल उसको एग्जाम देना है, तो किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे? या कौन एक सिक्योर है जो पहले से पढ़ रहा है, जो डे वन से पढ़ रहा है, उसको कोई डर नहीं है, ना ही उसको कोई प्रेशर है, ना ही उसको कोई डर है कि मैं एग्जाम में फेल होऊंगा। और जो एक दिन पहले पढ़ रहा है, उसको पूरा डर है, 99% उसको डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। उसको पता है, और उसको ये भी पता है कि मैंने लापरवाही की है और मैंने पढ़ाई नहीं की। तो हमको वो नहीं बनना। हमें ये भी पता है, सबको मालूम है, एजिंग है, एज आनी है, बुढ़ापा आना है, एज चलनी ही है। तो उसके हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करें, रोज रूटीन में उसको फॉलो करें। तो योगा हमको यही करता है, उससे जोड़ता है, हमें अपने आप से जोड़ता है, हमारी चेतना से जोड़ता है। मतलब हम जो कर रहे हैं उसके लिए अवेयर हैं, क्योंकि रूटीन हमारा सबका बिजी होता है। रोज जो हम काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो बिजी शेड्यूल है। पर अगर हम माइंड में योग को रखते हैं, योग के लिए अवेयर हैं, तो हम अपनी हेल्थ के साथ चलते हैं। मतलब जैसे कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हम कुछ भी कार्य करेंगे तो शरीर के माध्यम से ही करेंगे, उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो योग के साथ अगर हम जुड़ते हैं, योग के साथ अगर हम चलते हैं, तो हम समस्याओं से दूर रहेंगे। तो ये जो विचार था ना, ये योग दिवस का जो विचार था या योग का जो विचार है, ये कोई दिवस नहीं है बल्कि विचार है। कैसे? क्योंकि जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने जब योग को दिया था, इसीलिए दिया था क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा गया है जीवेम शरदा सतम, मतलब आप 100 साल तक जिए, निरोगी होकर जिए, बीमार होके ना जिए, इसलिए योग को दिया गया था। हम उसको भूल गए और एलोपैथिक दवाइयों में, बाकी चीजों में हम लग गए, तो जो एक्चुअल में पद्धति थी उसको हम भूल गए। तो जीवेम शरदा सतम, मतलब 100 साल तक जिए तो निरोगी होकर जिए, सुखी होकर जिए। अब होता क्या है, जब हम कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, या हम हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है, या हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो बीमार तो होना ही होना है, एजिंग तो होनी होनी है, उम्र तो बढ़नी ही बढ़नी है। अब बूढ़ा जो होना है, वो दुख के साथ होना है या सुख के साथ होना है, ये हमारी चॉइस है। बूढ़ा जो होना है, वो दुख के साथ बूढ़ा होना है हमने, या सुख के साथ होना है, अपने आप पे कंट्रोल रख के होना है, या बिस्तर में पड़ के होना है, या दूसरों पे आश्रित होके होना है, ये टोटली हमारी चॉइस है, हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। आपने देखा, पहले जमाने में जो ऋषि मुनि का टाइम था, उस समय जो एज होती थी वो 200 साल की होती थी, 200, 250, 150, 100, 100 तो मिनिमम। धीरे धीरे धीरे वो एज, अब तो 100 मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होते हैं, 60, 70, 80, बच्चे भी हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो चीजें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? हमारी लापरवाही की वजह से। प्रकृति ने नहीं कहा कभी भी ऐसा कि आप जल्दी संसार से चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारी गलतियां और हमारी त्रुटियां जो हैं, वो हमारे लिए भारी पड़ती हैं हमेशा। अब जैसे नदी होती है, एक नदी क्या करती है, जब पहाड़ों से निकलती है तो खूब आवेग के साथ निकलती है, बहुत तेज होती है उसकी रफ्तार,
फिर वो धीरे धीरे मैदान में आती है।

0: मैदान में थोड़ी सी उसकी रफ्तार कम हो जाती है, फिर वो जाती है समुद्र की तरफ, तो बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, मतलब बहुत ही स्लो हो जाती है, धीरे धीरे समुद्र में उसका समागम हो जाता है। तो ऐसी एज भी होती है, जब हम छोटे होते हैं चंचल स्वभाव होता है, फिर हम जवानी आती है, फिर थोड़ा सा काम में बिजी हो जाते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं और बुढ़ापे आने तक बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है। अब इसमें हम योग को कैसे जोड़ सकते हैं, योग के माध्यम से। अब जैसे कि योग में भी कहा गया है कि जीवन जीने की कला है योग, समत्वम योग उच्चते जैसा बोला गया, लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में अगर योग को जोड़ेंगे तो हम मानसिक रूप से भी वीक नहीं पड़ेंगे, भावनात्मक रूप से भी वीक नहीं पड़ेंगे और शारीरिक रूप से भी वीक नहीं पड़ेंगे, अगर हम योग को अपने साथ रखते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मांसपेशियां हैं तो एज के साथ साथ वो ढीली पड़ने लगती हैं, जब हमारे जॉइंट पेन शुरू होने लगता है या घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, कमर वीक होने लग जाती है, 90 डिग्री बेंड होनी शुरू हो जाती है एक एज के साथ। तो जब हम योग को शामिल करते हैं तो उसमें हम जैसे कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं योगा के द्वारा, हम साथ साथ में करते भी रहते हैं, जिसमें हाथ वाली जैसे स्ट्रेचिंग हम करेंगे, हाथ की एक्सरसाइजेस धीरे धीरे, हाथ खोलिए ऐसे धीरे, सूक्ष्म व्यायाम टाइप का। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं, और इसको आप कहीं भी बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे 10 times स्ट्रेचिंग करेंगे, ये हम शारीरिक रूप से योगा को जोड़ रहे हैं। इसके बाद 10th अप एंड डाउन। अब इसमें अगर ब्रीदिंग को जोड़ देंगे तो आपका मन भी लगना शुरू हो जाएगा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये डेली की एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज सब करते हैं लेकिन उसको सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ताड़ासन की पोजिशन में आ जाइए, ऐसे स्ट्रेच, ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधा, एल्बो स्ट्रेट, अब 10 पीछे, 1 स्पाइन के लिए एक्सरसाइज, स्पाइन और सर्वाइकल, 1 2 3 4 5। आपको पता है ओल्ड एज में जितनी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी आप बीमारियों से उतना दूर रहेंगे। अगर आपको अपनी जानना है कि मैं बीमार कब पड़ूंगा, कितना वो करूंगा, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी देख लीजिए अपनी स्पाइन की, जितनी फ्लेक्सिबल स्पाइन है उतनी बीमारियां हमसे दूर है। ये तो हो गई शोल्डर की स्ट्रेचिंग। नेक की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरिया जो होता है सर्वाइकल का ही नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। आप जब नीचे झुक के काम करते हैं या फोन देखते हैं तो यहाँ स्टिफनेस बढ़ जाती है इस एरिया में, उस वजह से एक एज के बाद वर्टिगो का प्रॉब्लम या चक्कर का आना, ये सब प्रॉब्लम्स, माइग्रेन के अटैक्स, ये सब यहाँ की वजह से ही आते हैं। तो आप रेगुलरली अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे ऐसे ऊपर और सीधा 10 times 5 to 10, जैसा भी आपको टाइम हो ऐसे एक्सरसाइज करनी है, अप एंड स्ट्रेट स्लोली ब्रीदिंग। इसमें भी इनहेल एक्सहेल, इसको आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत देर हो गई काम करते हुए तो 2 minutes आप स्ट्रेच करिए ऐसे लेफ्ट एंड राइट। ये बच्चे, यूथ, कोई किसी भी एज ग्रुप के, और स्टार्टिंग से करोगे तो स्टिफनेस कभी आएगी ही नहीं। ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। कान जरूर खींचने, कान खींचना नहीं भूलना है आपको। कान खींचने से क्या होता है, कोई बताएंगे कान क्यों खींचे जाते हैं?
1: वेस्टिबुलर फोर्स को बैलेंस भी करता है ये, इस तरीके से अगर हम करते हैं।
0: Yes, इसमें 60,000 पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, जिससे कि हमारी जैसे मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, मेमोरी इंक्रीज होती है और नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। और इसको खींचते रहेंगे तो आपकी एक तो कफ भी नहीं जमा होगा। कई बार बुढ़ापे में आपने देखा आवाजें आती हैं कान की, कई लोग बुजुर्ग बोलते हैं कान से कुछ ड्रम की आवाज आ रही है या टन टन की आवाज आ रही है या कफ का कंजेशन हो रहा है, वो भी नहीं होता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके कान खींचने के। और स्ट्रेस रिलीज करता है, अगर आप थके हैं ना दिन भर और आपको या तो गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस ज्यादा है, आप कानों को खींचना शुरू कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखने में ये सब इजी एक्सरसाइजेस होती हैं लेकिन ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए, जो कि आपका कंडक्टर है, पूरी बॉडी को चला रहा है, सारे हार्मोन को बैलेंस कर रहा है, ऑर्गन्स को कंडक्ट कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, जो माइंड को हमारे कंट्रोल करता है। एक एज के बाद क्या होता है ना, हम इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं, बॉडी तो खैर काम नहीं करती, बॉडी भी वीक हो जाती है, लेकिन ये सब एक्सरसाइजेस अगर आप कर रहे हो तो पेशेंस लेवल बढ़ा रहता है आपका, आपके अंदर कंट्रोल बढ़ा रहता है चीजों को लेके। ऐसे रोटेट करेंगे शोल्डर तो पेशेंस लेवल इंक्रीज करता है, कंट्रोलिंग बढ़ जाती है आपकी, लंग्स भी एक्सटेंड होते हैं, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है। ब्रीदिंग पे भी ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग। अब पीछे ऐसे हाथ पीछे रखिए, बटरफ्लाई, नेक अप, ओके, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इसको आप अपने समय के अनुसार कितना

भी कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, या दो बार कर लीजिए मॉर्निंग में, इवनिंग में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कर सकते हैं। ट्विस्टिंग कर सकते हैं बैठे बैठे भी, ऐसे एक हाथ ऊपर रखिए, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, सांस लिया छोड़ दिया, ये ट्विस्टिंग, ये स्पाइन को कभी स्टिफ नहीं होने देगा, ज्यादा टाइम नहीं, अगर आप करते हो तो 10-15 मिनट में ही आपकी एक्सरसाइजेस पूरी हो जाती हैं। इसके बाद हम पैर वाली थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपने देखा है कभी आपको पेन हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो या एंकल में कहीं भी पेन हो रहा हो, तो किसी भी चीज में मन लगता है हमारा, किसी चीज में मन लगता है, नहीं लगता है, हमारा मन दुखी हो जाता है क्योंकि हमें पेन हो रहा होता है। तो अगर मन दुखी है तो शरीर नहीं चलता, और शरीर दुखी है तो मन नहीं चलता, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। ऐसे स्ट्रेच, इसमें इनहेल देखिए ऐसे होगा, पीछे इनहेल एक्सहेल, फील कहाँ करना है, काफ में, काफ मसल्स को स्ट्रेच करना, इनहेल स्ट्रेच एक्सहेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक एज के बाद आपने वेरिकोज वेन्स की शिकायत देखी होगी, वेन्स बाहर आ जाती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की उलझ जाती है, जैसे वो होता है ना जाल सा बन जाता है वेरिकोज वेन्स का, तो वो सर्कुलेशन अगर ये खुला रहेगा ना, किसी को डायबिटीज भी नहीं होगी और ना ही बीपी हाई होगा, अगर ये आर्टीज और वेन्स खुली रहेंगी डाउनवर्ड, क्योंकि प्रेशर डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा, जो हार्ट का प्रेशर ऊपर की तरफ होता है वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता है। आपने देखा जब बीपी हाई होता है या डायबिटीज होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं वॉक करो, घूमो, क्यों कहते हैं वॉक करो, ताकि पैर की नसें खुल जाए, आपकी आर्टीज वेन्स खुल जाए, ब्लड का फ्लो नीचे आ जाए, डाउनवर्ड जो प्रेशर ऊपर बना हुआ है सर की तरफ हैवीनेस, वो डाउनवर्ड आ जाए। और जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर 10-15 मिनट भी कर ली तो आपको एक घंटे की वॉक का बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। अगर नहीं टाइम है बाहर जाने का, आप घर पे बैठ के ये वाला सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। आपने देखा टायर्डनेस भी सबसे ज्यादा पैरों में ही फील होती है, जब हम थके होते हैं या शाम होती है, इवनिंग तक पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ये ऐसी एक्सरसाइज है, किसी भी एज ग्रुप पे हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान क्या देना है, एक पैर ऊपर रहेगा, ये स्ट्रेच रहेगा, ये बिना स्ट्रेच के आप नहीं करोगे, ये वाला स्ट्रेच रहेगा, ये इसको बैंड करिए नीचे और फिर टमी प्रेस करिए, पैर सीधा रखिए 5 to 10 टाइम्स। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है, चक्की 5 clock 5 anti, पर देखिए एल्बो नहीं बैंड होगी आपकी, चक्की में ऐसे रोटेशन सीधा स्ट्रेट 5 clock 5 anti clock। हमको क्या करना है, टमी को रोटेट करना है। ध्यान दीजिए, देखो ध्यान देके करेंगे तो अब दूसरे पैर से भी ऐसे करेंगे, पहले अप एंड डाउन, बॉडी सीधी नीचे फिर ऊपर, कमर सीधी, इससे क्या होता है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है या पेनक्रियाज नहीं काम कर रहा है, डायबिटीज है, फैटी लीवर है, तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइजेस हैं। मोशन डेली आएगा, कुछ कुछ खाते हैं ना बुजुर्ग लोग, चूरन चटनी डेली कुछ कुछ चलता रहता है पेट साफ करने के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलरली इन सब एक्सरसाइजेस को करेंगे, तो हमारी इंटेस्टाइन एक्टिवेट रहेंगे, अपने टाइम के अनुसार जिसको जितना समय है वो उस हिसाब से करें। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मंडूक आसन, जो हम डायबिटीज के लिए करते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन जिससे सही होता है, ऐसे वज्रासन में, जो नहीं बैठ पा रहे आराम से सुखासन में बैठो, अब नाभि के दोनों तरफ हाथ ऐसे डालने हैं, अंदर प्रेशर देना है दो पॉइंट्स पे, ब्रीथ इन, आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, जितना भी जा पा रहे अपने आराम से जाइए 4 to 5 times या 10 times। अब ऐसे करके उष्ट्रासन, घुटने पे आए, कमर पे हाथ रखें और बैक बेंडिंग करें ऐसे, इनहेल एक्सहेल। और जिनको घुटने में दर्द है, एक एज के बाद क्या होता है, एजिंग का इफेक्ट क्या आता है हमारे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बॉडी में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, जिसको कि बायोलॉजिकल एजिंग बोलते हैं, बायोलॉजिकल एजिंग, तो वो आती आती है, उसमें यही सब चेंजेस आते हैं। तो जिनकी ग्रीस कम हो गई है, घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, उसके लिए रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस करो आप, तो ग्रीस कम नहीं होगी। आजकल देखा आपने नी ट्रांसप्लांट के केसेस कितने ज्यादा, कि जिसको वो देखो नी ट्रांसप्लांट करा लो, क्यों करा लो, जो आपको नेचर ने दिया है वो उस पार्ट को आप वापस ला सकते हैं, कभी नहीं, तो उसको बचा के रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो बोल है ना नी बोल, इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, नी की एक्सरसाइज 5 ऐसे 1 2 3 4 5, ये नी जॉइंट की एक्सरसाइज है, नी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंटी क्लॉक 1 2 3 4 एंड 5, फिर ऐसे पकड़िए इसको जैसे बच्चे को पकड़ते हैं ना गोद पे, 1 2 3 4 5। अब इसको टच होता है तो करिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो ये तो हुई योगा की बात,
फिजिकल

राइट हेमिस्फीयर जो हमारी सर पे ब्रेन में होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो टमी बाहर आना चाहिए, जैसे गुब्बारे में समझ लीजिए कि गुब्बारा है, बलून है, हवा भरी तो बाहर आया। अब जब इसको बाहर करते हैं तो लंग्स ऑटोमेटिकली भर जाते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है या आपको चक्कर आ रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है तो आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो, हाथ ना भी लगाओ चलेगा। आप देखोगे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया है। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो आपको करना ही करना है। दूसरा एक दांतों के लिए एक्सरसाइज, जैसे पायरिया की शिकायत हो जाती है, गम्स का ब्लड आना, और एक एज के बाद दांत भी जवाब दे जाते हैं, तो हवा भरनी है, शीतली शीतकारी प्राणायाम। अब देखो करना क्या है, इसको पी लो और फिर नोज से एक्सहेल करो। ठंडा ठंडा लग रहा है, गर्मी में अगर एसी ना भी हो तो चलेगा। ध्यान लगाना, अगर यहाँ बैठे हैं तो ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, ये भी मेडिटेशन है। यहाँ पर हमने जो अभी किया इतनी देर सारा योगा अभ्यास, अगर आपका ध्यान यहाँ पर है तो वो मेडिटेशन है। अलग से बैठ के ऐसे तपस्वी वाली मुद्रा में जरूरत नहीं है आपको, जहाँ जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाना इज मेडिटेशन। ठीक है, हर काम में मन लगाना शुरू कर दो, आपका मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है, ग्रे मैटर बढ़ता है हमारे दिमाग में, ग्रे मैटर वो क्या होता है, एक एज के बाद जो डिसीजन मेकिंग होती है या याददाश्त की क्षमता होती है या नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आना जो होता है वो ग्रे मैटर करता है, वो इंक्रीज होता है, मतलब बॉडी में बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन, योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमने अपने जीवन में रखनी है। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाथ पैर हिलाए ये योग है, ऐसा नहीं है। जैसे बोला ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु योग युक्त स्वप्न प्रबोधस्य योगो भवति दुखा, मतलब आपका आहार विहार, आपकी लाइफ स्टाइल, सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का, पूरी लाइफ स्टाइल आपकी योग के अंदर आती है, योग है। अगर आप नियमित दिनचर्या अपना रहे हैं तो आप योग को फॉलो कर रहे हैं। कई लोगों के माइंड में होता है ये सिर्फ योग है, नहीं। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि क्या करेंगे, पूरे साल तक हम क्या संकल्प लेते हैं, सब कुछ फॉलो करेंगे। क्या क्या फॉलो करेंगे, खाना पीना, आहार विहार, अपना रूटीन, ये सब कुछ हम फॉलो करेंगे। डाइट में हम क्या कर सकते हैं, एंटी एजिंग जो डाइट है हमारी, सुबह आप एक तो सुबह हल्दी का पानी, कच्ची हल्दी, जैसे आजकल कैंसर के इतने इश्यूज आ रहे हैं, कच्ची हल्दी और तुलसी के पत्ते रात को डाल के या सौंफ भिगा के सुबह, अभी गर्मी के दिन है, सर्दी में मेथी दाना डाल सकते हैं, अभी सौंफ हल्दी और तुलसी के पत्ते डाल के सुबह पानी पीजिए। ग्रीन टी आपको तुलसी की बनानी है, सौंफ वो वाली ग्रीन टी मार्केट वाली अवॉइड करिए, थोड़ा सा ग्रीन पत्तों का जूस पीजिए, कड़ी पत्ता है, और आपके पीपल के थोड़ा पत्ते ले लीजिए, नीम के पत्ते ले लीजिए, पुदीने का पत्ता ले लीजिए, धनिया का पत्ता ले लीजिए, सबको पीसिए, एक शॉट टाइप का बना लो इतना सा, उसको डेली कंज्यूम करना शुरू कर दो, तो एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है। मल्टी सीड्स लेने बहुत जरूरी है ग्रीसिंग के लिए, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स हो गए, और आपके मगज के बीज, एक अखरोट, काजू अवॉइड कर सकते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल है, 2-4-5 बादाम, मल्टी सीड्स मिलाइए, 1 टीस्पून आपको डेली अपने मील में इंक्लूड करना ही करना है। खाना टाइम पे खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक ज्यादा करना है, पैक्ड फूड जो होते हैं, रिफाइंड फूड हो गए, प्रिजर्वेटिव जिनमें मिला है उनको अवॉइड करना है, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट को अवॉइड करना, व्हाइट सारी चीजें बंद कर दो, मैदा, चीनी, नमक, ब्रेड, जो जो व्हाइट होती है, फर्मेंटेड फूड बंद कर दो, रस, सुबह सुबह कई की शुरुआत चाय के साथ रस से होती है, वो बंद कर दो, उसकी जगह रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड जो भुना चना होता है वो ले लो, ये सब आप अपनी डाइट में, बाकी रोटी सब्जी जो आप खा रहे हैं नियमित, रात को दाल अवॉइड करें, चावल अवॉइड करें, दिन में आप खा सकते हैं, खिचड़ी खा लीजिए, ये सब आप दिन में खा सकते हैं। रात को दाल खाएंगे तो जॉइंट पेन होना बहुत बढ़ जाता है, और सोते समय आप थोड़ा सा जीरा डालिए और एक चुटकी अजवाइन डाल के उसमें काला नमक मिलाइए और सिप सिप करके पी लीजिए। मिल्क प्रोडक्ट बंद करने हैं, अगर आपको जॉइंट पेन से बचना है तो मिल्क प्रोडक्ट प्लीज अवॉइड करिए, उसकी जगह कोकोनट मिल्क आप ले सकते हो, कोकोनट मिल्क का दही भी जमता है, आमंड मिल्क ले सकते हैं, ये सब आप डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। पानी ज्यादा पीजिए, 2-3 लीटर, और नियमित व्यायाम कीजिए, ये फुल एंटी एजिंग आपका दिनचर्या रहेगी। इसके साथ ही हम ओम चैंटिंग करते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, धीरे से आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, मन बिल्कुल शांत, मुख में प्रसन्नता का भाव, डीप इनहेल, ओम चैंट करेंगे। ओ

0: दोनों हाथों को रब करेंगे धीरे से, पूरी हैप्पीनेस को, एनर्जी को अपनी बॉडी में स्प्रेड करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कक्षा सातवीं की छात्रा काशवी सिंह द्वारा योग नृत्य का प्रदर्शन किया गया।

0: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित सजीव योग कार्यक्रम के संपादित अंश सुन रहे थे।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत,
0: और अब प्रस्तुत है योग और संगीत विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं संगीत और योग विशेषज्ञ श्री अविनाश कुमार माथुर।
2: दोस्तों, आपने देखा होगा जैसा कि हाल ही में पूरे विश्व ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। यह केवल एक दिवस ही नहीं बल्कि मानवता को भारत की एक अमूल्य देन का उत्सव है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि इस योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और साथ ही हम जानेंगे कि योग और संगीत का आपस में कितना गहरा संबंध है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग क्या है। दोस्तों, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में विभिन्न आसनों की तस्वीर आती है। आप लोगों ने देखा होगा हम विभिन्न तरीके के आसन करते हैं योग के दौरान, लेकिन वास्तव में योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग शब्द जो है वो संस्कृत की धातु युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग का उद्देश्य है शरीर का मन से जुड़ना, मन का आत्मा से जुड़ना और आत्मा का परम चेतना से जुड़ना। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि योगश्चित वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना ही योग है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मनुष्य बाहरी रूप से तो बहुत विकसित हो गया है, लेकिन आंतरिक शांति खोता जा रहा है। दोस्तों, योग हमें उसी शांति की ओर वापस ले जाता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि आज की इस जिंदगी में तनाव, चिंता, अनिद्रा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। योग इन सभी समस्याओं से लड़ने का एक प्राकृतिक और प्रभावी माध्यम है। शरीर को स्वस्थ बनाता है योग, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है योग, मानसिक तनाव को कम करता है योग, सकारात्मक सोच विकसित करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जीवन में संतुलन लाता है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ 20 से 30 मिनट का नियमित योगाभ्यास हमारे पूरे दिन की ऊर्जा को बढ़ा देता है, बदल सकता है। अगर हम नियमित योगाभ्यास करें तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि योग और संगीत का अद्भुत संबंध कैसे है, ये दोनों मिलकर कैसे हमारे जीवन को सुखद बनाते हैं। दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, चाहे वह संगीत हो या योग, मन को शांत करना और चेतना को ऊंचा उठाना। जिस प्रकार योग शरीर और मन में संतुलन स्थापित करता है, उसी प्रकार संगीत भावनाओं और विचारों को संतुलित करता है। भारतीय संगीत में दोस्तों 7 स्वर हैं, सा

0: रे ग मा प धा और नी और योग में सात प्रमुख चक्रों की अवधारणा है। तो देखिए दोनों में कितनी समानता है। कई विद्वानों का मानना है कि विभिन्न स्वरों की तरंगे शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करती हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान के समय मधुर संगीत सुनता है तो श्वास की गति संतुलित हो जाती है, मस्तिष्क की तरंगे शांत हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है और ध्यान की गहराइयां बढ़ जाती हैं। इसी कारण आज दुनिया भर में म्यूजिक मेडिटेशन और साउंड हीलिंग जैसी प्रक्रियाएं लोकप्रिय हो रही हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगीत, चिकित्सा और योग दोनों कितने समन्वय के साथ चलते हैं। संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, यह चिकित्सा का भी एक प्रभावी माध्यम है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शांत संगीत हृदय की गति को नियंत्रित करता है, रक्तचाप कम करने में सहायता करता है, चिंता और तनाव को कम करता है। दोस्तों जब योग, प्राणायाम और संगीत का संयोजन किया जाता है तो उसका प्रभाव और अधिक गहरा हो जाता है, विशेषकर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों दैनिक जीवन में हम योग को कैसे अपनाएं? मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन योग के लिए घंटों की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों प्रतिदिन 5 मिनट गहरी श्वास लें, 10 मिनट का प्राणायाम करें, 10 मिनट सरल योगासन करें और 5 मिनट का ध्यान करें। इतना अभ्यास भी अगर आप जीवन में सकारात्मक रूप से करें तो बहुत ही परिवर्तन ला सकता है। योग केवल एक क्रिया नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। योग हमें सिखाता है कि शरीर को स्वस्थ रखना और मन को शांत रखना और जीवन को सार्थक बनाना, और जब योग के साथ संगीत जुड़ जाता है तब जीवन एक सुरमयी साधना बन जाता है।
1: योग और संगीत, अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे श्री अविनाश कुमार माथुर, संगीत और योग विशेषज्ञ। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। वैकल्पिक ईंधन जैसे हाइड्रोजन, जैव ईंधन और बिजली और संबंधित प्रौद्योगिकियां पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का स्थायी और स्वच्छ विकल्प हैं। ये तकनीकी विकास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक ईंधन और प्रौद्योगिकी विकास में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP देहरादून के कार्य, इस विषय पर सुनिए ये भेंट वार्ता। डॉक्टर अंजन राय, पूर्व निदेशक CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP और वरिष्ठ परामर्शदाता टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी INSA से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: डॉक्टर अंजन रे जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत साल बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो CSIR की संस्था है देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, वो संस्थान किस तरह का है और वहाँ किए जा रहे कार्यों का अगर वर्तमान में देखें, पर्यावरण कंसर्न को भी लेकर के, क्योंकि ये पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ रिसर्च सेंटर है, तो किस तरह से वो समाज के लोगों को और देश को लाभान्वित कर रहा है?
2: CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो देहरादून में स्थित है, जंगल के अंदर स्थित है और उसी पर्यावरण में जहाँ पे 250 एकड़ के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। शाम को निकलेंगे तो कभी कभी आपको तेंदुआ से मुलाकात हो जाएगी, कभी कभी हाथी आते हैं, 200 तरीके के पंछियां हैं उधर, 100 तरीके की तितलियां। वहां आएंगे तो लोग समझते भी नहीं है कि पेट्रोलियम का संस्थान है, लोग कहते हैं स्वर्ग है। परंतु वहां पे जो शोध हो रहा है, ये शोध का लक्ष्य यही है कि पेट्रोलियम को कैसे हम उपयुक्त तरीके से प्रयोग करें और साथ में ही कैसे जो मौसम बदलाव और पर्यावरण पे हानि की बातें आती हैं पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का, उनको कैसे संभाला जाए। तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण यह है कि 2018 अगस्त में हम लोगों ने पेड़ के बीज और अपने रसोई के अपशिष्ट तेल से हवाई जहाज उड़ाए ईंधन बनवा के।
1: अच्छा,
2: देहरादून से दिल्ली आई फ्लाइट स्पाइस जेट की 27 अगस्त 2018 में 5

0: केंद्रीय मंत्री दिल्ली में हमें स्वागत करने के लिए विमानतल पे ही खड़े थे हमारे लिए। और फिर उस सफलता के बाद जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ और उसका जो परेड होता है उसके फ्लाईपास्ट में भारतीय वायुसेना की AN-32 विमान में भी ईंधन भर के 2019 में फ्लाईपास्ट किया गया। तो ये बड़ा एक मैं कहूंगा चिन्ह था कि देश के शोध में इतनी प्रौद्योगिकी आ चुकी है कि हम ईंधन अपने प्रयोगशाला में बना के हवाई जहाज तक उड़ा सके। अभी एक दो साल में इसका एक बड़ा प्लांट लगने वाला है मैंगलोर में। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, जो गांव-गांव में शहर शहर में आज के दिन गैस चल रहा है, खासकर शहरों में अभी जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेचुरल गैस है, शायद आपके घर में भी होगा।
1: हाँ, आजकल महानगरों में और खासकर के जितने भी ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनियां हैं, चाहे अथॉरिटी की या बिल्डर्स हाई राइज है, उसमें जो है प्रमुख शहरों में जो PNG गैसें हैं वो सप्लाई की जा रही है।
0: आपको अचरज होगा जान के कि PNG गैस तो सप्लाई हो रही है परंतु लोग पुराने LPG के स्टोव को ही कुछ जुगाड़ करवा के उसी से रसोई में काम चला रहे हैं। और ये न तो सिर्फ हानिकारक है और खतरेमंद है, क्योंकि PNG और LPG एकदम अलग तरीके के गैस हैं और जब तक आप बर्नर नहीं चेंज करेंगे, पूरा रेंज नहीं चेंज करेंगे, तब तक ये खतरा रहेगा।
1: ये आपने बहुत काम की जानकारी दी है, क्योंकि अक्सर जब भी कोई नया चूल्हा लिया जाता है तो वो प्रायः LPG के रूप में आता है कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए LPG के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और दूसरा जब उसको PNG के लिए यूज करना होता है तो उसके पीछे जो एक बर्नर में एक सप्लाई है वो चेंज करना पड़ता है। तो आपने जैसे कहा कि जुगाड़ सिस्टम से लोग उस खर्चे को बचाने के लिए स्थानीय तकनीक पे ही उसको उपयोग करने लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़े खतरे का आमंत्रण है।
0: जी, मैं और भी कहूंगा कि दुख की बात यह है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी अपने कनेक्शन के साथ ये जुगाड़ ही कर रहे हैं, LPG स्टोव में ही नोजल चेंज कर रहे हैं, वो अनुपयुक्त है। सरकार की अपनी पाबंदी है इस पे, आपको पूरा स्टोव चेंज करना पड़ता है, 25% गैस आपका लीक होता रहेगा और ये गैस आयात होता है विदेशी मुद्रा देकर। तो इस शोध का काम हमारे संस्थान ने की थी और इस शोध से कम 14 कंपनियों को इसका लाइसेंस दिया गया कि आप PNG के ही बर्नर बनाओ, PNG के ही स्टोव बनाओ। पर अभी भी क्योंकि जो कंपनी गैस बेच रही है उसको फायदा है कि गैस 25% निकल जाए तो बिलिंग ज्यादा होगी, तो देश के सारे कंपनी अभी भी PNG स्टोव नहीं अपनाए,
1: जबकि ये कंपलसरी है,
0: जबकि ये कंपलसरी है सरकार के अपने नियम के अनुसार।
1: आपने एक रसायन विज्ञान में भी डॉक्टरेट की उपाधि की है, वो भी आपने एक नोबेल पुरस्कार विजेता के अंदर में किया है। जलवायु संबंधी समस्याएं आ रही है, खास करके पर्यावरण से संबंधित जो बातें होती है जो चिंता का विषय है, दिल्ली NCR की बात करें तो हमेशा प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण रहा है और अब कहा जाता है कि इस प्रदूषण के कारण भी गर्मी बढ़ती है। इन संस्थानों में क्या इस तरह के भी अनुसंधान किए जा रहे हैं या किए जाने की आवश्यकता है?
0: जी अवश्य, प्रदूषण को लेकर इसका शोध चल रहा है, CSIR के कई सारे प्रयोगशाला में इसका काम चलता है। एक जगह पर भोपाल में है एम्प्री बोल के CSIR का प्रयोगशाला, उन्होंने देखा है कि पराली जो जलती है पराली से कैसे पार्टिकल बोर्ड बने। फिर दिल्ली में ही है केंद्रीय सड़क अनुसंधान
1: संस्थान जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
0: उन्होंने इसी से बिटुमिन बनाया है पराली से, IIP के साथ योगदान करके, कि पराली से ही जो बिटुमिन मतलब जो टार रास्ते पे हम लोग बिछाते हैं रास्ता बनाने के लिए, अलकतरा बोलते हैं जिसको, उसको पराली से कैसे बनाया जाए बायो बिटुमिन। फिर भारत पेट्रोलियम ने अपशिष्ट प्लास्टिक से DND फ्लाईवे का हिस्सा बनाया है अपशिष्ट प्लास्टिक डाल के, तो काफी सारा शोध हो रहा है कि अपशिष्टों से कैसे उसका सही उपयोग हो ताकि जलवायु परिवर्तन पे प्रभाव कम पड़े।
1: निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वेस्ट को वेल्थ में कैसे हम बदल सकते हैं, उस अवसर को नहीं चूकना चाहिए और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉस्मेटिक केमिस्ट के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। बात आती है एक औषधि उद्योग की भी, तेल एवं गैस की भी, बायोटेक्नोलॉजी का भी क्षेत्र बढ़ रहा है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें एज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब उसका रिसर्च उसमें किया जाता है तो क्या इस तरह के भी कुछ बाय प्रोडक्ट उपयोगी प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे फार्माकोलॉजी में, कॉस्मेटिक्स में या लुब्रिकेंट वगैरह के लिए? और इसके अलावा भी हम लोगों ने चर्चा की है कि PNG में और LPG में, तो उसमें मुख्य रूप से क्या अंतर होता है?
0: PNG हवा से हल्का होता है और LPG हवा से भारी होता है, तो कहीं उत्सर्जन जब होए, कोई भी लीकेज आए हमारे स्टोव से, PNG ऊपर जाएगा, LPG नीचे जाएगा। अब गौर से LPG बर्नर देखेंगे तो उसके जो छेद हैं वो अंदर की और होते हैं ताकि भारी गैस अंदर जाके ठीक से जले, और जो पीएनजी का बर्नर होगा उसका छेद जो है ऊपर की ओर जो है रहेगा ताकि भारी गैस ऊपर जाने से पहले जल जाए। तो बर्नर का जो छेदों का जो मतलब पैटर्न है वही अलग रहता है, पहली बात तो वो है।
1: जो बर्नर के ऊपर के हिस्से का होता है, जिसमें होल होता है,
0: वो भी अलग है।

0: और क्योंकि एलपीजी भारी है तो एलपीजी अलग प्रेशर से चलता है, सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा होता है, पीएनजी का प्रेशर कम होता है, तो उसका जो मिक्सिंग ट्यूब है आपको दिखेगा भी नहीं वो भी अलग रहता है। एलपीजी का मिक्सिंग ट्यूब ज्यादा मोटा होता है, अब उसमें मैं पीएनजी के मिक्सिंग ट्यूब से चला दूं तो वो गैस जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा ऊपर, पूरे डिजाइन की बात है ये।
1: और इसके अलावा इसकी रासायनिक रचना में क्या है, जब ये प्रोडक्ट के रूप में निकलता है तो क्या स्टेज होता है इनको अलग अलग करने का?
0: तो जो आपका नेचुरल गैस है वो जब पाइप में डालते हैं उसको हम पीएनजी बोलते हैं, और उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में डालेंगे तो उसको सीएनजी बोलते हैं। माल तो वही है, नेचुरल गैस। रासायनिक तौर पे देखें तो ये एक कार्बन अणु और चार हाइड्रोजन अणु मिलकर मीथेन गैस बनता है, और एलपीजी में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन प्रोपेन गैस लगभग होता है। दोनों जो है तेल के फील्ड से आते हैं, पर एलपीजी पेट्रोलियम से आता है और पीएनजी नेचुरल गैस से आता है। आपने पूछा कि इन सब के साथ जैसे कॉस्मेटिक्स या स्वास्थ्य का क्या जुड़ा हुआ है, कोई एक साधारण एग्जांपल देख लेते हैं जिसको हम वैसलीन बोलते हैं या पेट्रोलियम जेली। इसमें पेट्रोलियम वैक्स और मिनरल ऑयल डालते हैं ताकि जब हम चमड़े पे डालें तो चमड़े से जो हमारा वाष्प निकल जाता है, पानी निकल जाता है, चमड़ा ठंड में या सूखे मौसम में न सूखे। ये वैक्स जो है इंडिया में बहुत साल से आयात होता। कुछ ही साल पहले नुमालीगढ़ बोल के रिफाइनरी है असम में, उनके पास जो क्रूड ऑयल आता है, असम के क्रूड बोलते हैं, वो कच्चे तेल का बहुत वैक्स होता है, और ये वैक्स के वास्ते उनके पाइपलाइन चोक हो जाते हैं। तो वो रिफाइनरी में क्या करते थे, हाइड्रोजन दबाव डाल के इस वैक्स को डीजल बना देते थे। अब डीजल का भाव आपको मालूम है 80-100 रुपए के आसपास है, टैक्स वैक्स देके रिफाइनरी से निकलता है, थोड़ा कम है उससे, और वैक्स का भाव है 120 रुपए। तो ये पैसा देके वैक्स तोड़ के डीजल बनाते थे। तो हमारी संस्था ने उनको दिखाया कि उससे से वैक्स पहले कैसे निकाल लिया जाए, तो जो वैक्स आयात हो रहा था वो तो बंद हो ही गया, वैक्स निर्यात हो रहा है उस रिफाइनरी से।
1: पहले ये क्या बाय प्रोडक्ट में बेकार हो जाता था,
0: बेकार क्या, उसको डीजल बना देते थे पैसा खर्च करके।
1: अच्छा, और उतना एनर्जी भी फिर लगाते थे,
0: एनर्जी लगाते थे, और वैक्स ज्यादा महंगा है। हमारी रिफाइनरी का जो प्रॉफिट है वो 1 साल में 77 करोड़ बढ़ गया पहले साल में ही।
1: आपको 2021 में इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा आउटस्टैंडिंग ग्रीन एनर्जी एक्टिविस्ट के लिए ज्यूरी च्वाइस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो ग्रीन एनर्जी की ओर सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है, खास करके हाइड्रोजन मिशन पे काम चल रहा है। तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को इस ग्रीन एनर्जी के बारे में भी बताइए कि किस तरह से ये भविष्य की ऊर्जा है, हरित ऊर्जा तो कहते हैं, और किस तरह से उसका अधिक से अधिक उपयोग लोगों को करना चाहिए।
0: मैं पहले कहूंगा कि ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा अपनाने का तरीका यह है, अपनी सारी चीजों की खपत कम करें। जब हम एक नया शर्ट खरीदते हैं उस शर्ट के लिए कोई कहीं किसान ट्रैक्टर चला रहा है, उसके बाद कहीं फैक्ट्री में उस ट्रैक्टर के बाद कपास की मशीन से वो कपड़ा जो है बुना जा रहा है, फिर वो कपड़ा किसी मशीन से शर्ट बन रहा है, फिर वो किसी मशीन से किसी ट्रक से किसी शोरूम में आ रहा है, आप उस शोरूम में जा रहे हैं, उसमें शोरूम के 3 फ्लोर होंगे, आप एलिवेटर एस्केलेटर से एनर्जी खर्चा करके वहां चढ़ रहे हैं। शर्ट फेंकने के पहले नया शर्ट मत खरीदें। जैसे मैं जो आज पैंट पहना हुआ हूँ 1995 का पैंट है, अभी तक मैंने नया पैंट नहीं खरीदा इसको। ग्रीन एनर्जी का पहली चीज है खपत कम करें। दूसरी चीज है जो सौर ऊर्जा सरकार कर रही है, मैं इसका सराहना करना चाहूंगा। तो मैं कहूंगा कि अपने घरों में प्लीज अपना सोलर पैनल लगाइए, और जितने भी आपके मीटर्स हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, स्मार्ट मीटर लगाइए, ज्यादा स्टार रेटिंग की चीजें लगाइए। कम भाव में कम स्टार रेटिंग के तो मिल जाएंगे, पर एक बारी देश के लिए भी और अपने लिए भी खर्चा करके ज्यादा स्टार रेटिंग की चीजें लगाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को ये जलवायु परिवर्तन से कम तकलीफ होगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री की दूर की एक सोच ने जब उन्होंने ये कहा था कि वन अर्थ वन ग्रीड की बात की थी कि ऊर्जा की खपत के लिए, और उसके बाद सोलर एनर्जी जनरेशन में एक क्रांति आई है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है देश में। नेशनल साइंस एकेडमी के सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में आपका जो अनुभव है एज एन एडवाइजर, किस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए, खास करके उसमें जो जॉब के अपॉर्चुनिटीज अधिक से अधिक लोगों को मिल सकें, युवाओं को, उसके लिए कार्य किया जाना चाहिए या किए जाने की जरूरत है?
0: देखिए, जो मैंने कॉलेज के समय देखा था, 1984 में मेरी IIT से पढ़ाई समाप्त हुई, और आज जो IIT में देख रहा हूँ जमीन आसमान का अंतर है। आजकल IIT में जो लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उसमें मैं कहूंगा कि 10% लोग कम से कम स्टार्टअप में जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मैं कोई नया कोई आइडिया लेके आऊं, कोई आविष्कार लेके आऊं, कोई तरीका लेके आऊं, उसको अपनाने के लिए देश में सिर्फ खरीदारी नहीं है, सरकार भी है। सरकार कह रही है कि आप आइडिया लेके आओ जो हमारे देश के काम में आए। किस किस इलाके में? डीपटेक जो हम कहते हैं, डीपटेक जो है रक्षा प्रणाली, डिफेंस, हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, परमाणु, कंप्यूटर के अंदर जो रहता है सेमीकंडक्टर चिप, स्वास्थ्य, कृषि, सब में आपको डीपटेक तो चाहिए, और डीप

0: क्या है? डिप्टेक यह है कि जो चीजें आज हैं उसके गंभीर तरीके से अनुसंधान करके ऐसे ऐसे समाधान निकालें कि आज के समाधान और कल के समाधान में खर्चा कम हो, पर्यावरण पे प्रभाव कम हो और लोगों को, खासकर अंत्योदय के स्तर पे लोगों को जो है लाभ ज्यादा हो। तो नवम कैपिटल हमारी जो वेंचर कैपिटल फंड है, इसका नाम भी एक थोड़ा अनोखा है, संस्कृत में नवम का मतलब नया भी है और नौ या नौवा भी है, और 10^-9 को कहते हैं हम लोग नैनो, जो विज्ञान का आधार है, और 10^+9 1 बिलियन यानी कि 10 करोड़, ये जो है कोई कंपनी जब इस साइज की हो जाती है उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। तो हम नई चीजों से नैनो साइंस करके यूनिकॉर्न बनाने का प्रयास करते हैं।
1: बहुत अच्छा, मुझे याद है कि जब पेटेंट को लेकर के हल्दी और नीम की एक लड़ाई लड़ी गई थी, भारतीय वैज्ञानिकों ने CSIR के अंदर के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी थी यूरोपियन और अमेरिका में, और उसको जीते थे। तो उस समय CSIR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर जी ने हमें एक इंटरव्यू में हम लोगों को बताया था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि भारतीय जो है सरस्वती की आराधना करेंगे, लक्ष्मी का उपार्जन करेंगे। ज्ञान और बुद्धि के और विवेक के उपयोग से भारतीय वैज्ञानिक जो है इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो अपने अनुसंधान के द्वारा जो विद्या है उसका लाभ लक्ष्मी उपार्जन, जो आर्थिक रोजगार और आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को अवसर दिला रहे हैं। डॉक्टर अंजन राय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में अपने निदेशक के जो आपके अनुभव रहे हैं, और साथ ही उस तरह के संस्थानों के जो कार्य हैं उससे बने हुए जो उत्पाद हैं, और वर्तमान में जो एक आवश्यकता है जो भविष्य के विकसित भारत की आधारशिला बन रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कि इनोवेशन बेस्ड होना चाहिए, उन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पुनः आप लोगों को भी मुझे आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।
2: वैकल्पिक ईंधन और प्रौद्योगिकी विकास में CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP देहरादून के कार्य। अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। डॉक्टर अंजन राय, पूर्व निदेशक CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP और वरिष्ठ परामर्शदाता टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी INSA से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान

का है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 863 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वाकई मौसम तो बहुत अच्छा बन चुका है और इस मौसम में इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त कुसुम लता। और एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने फिल्म संगीत के उस पड़ाव में जहाँ हम लेते हैं आपके संदेश। यहाँ कार्यक्रम का आगाज शुरू हो चुका है मौसम के इस गीत के साथ, लेकिन आपके जो संदेश हैं उनके साथ हम मौसम का आगाज, कार्यक्रम का आगाज करेंगे। पहला संदेश हमें मिला बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्केंडे, संजय बेबी किट्टू, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने संदेश ये भेजा, धन्यवाद आपका। पहला संदेश आपका हमें मिला, बहुत अच्छा लगा। बिट्टू गगनेजा जी ने संदेश भेजा जलालाबाद वेस्ट से, इनके साथ हैं सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित और तुलसी मस्किन जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं आरजे मैडम जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भाई हम हैं कुसुम लता, मैडम नहीं, हमारा नाम है कुसुम लता जी। हाँ, कहते हैं अपने ही किसी भी गीत, जो अपने ही पसंद के किसी भी गीत में हमारा संदेश पढ़े, बिल्कुल। गोवर्धन कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन जी के साथ है वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन और चंडीगढ़ से है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान। बहुत सारे संदेश इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि हमारा एक संदेश पढ़ते ही बाकी संदेश वापस हो जाते हैं और नाराजगी हो जाएगी भाई ऐसे। तो सुदर्शन शाह जी का संदेश मिला, इनके साथ है सुदर्शन शाह जी के साथ पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह का, और इन्होंने गीत

की फरमाइश की है। पद्मा टॉकीज नगर से इन्होंने ये संदेश भेजा है मुझे मुझे यानी अपने इंद्रप्रस्थ चैनल पर फिल्म आपकी पसंद में। एक और संदेश मिला, नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभिनंदन कर रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमल अनेजा। बहुत ही एक सकारात्मक विचार इन्होंने भेजा है कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, छोटी सी सकारात्मक सोच भी बड़े बदलाव की सोच बन सकती है। मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए। क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश है। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार, धन्यवाद आपका संदेश में यहाँ भेजने के लिए। मांगे राम जी संदेश भेज रहे हैं गांव चौधरीवास हरियाणा से। मांगे राम सतौड़ रितु सिंह, कार्यक्रम पेशकर्ता जी प्यार भरी नमस्कार, ईमेल शामिल करें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रिया। भाई मेहरबानी किसी बात की नहीं, आपका ही कार्यक्रम है ये तो। दिनेश वर्मा जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा, एक गीत की फरमाइश की है। हीराबेन शिंदे जी संदेश भेज रहे हैं किशोर नगर अमरावती से, इनके साथ है शीला देवी और सिद्धार्थ, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए। सुरेश राठौर जी का हमें संदेश मिला गांधीनगर गुजरात से, इनके साथ है मंजुला विशाल और निशा। हरजिंदर शिंदे जी संदेश भेज रहे हैं गांव नथाना पंजाब से, इनके साथ है हरजिंदर जी के साथ जसवीर जस्सी सीता और गीता। कहते हैं किसी भी गीत अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए और कहते हैं खुश रहो खुशियां बांटो, क्या बात है। सुधाकर जाधव जी एक बार फिर से संदेश भेज रहे हैं हमें, और हिरमानी वर्मा जी संदेश भेज रहे हैं दत्तेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, इनके साथ है पारसमणि पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल जी। सतीश अनेजा जी का एक बार फिर से हमें संदेश मिला, सुधाकर जाधव जी का एक बार फिर से संदेश मिला, यासीन अंजान जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं पुरखलोस आदाब कबूल करें। भाई बिल्कुल आदाब, इनके साथ है मोहम्मद यासीन अंजान जी के साथ साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। संजय धिंगिया जी संदेश भेज रहे हैं बागपत से, इनके साथ है नमन और अपार धिंगिया जी। अकरम हुसैन प्रिंस संदेश भेज रहे हैं नूरमहल महसौल सीतामणि बिहार से, इनके साथ है तलत जहानाज, फरज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, कहते हैं हम बहनों को कार्यक्रम में शामिल करें। सुधाकर जाधव जी का हम संदेश ले चुके हैं, और फागुराम यादव जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव। और एक और हमें संदेश मिला, ये है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, और ये सुनना चाहते हैं गीत झूमता मौसम मस्त महीना, क्या बात है। लीजिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: वाकई हर गीत इतना अच्छा है कि अपने आप में दिल से एक ही चीज निकलती है, वाह क्या बात है ना। और देखिए ना, संदेश भी इतने सारे हैं कि इसके लिए भी हम यही कहते हैं वाह क्या बात है। धर्मेंद्र शिपा जी संदेश भेज रहे हैं, एक बार फिर से इनके साथ है कपिल ईशान, पूजा परिहार कहते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, मैसेज जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वर्ण सिंह जी संदेश भेज रहे हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से, इनके साथ हैं दलजीत, ताजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज, कहते हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए। भाई गीत तो हम सुनवा ही रहे हैं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम है तो गीत तो चलेंगे ही। ताज मोहम्मद जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। राजेश वर्मा जी कहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा के साथ हैं, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपका धन्यवाद जी। धन्यवाद जी आपका भी। रमेश कुमार जाजौरिया जी संदेश भेज रहे हैं पटेल नगर मलौट से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। सोपान आडोकर जी संदेश भेज रहे हैं मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पीएस नावकर जी ने संदेश भेजा, ओम प्रकाश राय जी संदेश भेज रहे हैं, स्वर यशुदास मेरे बोल भी लिखे हैं इन्होंने गीत के, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, इनके साथ हैं उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, धन्यवाद आप सभी का। और ये हैं सुरेश चौरसिया जी, फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से इन्होंने संदेश भेजा, कहते हैं रेडियो इंद्रप्रस्थ की जय, वाह क्या बात है। हाँ जी जी, सादर नमस्कार और प्रणाम। प्रणाम जी, मेरा नाम है कुसुम लता। जी हाँ, बार बार मैं बता रही हूँ कि आपके आरजे का नाम है कुसुम लता, तो नाम लिखकर भेजेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। फिलहाल ये लिखते हैं, इनके साथ हैं श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक कासगंजी, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर, नवाबगंज कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया, इन्होंने अपने सभी नियरेस्ट डियरेस्ट के नाम भेजे, बहुत अच्छा लगा। नीटू मल्होत्रा जी क्या कहते हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। पता है संदेश शामिल होगा ही होगा जी, बिल्कुल, क्योंकि आपका ही कार्यक्रम है। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन जी संदेश भेज रहे हैं, कीर्तनपुरी गोस्वामी कहते हैं सप्रेम नमस्कार जी, आप कैसे हैं जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी कहते हैं दिल से धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सतीश अनेजा जी ने एक बार फिर से संदेश भेजा है, रामेश्वर जी का संदेश मिला, कहते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, हमारा 4 दिन से मेल शामिल नहीं किया गया, प्लीज प्लीज मेल जरूर शामिल करें। ये कुछ गीत लिख रहे हैं, कहते हैं प्लीज प्लीज जरूर सुनवा दे, कोशिश करते हैं। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहांत से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा बेद बाबू कठेरिया। और अगला संदेश अकरम हुसैन जी का हम ले चुके हैं, बोधराज खोरवाल जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। बाकी संदेश हम लेंगे लेकिन एक संदेश के बाद, और संदेश आप सभी के लिए है। साउथ दिल्ली में शेखसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती रोगी को अतिशीघ्र 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। इच्छुक रक्त दानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कृपा करें। मोबाइल नंबर है 9810652903। संपर्क करने के लिए एक बार नंबर दोबारा सुन ले, 9810652903। 03। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। जी हाँ,
1: चाहिए
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

देखिए, संदेश हमें बराबर मिल रहे हैं और रिपीटेडली हमें जो एक लिसनर संदेश भेज चुके हैं वो दोबारा भी संदेश भेज रहे हैं, तिवारा भी भेज रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप संदेश भेज सकते हैं और कुछ नया अगर आपने लिखा होगा तो हम उसे भी शामिल करेंगे। तुलसी मस्कीन जी ने एक बार फिर से हमें संदेश भेजा और बहुत सारे संदेश। भाई नीटू मल्होत्रा जी का दोबारा संदेश मिला और इनके बाद वेदालिका मिड्ढा जी संदेश भेज रही हैं, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा कहते हैं तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया जी। हीरामन शिंदे जी संदेश भेज रहे हैं किशोर नगर अमरावती से। हीरामन शिंदे जी के साथ हैं सिद्धार्थ गोंडाने जी। विश्वनाथ साहू जी संदेश भेज रहे हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से। विश्वनाथ साहू जी के साथ है पंकज साहू और तिरुपति साहू। नासिर शेख जी का संदेश मिला,

फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से इनके साथ है नासिया नासिर शेख जी के साथ नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा से अहमदनगर से जुरैन, सबीहा, मिखाइल और जैनब। हिमकेश्वर साहू जी का संदेश मिला भाटापारा छत्तीसगढ़ से, इनके साथ है करण, राहुल साहू, चंपा साहू। पी एस नावकर जी का संदेश मिला हमें एक बार फिर से नरवेल महाराष्ट्र से, इनके साथ है निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण, सोपान और आशीष। रोशन देवांगन जी संदेश भेज रहे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, इनके साथ है कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन। और आर कुमार जी संदेश भेज रहे हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अब्बासी जी, मोहम्मद अब्बासी जी संदेश भेज रहे हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, इनके साथ है निगहत प्रवीण अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और अगला जो संदेश मिला है ये है बबलेश पवार जी, रविन्द्र मोहनदास जी, कहते हैं रविन्द्र मोहनदास जी किशनगंज बिहार से, इनके साथ है आशा देवी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। बबलेश पवार जी ने कहा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, इनके साथ है डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, दिव्यांग हैं ये, खलीफों से की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रेडियो दीवाना लिखा है इन्होंने। और राजेश सेन जी का संदेश मिला हमें, कहते हैं प्रसारक जी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से, इनके साथ है राजेश सेन के साथ सुरेखा सेन। मांगेराम जी का संदेश मिला एक बार फिर से हमें, और गुलाबदास मानिकपुरी जी से संदेश भेज रहे हैं लेवई छत्तीसगढ़ से, इनके साथ है राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। वेस्ट क्रिएशन से हमें संदेश मिला छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, आप सभी ने कार्यक्रम में शिरकत की, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और एक गीत की फरमाइश बार बार हमें मिल रही है और ये है शायद फिल्म तकदीर है, देखते हैं मिलता है कि नहीं हमें ये गीत, शायद ही हमारे पास नहीं है। एक गीत सुन लेते हैं, तब तक हम सर्च करते हैं, अगर मिल गया तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे।

एक निजी अस्पताल में भर्ती रोगी को अतिशीघ्र 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कृपा करें। मोबाइल नंबर है 9810652903। संपर्क करने के लिए एक बार नंबर दोबारा सुन लें, 9810652903, 9810652903। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।

जी बिल्कुल, हमें आपस में सुख दुख सभी बांटने चाहिए। जैसे कि हम आपको बराबर एक संदेश दे रहे हैं कि साउथ दिल्ली में शेख सराय

संदेशों की बौछार हो रही है, तो हम सोचते हैं कि पहले संदेश पढ़ ले, फिर आगे फिल्म संगीत में हम बढ़ेंगे। और देखिए, संदीप मकर जी, देवशंकर तामोदिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोदिया के साथ हैं अजय देव तामोदिया, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामोदिया, राधिका और प्रभा तामोदिया, मास्टर अलकबीर, और किकिर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा। रोजी डे कैस्ट्रो जी ने संदेश भेजा है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से कहते हैं, हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, और तहे दिल से धन्यवाद पहले ही भेजा है। मोहम्मद सादिक जी संदेश भेज रहे हैं, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। मोहम्मद सादिक के साथ हैं मुश्ताक अहमद, शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक, मोहम्मद उमर, हाजी अयूब शरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलकांत गुप्ता जी संदेश भेज रहे हैं, पिपरिया कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, श्रीमती गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। और कोई एक संदेश हमने

0: चाहते कि किसी का संदेश छूट जाए। अनिल बुरांडे जी संदेश भेज रहे हैं बल्लार शाह से, सूरज प्राची एकलव्य आपका पल खुशियों भरा हो, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऊपर से देख लेते हैं, दिलावर खान जी कर ले चुके हैं संदेश, धर्मेंद्र शिपा जी का, मोहम्मद सईद अब्बासी जी की पसंद का गीत भी हम सुनवा चुके हैं, और अमीना जी का संदेश गांव घिटोरनी नई दिल्ली से, साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम तबस्सुम, तरन्नुम तराना, हिना और सीमा, इन सभी ने संदेश भेजा। राजेश सुनील जी का संदेश हमें मिला है मुल्लापुर दाखा से, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन, धन्यवाद आप सभी का। मोहम्मद सईद अब्बासी जी का भी कई बार हमें संदेश आ चुका है। पंकज शर्मा जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं मेरी प्यारी सिस्टर जी, मुस्कुराया साहब से प्यार से, बट कीजिए कितना नमस्कार जी, एनी सॉन्ग, ये मॉडल टाउन करनाल से, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, शशि बालाजी, जग्गी दुआ जी, इन सभी ने संदेश भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अजीत भास्कर जी संदेश भेज रहे हैं, बहुत हमारे पुराने लिसनर हैं, बहुत समय से रेडियो से जुड़े हैं और हमेशा इनका संदेश हमें मिलता है। लिखते हैं प्रिय आरजे होस्ट, नमस्कार। नमस्कार जी, तुम्हारी जरूरत है इनकार, आंधियों की तरह बुझा के आ गई दुश्मन की खुदसरी के चिराग, क्या बात है। विरम गाम गुजरात से अजीत भावसर जी के साथ है प्रमिला भावसर। सुमेरा प्रवीण जी संदेश भेज रहे हैं, इसमें ये संदेश किसी और की मेल से लेकिन है ये ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी से, बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी जी का पूरा परिवार। और कोई संदेश ऐसा रहना जाए जो हमने नहीं लिया हो, इसलिए हमारे जो लगातार संदेश भेज रहे हैं लिसनर्स, जो पहले भेज चुके हैं, जिनके नाम हम ले चुके हैं, उनके संदेश हम नहीं ले रहे हैं। संतोष जी का संदेश हमें मिला, संतोष भाकरे जी, सुनैना, सुकन्या, सविता भाकरे, शाहजी नगर, बेंगलोर जिला, नांदेड़, महाराष्ट्र से। बहुत कम समय रह गया है कार्यक्रम का, तो हम चाहते हैं किसी का नाम रह ना जाए। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा कहते हैं नमस्ते जी, नमस्ते जी। राधेश्याम देवांगन जी का संदेश हमें मिला भवरपुर बसना से, इनके साथ है प्रभात अग्रवाल, युधिष्ठिर देवांगन। अनवर साबरी जी हमें संदेश भेज रहे हैं, अनवर साबरी जी के साथ है शन्नो साबरी, मुदस्सिर मुजक्किर, जरीफ अंसारी, दाऊद सराय सहारनपुर से। और सभी के संदेश ले चुके हैं, सोमदत्त जी का संदेश मिला ये पटियाला पंजाब से, इनके साथ है कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत, मनु, धन्यवाद आप सभी का संदेश भेजने के लिए। दीपेश वर्मा जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है ज्योति और शिवांश, पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। सभी के हम संदेश ले चुके हैं और अब फिलहाल कार्यक्रम से, आज के इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम से विदा लेते हैं, लेकिन बने रहिएगा आकाशवाणी के बाकी कार्यक्रमों के साथ। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त कुसुम को और लीजिए सुनते हैं आज के फिल्म संगीत के, आपकी पसंद के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ, लेकिन बने रहिएगा बाकी कार्यक्रमों के साथ।
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है कार्यक्रम सुरमंजरी का। सुरमंजरी कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हम सुनेंगे सितार वादन सलीम कुमार से राग गुजरी तोड़ी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को

महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से

0: हर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
0: और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गूगल चैनल 100.1 MHz पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम में 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
0: बिल्कुल। और मंजुला, शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की इस खूबसूरत से विचार के साथ। कहते हैं कि जीवन में सबसे मजबूत रिश्ता वो नहीं होता जो किसी और से जुड़ता है,
1: क्या बात,
0: बल्कि वो होता है जो इंसान का अपने आप से बनता है। क्योंकि हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा वादा निभाते हैं, तब आपका आत्मविश्वास और भी गहरा हो जाता है।
1: क्या बात है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का सवाल, आपका सबसे सच्चा दोस्त कौन है, साथी कौन है, वो जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है, या फिर वो जो हर सुबह आईने में आपको देखता है। आप अपना जवाब हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का सफर।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे आया सावन झूम के फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।
1: और दोस्तों, 4 जुलाई का दिन इतिहास, समाज, संस्कृति के कई प्रेरणादायक पड़ावों की याद दिलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि साथ मिलकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे किसान हो, महिला स्वयं सहायता समूह, दुग्ध समितियां हो या छोटे व्यापारी, सहकारिता ने लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
0: इसके अलावा आज एक और खास दिन है मंजुला। आज भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री और देश के सादगीपूर्ण नेताओं में गिने जाने वाले गुलजारीलाल नंदा जी की जयंती है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और ईमानदार राजनीति को हमेशा प्राथमिकता दी।
1: और आज ही भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार नसीम बानो जी की जयंती भी है। उन्हें अपने दौर की ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता था। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो की माता थी। पुकार, चल चल रे नौजवान और अनोखी अदा जैसी फिल्मों में उनके प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया।
0: इसके साथ ही 4 जुलाई यानी स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि, उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास, राष्ट्र प्रेम और मानव सेवा की भावना जगाई।
1: और आज महान गीतकार भरत व्यास जी की पुण्यतिथि भी है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ज्योति कलश छलके और आधा है चंद्रमा रात आधी जैसी अमर गीतों के रचनाकार भरत व्यास ने अपनी लेखनी से भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों को शब्दों में अमर कर दिया। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये गीत, गूंज उठी शहनाई फिल्म से लता और रफी की आवाज में।

0: तो अभी हमने एक सवाल किया था कि आपका सबसे सच्चा साथी कौन है, तो जवाब आने शुरू हो गए हैं कल्पना। तो हम शुरू करते हैं। संदीप राय जी लिखते हैं कि मेरा बड़ा भाई मेरा सबसे अच्छा मित्र है। क्या बात है, वो हमेशा मेरी मदद करता है और सही मार्गदर्शन करता है।
1: और पूरन सिंह जी यादव लिखते हैं कि सब साथ छोड़ दें लेकिन रेडियो हमेशा साथ निभाता है, यानी इनका सबसे अच्छा साथी है रेडियो।
0: और नवीन भाटिया जी लिखते हैं कि मेरे फादर साहब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं।
1: और महेश अग्रवाल जी ने भी लिखा है कि भाई एफएम गोल्ड उनका सबसे अच्छा साथी है।
0: और अमिताभ रथ जी ने तो बहुत ही लंबा सा एक मेल भेजा है, लेकिन उसका सारांश ये है कि उनकी वाइफ उनकी सबसे अच्छी मित्र है।
1: बिल्कुल। और देखिए आज हमारे जो श्रोता हैं वो सब यही कह रहे हैं कि भाई आकाशवाणी उनका सबसे अच्छा दोस्त है, एफएम ही। तो ये चरण दास जी भी यही लिख रहे हैं, मंजुला क्या बात है।
0: हाँ, और आदित्य मुद्गल जी लिखते हैं कि मेरी माँ, बस उन्होंने इतना ही लिखा है। और वैसे भी कल्पना कहते भी है कि माँ में तो पूरी दुनिया होती है।
1: बिल्कुल। और राधा शुक्ला जी ने हमें ईमेल किया है और उन्होंने लिखा है कि हमारा जो सच्चा साथी है वो अपना स्वास्थ्य होता है। तो हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।
0: बिल्कुल सही। तो चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आज की धरती जो होती है, आज की कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेस की नहीं होती है, बल्कि उस सोच की जो कहती है कि धरती को बचाना है। तो अपनी थाली से शुरुआत कीजिए। तो मिलिए निष्ठा चौहान से, एक ऐसी युवा इंजीनियर जिन्होंने एरोस्पेस जैसी शानदार नौकरी छोड़ दी। लोग समझ रहे थे कि ये करियर का सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन निष्ठा को दिख रहा था भारत का भविष्य।
1: बिल्कुल। और उन्होंने अहमदाबाद में शुरू किया गुजरात का पहला जीरो वेस्ट मिलेट कैफे, जिसका नाम कैफे आरम रखा। और

0: यहाँ सिर्फ खाना नहीं परोसा जाता मंजुला, पता है, बल्कि एक सोच परोसी जाती है। यहाँ प्लास्टिक नहीं, स्टील के स्ट्रॉ हैं, टिश्यू पेपर नहीं, रीयूज होने वाले तौलिए हैं।
1: बिल्कुल, और डिस्पोजेबल प्लेटें नहीं है, केले और अरेका के पत्तों की प्लेटें हैं। बचा हुआ खाना कूड़ेदान में नहीं, कंपोस्ट बनकर फिर से मिट्टी में लौट जाता है। और सबसे खास बात, जिस मिलेट को कभी सिंपल अनाज कहा जाता था, उसी से आज रागी डोसा, मिलेट मोमोज, बाजरे की भेल, रागी बन वाला वड़ा पाव जैसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो रहे हैं।
0: क्या बात है, यानी भारत का पारंपरिक खाना आधुनिक अंदाज में। और कैफे को ठंडा रखने के लिए पता है इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम भी अपनाया गया है। और यही नहीं, आरंभ बच्चों को टिकाऊ खान पान यानी कि शुद्ध भोजन की सीख भी देता है, ताकि पर्यावरण की चिंता बचपन से ही उनकी आदत बन जाए।
1: हाँ, और इन छोटी छोटी पहलों का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये कैफे हर साल लगभग 47 जो टन कचरा कम करने में योगदान दे रहा है। निशा मानती है कि हेल्दी बनने के लिए एवोकाडो या इम्पोर्टेड सुपर फूड जरूरी नहीं है, हमारे अपने बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो ही सुपर फूड है।
0: और उनका ये कैफे हर महीने लाखों रुपए का कारोबार कर रहा है, लेकिन असली कमाई सिर्फ पैसे नहीं बल्कि हर साल टनों कचरा कम करना, स्थानीय किसानों का समर्थन करना और बच्चों को सिखाना कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगली बार जब आप किसी कैफे में जाएं, एक पल रुक कर सोचिए, क्या हम सिर्फ स्वाद चुन रहे हैं या अपने आने वाले कल का भविष्य भी, क्योंकि सच्चा विकास वही है जो धरती को भी संवारे।

0: ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया, क्योंकि अब भारत की बेटियां सेना के उन पदों तक पहुंच गई हैं जहां सिर्फ पुरुष रहा करते हैं, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षित पहले महिला कैडेट्स के बैच को भारत के सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है।
1: और ये इतिहास में पहली बार है जो बदलते भारत की नई तस्वीर इस तरह की बेटियों ने सजाई है। और 25 जून 2026 को एनडीए ने पहली बार सेना, नौसेना और वायु सेना में बेटियों को सीधे अधिकारी के रूप में प्रवेश दिया है। और इस बैच में 17 महिला कैडेट्स थीं, जिनमें से 9 भारतीय सेना में अधिकारी बनी, 5 भारतीय वायु सेना अधिकारी बनी और 3 भारतीय नौसेना के उच्च पदों तक पहुंची हैं।
0: क्या बात है। और ये उपलब्धि हम इसलिए भी साझा कर रहे हैं मंजुला, क्योंकि एनडीए में महिलाओं के लिए समान अवसर का अध्याय शुरू हुआ है। ये सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम है।
1: और ये भारत के सैन्य इतिहास की बदलती हुई तस्वीर है, जहां अब बेटियों के लिए भी रास्ते खुल गए हैं। अब उनके पास भी उड़ने के लिए बराबर आसमान है।

0: श्रोताओं, खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे खामोशी फिल्म से, जिसे गाया कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने।
1: और ईमेल हमारे पास आने फिर से शुरू हो गए, और आज का जो सवाल है हमारा कि आपका सच्चा साथी कौन है, इस पे आपको रिप्लाई करना है। हमारा ईमेल आईडी fmgoalgae@gmail.com। तो सुदर्शन मुखी जी ने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत बात कही इन्होंने, कि हमारा सच्चा और हर पल साथ देने वाला साथी है हमारा अपना आत्मविश्वास।
0: बिल्कुल। और कृष्ण कुमार गुप्ता लिखते हैं कि भाई हमारा जो सच्चा साथी है वो वही है जो मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहता है।
1: और निदा बानो लिखती हैं कि मेरा सच्चा साथी उम्मीद है।
0: बिल्कुल। और ऋचा अवस्थी लिखती हैं कि कहते हैं कि सबसे सच्चा साथी वो होता है जो हर सुख दुख में साथ दे, लेकिन मेरी सबसे अच्छी साथी मेरी बहनें हैं, तो हम उनसे सारी बातें करते हैं।
1: और रश्मि गुरुग्राम से लिखती हैं कि जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन सबसे सच्चा साथी वो होता है जो हर हाल में आपका साथ न छोड़े। और मेरे लिए वो ईश्वर है जो हर खुशी हर मुश्किल में मेरा सहारा बनते हैं, और अगर दुनिया की बात करूं तो मेरा अपना विवेक और परिवार ही मेरे सबसे बड़े साथी। बहुत ही खूबसूरत बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल। और ऐसे ही अनिल मेहता जी लिखते हैं, देखो महिलाएं भी बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ इनकी सबसे अच्छी दोस्त है मंजुला।
1: क्या बात है, कहीं साथ तो नहीं बैठी हुई है
0: शायद इसीलिए।
1: हाँ, और गौरी शंकर जी लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम, राम कुछ राम। दोस्त मुसीबत में काम भी आते हैं, सभी नहीं, लेकिन हमें उन दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। मेरी तो बहनें ही लाखों में एक है, क्या बात है, जिन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया।
0: बिल्कुल। तो हमारे अन्य श्रोता भी हमें ऐसे ही ईमेल करते रहे, और आपके लिए ये प्यारा सा गीत।
2: तुम्हें
0: हाँ
2: क्या चुप रहूं
0: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
0: क्या है

0: श्रोताओं, एक खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे दीवार फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने।
1: और दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, आखिरी बार अपने मर्जी से कोई किताब कब पढ़ी थी और आखिरी बार आपने अपने मन की बात कागज पर कब लिखी थी? आज की भाग दौड़ में हम घंटों मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं लेकिन 5 पन्ने पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, जबकि सच तो ये है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसे लोग महसूस करें तो सिर्फ 2 आदतें अपनाइए, पढ़ना और लिखना।
0: बिल्कुल, देखो मंजुला, पढ़ना हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि ज्ञान देता है। ये हमारी सोच को गहराई देता है, हमारी कल्पना शक्ति को उड़ान देता है और शब्दों का खजाना भी बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, हमें एक अच्छा बातचीत करने वाला इंसान बनाता है, तभी तो हम अपने श्रोताओं से भी बात कर पाते हैं। अलग अलग विषयों की जानकारी होने के कारण हम आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, हमारी बातचीत प्रभावशाली बनती है, लोग हमें सुनना पसंद करते हैं और हमारा व्यक्तित्व तो अपने आप ही आकर्षक बनने लगता है।
1: क्या बात है। अब बात करते हैं लिखने की। लिखना सिर्फ शब्दों को कागज पर उतारना नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने विचारों को आकार देना है। जब आप लिखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोच स्पष्ट होती है और खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता कई गुना बेहतर हो जाती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर एन फ्रैंक की डायरी दुनिया तक ना पहुंची होती तो शायद इतिहास का वो दर्द, वो भावनाएं, उस दौर की सच्चाइयां हम कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं कर पाते। एक छोटी सी लड़की की लिखी हुई डायरी आज पूरी दुनिया के लिए इतिहास का जीवंत दस्तावेज है।
0: तो कौन जानता है, आज जो आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं, आपके अनुभव, आपके विचार, आपकी सीख, वही आने वाले समय में किसी बच्चे को प्रेरणा दे जाए, किसी शोध का आधार बन जाए या फिर पूरे समाज को नई दिशा दिखा जाए, है ना मंजुला? तो याद रखिए, जो पढ़ता है वो दुनिया को समझता है और जो लिखता है वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ता है।
1: बहुत ही खूबसूरत बात कही। तो आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़िए और 10 मिनट लिखिए, चाहे किताब हो, अखबार हो, कविता हो, डायरी हो या अपने दिन का एक छोटा सा अनुभव। यकीन मानिए, कुछ महीने बाद लोग कहेंगे आप में कुछ अलग बात है, क्योंकि अच्छी किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे व्यक्तित्व गढ़ती हैं और अच्छी लेखनी सिर्फ शब्द नहीं लिखती, वो विरासत छोड़ जाती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म थी तीन देवियां।
1: क्या कहने मंजुला जी। और देखो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी आदमी अकेला है। यानी आज की जो जिंदगी है वो जरूर व्यस्त हो रही है, लेकिन हर इंसान एक अकेलेपन से जूझ रहा है और उसमें भी सबसे आगे है युवा। वो युवा जो हमें हमेशा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से कनेक्ट नजर आते हैं, वास्तव में भी सबसे ज्यादा अकेले हैं। क्यों?
0: सही कहा। पहले लोगों के पास नेटवर्क भले कम था लेकिन डीप कनेक्शंस थे। आज सोशल मीडिया पर भले ही 2 मिलियन फॉलोवर हैं, लेकिन ऐसे 2 लोग मिलने मुश्किल हो जाते हैं जिन्हें हम मुश्किल की घड़ी में फोन कर सकें।
1: और इससे यही समझ आता है कि आज लोग अकेले इसलिए नहीं है कि उनके पास लोग नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ऑडियंस तो है पर कनेक्शन नहीं है।
0: तुम्हारा कहने का मतलब दिल से दिल का जुड़ाव। तो इसलिए जरूरी है कि खुश रहने के लिए इस अकेलेपन से बाहर रहें, इसके लिए रिश्तों को समय दें, कुछ नया सीखें, सोशल मीडिया का समय सीमित करें, मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहें, योगा करें, ध्यान करें।
1: साथ ही जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी चाहिए कि वे युवा मन को समझें, उन्हें सुने, तुलना न करें, उपलब्धियों को सराहें, सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल दें। फिर इन अकेले पड़ते अपनों का मन राहत महसूस करेगा और वे खुश रहना सीख जाएंगे बजाय अकेले रहने के।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे कालिया फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने। और मंजुला क्या कह रही थी आप?
1: मैं ये कह रही थी कि जब भी घूमने की बात होती है तो ज्यादातर लोग सीधे बड़े शहरों, मशहूर हिल स्टेशंस या फिर बीच डेस्टिनेशंस का नाम लेते हैं, लेकिन एक सवाल है कि क्या आपने कभी उस भारत को देखा है जहां सुबह पक्षियों की आवाज से होती है, जहां हर घर की रसोई में पीढ़ियों पुराने स्वाद पकते हैं और जहां परंपराएं सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जी जाती है।
0: मगर नहीं देखा है तो आपकी ट्रेवल लिस्ट में भारत के गांव जरूर होने चाहिए, क्योंकि असली पर्यटन सिर्फ तस्वीरें लेने का नाम नहीं बल्कि किसी जगह की संस्कृति, खान पान, लोक कला, भाषा और लोगों को महसूस करने का नाम है। क्यों मंजुला? गांव आपको वो अनुभव देते हैं जो कोई भी पांच सितारा होटल आपको नहीं दे सकता।
1: हाँ, अगर हिमाचल प्रदेश जाए तो सिर्फ शिमला या मनाली ही नहीं बल्कि किन्नौर का खूबसूरत कल्पा, बर्फीले रेगिस्तान वाला स्पीति भी देखिए। वहाँ के शांत मठ, सेब के बाग और पहाड़ी जीवन आपको प्रकृति से जोड़ देगा।
0: और इसके साथ ही लद्दाख का लामायुरू गांव, जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है, यहां का अनोखा चंद्रमा जैसे धरती का नजारा और सदियों पुराना बौद्ध मठ किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराते हैं।
1: तो मेघालय का मावली नांग, जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, नागालैंड का खोनोमा, जो बहुत ही खूबसूरत ग्रीन विलेज है, तो यहां के साधारण से घर, मिट्टी के चूल्हे पे बनी एक रोटी, किसी बुजुर्ग की बनाई लोक कथा आपकी पूरी यात्रा को खूबसूरत बना सकता है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता जी और आशा जी को फिल्म प्रोफेसर से, ये खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल मंजुला, और देखो हमारे एक साथी, इन्होंने एक बहुत ही अनोखा सा मैसेज किया है। इन्होंने लिखा है आशीष गिरी जी कि मेरा सच्चा साथी मेरा मोबाइल है, जो मेरे मूड से चलता है, जब चाहे ऑन जब चाहे ऑफ।
0: और राधा पाठक जी लिखती है कि हमारा सच्चा साथी हमारा ज्ञान है, जो हमें हमेशा सही राह पर ले जाता है।
1: बिल्कुल। और नवीन कुमार लिखते हैं कि पत्नी है जीवन की मधुर मुस्कान, उससे ही महकता है हर अरमान, सुख दुख में जो थामे हर पल हाथ, यही होती है जीवन की सच्ची साथी।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे हो जाला फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।
1: और इसी के साथ आज की हसीन सफर को देते हैं यही विराम। फिर मिलेंगे किसी दिन इसी समय पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। डीजे मंजुला
0: और कल्पना को अनुमति
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।

0: abandoned due to rain at Chesterlaw Street. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोस्तों, आपका इंतजार खत्म होता है और पेश करते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। जी हाँ, इस वक्त दिन के 1:10 हो रहे हैं और हमारे कार्यक्रम एक ही फिल्म से का वक्त हो चुका है, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे दीवाना फिल्मों के गीतों को और करेंगे फिल्म से जुड़ी ढेर सारी बातें। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओ, सन 1992 में रिलीज हुई ये फिल्म एक प्रेम कहानी है जिसमें ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान मुख्य भूमिकाओं में थे। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म एक प्यार, त्याग और फिर से जीने की उम्मीद की कहानी है। यह फिल्म दिव्या भारती, जो कि काजल के रोल में है, इनके इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि यानी ऋषि कपूर की मृत्यु के बाद राजा यानी शाहरुख खान से प्रेम करती हैं। हालांकि रवि के जिंदा होने और फिर से काजल की जिंदगी में आने से सब कुछ बदल जाता है।

0: आगे भी करेंगे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बातें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: Hey guys!
2: Hey, congratulations!
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओ, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है दीवाना। और इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ बनी हुई हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। श्रोताओ, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि शाहरुख खान की भूमिका के लिए सनी देओल पहली पसंद थे। जब सनी देओल ने इस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया तो फिर शाहरुख खान को कास्ट किया गया। ये शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म से पहले ही दिल आशना है के लिए साइन कर लिया था। ये फिल्म थोड़ी देरी से रिलीज हुई और संयोग से दोनों ही फिल्मों में उनकी जोड़ी दिव्या भारती के साथ ही थी।

श्रोताओं, एक बड़ी ही रोचक बात यह है कि ऋषि कपूर को पहली बार इस फिल्म का एक गीत है ऐसी दीवानगी गाना सुनने पर इस गीत से प्यार हो गया था। वे लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह गाना उन पर फिल्माया जाए, लेकिन फाइनली इस गाने को शाहरुख खान के लिए ही फिल्माया गया। ये भी बताना चाहूंगी कि इस गीत की धुन एक फेमस कन्नड़ गाने पर आधारित है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म को, इस फिल्म के इसी गीत को अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में।

दोस्तों, एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि इस फिल्म में बोल राधा बोल से बहुत कुछ मिलता जुलता है जो उसी साल रिलीज हुई थी। दोनों में ऋषि कपूर हैं और दोनों में ही उनकी माँ का किरदार सुषमा सेठ ने निभाया था। दोनों फिल्मों में अन्य कलाकार जो दिखाई दिए हैं उनमें आलोक नाथ और मोहनीश बहल शामिल हैं। दोनों फिल्मों में बहल ने नायक के परिवार की एक भरोसेमंद कर्मचारी के दुष्ट बेटे की भूमिका निभाई है। साथ ही दोनों फिल्मों में जब मोहनीश बहल के बुरे काम पकड़े जाते हैं तो उसका पिता उसे घर से बाहर निकालने का नाटक करता है। साथ ही दोनों फिल्मों में एक किरदार को मरा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन अंत में वह जीवित और स्वस्थ दिखाई देते हैं। खैर, ये तो रही दोनों फिल्मों की सिमिलैरिटीज, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम के बीच में बहुत सारे संदेश हमें आ रहे हैं। जो संदेश आ रहे हैं वो आ रहे हैं गुजरात अजीत भावसर का, और जो अगला संदेश है वो है यसीन अनजान का झारखंड से। गुरमीत सिंह हमें लिख के भेज रहे हैं शालीमार बाग से। पूनम गजनेजा जी हमें संदेश भेज रही हैं, साथ ही सुधाकर यादव, और इनके साथ हैं प्रशांत राज कुमार, संचित दयाल कुमार, प्रथमेश देशमुख और इनके अन्य साथी जो हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही अगला संदेश है नरेंद्र जी का और राधे श्याम देवगन हमें लिखकर भेज रहे हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से कमल कांत गुप्ता जी हमें लिखकर भेज रहे हैं। सतीश अनीजा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही अगला संदेश है वो हरजिंदर शिंदा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं। पंजाब से आर कुमार हमें लिखकर भेजा है, और इनके साथ है मिंटू थॉमस पंजाब से। धर्मेंद्र चीपा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, कपिल चीपा, और पूजा परिहार जी हैं, फागुराम यादव हैं, मुकेश पट्टा जी हैं, पीएस नावकर भी हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही जो अगला संदेश है वो रामचरण विश्वकर्मा जी का है, और बसना से हमें लिखकर भेज रहे हैं राधेश्याम जी। राजकुमार डूडी हमें लिखकर भेज रहे हैं, रोजी डिकास्ट्रा भी हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके अन्य साथी हैं संजय ढींगे हमें लिखकर भेज रहे हैं, सुदर्शन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं।

सुदर्शन मुखी जी हमें लिखकर भेज रहे हैं कि उन्हें हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है और बहुत ही जानकारियां प्राप्त हो रही है. आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो. बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मुखी जी. हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारे सभी लिसनर्स की जीवन बहुत ही सुखद हो. फारूक अली खान हमें संदेश भेज रहे हैं. संदीप मक्कर हमें संदेश भेज रहे हैं. साथ ही जो अगला संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर जी का. सुरेश जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं. अहमद फूलवाले हमें लिखकर भेजा. इनके साथ हैं इनके अन्य साथी. संदीप मक्कर जी का संदेश आ रहा है. हीरामणि वर्मा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं. और जो अगला संदेश है वो है इशक मोहम्मद का.

तो ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि उस साल दूसरी सबसे हिट फिल्म बनी। बेटा फिल्म के बाद इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की। यही नहीं, इस फिल्म का संगीत भी उस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला संगीत था, जिसमें 7 से 8 मिलियन यूनिट बेची गई थी। आपको ये बता दी कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट डेब्यू के लिए, दिव्या भारती को वर्ष का लक्स न्यू फेस के लिए, नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, समीर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए, कुमार सानू को गाने सोचेंगे तुम्हें प्यार के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए फिल्मफेयर अवार्ड मिले। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अब मैं दीक्षा आपसे अनुमति देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं, जाते जाते सुनते हैं इस फिल्म का ये अंतिम गीत।

0: होने वाले हैं अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनावियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे से 480 करोड़ रुपए की लागत नाल बनी नवी टर्मिनल इमारत का उद्घाटन किया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान अधारित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम बारे एक्ट युआपा तहत दहशतगर्द ऐलानिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास प्रगट किया है कि अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने वाला समुचा हाई स्पीड रेल कोरीडोर 2029 के अखीर तक मुकम्मल हो जाएगा। भारत और इसराइल विचकार दुवला निवेश समझौता BIA आज तो लागू हो गया है। भारत और इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेलिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे से नवी टर्मिनल इमारत का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत नाल बनी यह इमारत सालाना 20 लाख मुसाफरां की आवाजाई लिए तैयार की गई है। आधुनिक सहूलतों नाल लैस नवी टर्मिनल इमारत मुसाफरां लिए एक सुचारू और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। इस नाल इलाके विच सैर सपाटे कारोबार और रोजगार को उत्साह मिलेगा। श्री मोदी ने सोधी हुई उड़ान योजना भी शुरू की जो खेतरी संपर्क और हवाबाजी खेत्र को हुलारा देगी। देश के सिविल हवाबाजी खेत्र विच इस अहम पहलकदमी नाल उड़े देश का आम नागरिक स्कीम नूं होर बल मिलेगा। 28,840 करोड़ रुपए की वंड नाल इस योजना का उद्देश अगले 10 सालों में हवाबाजी अगवाई वाले विकास के अगले पड़ाव नूं गति प्रदान करना है। अज शामी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात लई रवाना होंगे जिथे उह सानंद विच CG सैमी आउटसोर्सड सैमी कंडक्टर असैम्बली ते टैसट सहूलत का उद्घाटन करनगे। यह भारत के सैमी कंडक्टर निर्माण खेत्र विच एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। यह प्रोजैक्ट इंडिया सैमी कंडक्टर मिशन तहत प्रवानित पहले 4 विचों एक है। इस नूं 7,500 करोड़ रुपए तो वध दे कुल निवेश नाल विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान अधारित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम बारे एक्ट युआपा तहत दहशतगर्द ऐलानिया है। यह व्यक्ति जैश ए मुहम्मद लश्कर ए तैयबा ते होर धड़ियां नाल जुड़े हुए सन। जम्मू कश्मीर विच घुसपैठ भर्ती हथियारों की सप्लाई और हमलों की योजना बनाने समेत वख-वख गतिविधियों में शामिल होने लिए उन्होंने दहशतगर्द ऐलानिया गया है। इस नाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA वर्गियां जांच एजेंसियां नूं इन्हां दहशतगर्दां की फंडिंग और हथियारों की विक्री ते पाबंदी लाने ते उन्हां दीआं जायदादां नूं कुरक करन दा अधिकार मिल जाएगा। युआपा एक्ट विच सोध केंद्र सरकार नूं संगठनां दे नाल नाल व्यक्तियों नूं दहशतगर्द ऐलानण दा अधिकार दिंदी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास प्रगट किया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला समुचा हाई स्पीड रेल कोरीडोर 2029 के अखीर तक पूरा हो जाएगा। गुजरात में चल रहे वख-वख रेल प्रोजैक्टों की समीक्षा करने तो बाद अहमदाबाद में मीडिया नाल गलबात करते हुए मंत्री ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजैक्ट का निर्माण तेजी नाल अगे वध रहा है। गुजरात सैक्शन 80% काम पहला ही पूरा हो चुका है। उन्होंने अगे कहा कि तेज रफ्तार रेल नैटवर्क नूं पड़ावार ढंग नाल विकसित किया जा रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: मंत्री ने अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन वाली थां ते इंजीनियरां अते निर्माण टीमां नाल गलबात भी कीती। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने अज वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया तहत गिणती फार्म जमा करवाया। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उपराष्ट्रपति ने दस्सिया कि दिल्ली दे मुख चोण अधिकारी, जिला चोण अधिकारियां, वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारियां अते BLO ने उपराष्ट्रपति भवन विखे SIR अधीन चल रही गणना प्रक्रिया विच सहायता प्रदान की। श्री राधा कृष्णन ने सारे योग वोटरां नूं इस प्रक्रिया विच सरगर्मी नाल हिस्सा लैण दी अपील की। ये खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। भारत और इसराइल विचकार दुवला निवेश

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक

0: The Prime Minister dedicated India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Speaking on the occasion, Mr. Modi said this refinery will provide employment to thousands of young people.
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है. ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी. मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ. आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं.
0: Prime Minister Modi also laid the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. Under Phase 2, a 41-kilometer north-south metro corridor will be developed from Prahladpura to Todimur, connecting the industrial and residential areas of Sitapura and Vishwakarma industrial area through 36 stations. We now take you live to the Prime Minister's address in Balotra.
1: Yahi. बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है साथियों. राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है. आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती. बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है.
0: Earlier, Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that no matter how big or unexpected the challenge may be, the new India neither retreats from its resolve nor slows down its pace. The Prime Minister also inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. In a major boost to the aviation sector, with a particular focus on regional connectivity, Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. This marks a significant leap forward in the country's civil aviation landscape and will further advance the vision of Ude Desh Ka Aam Nagrik. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development.
1: Jodhpur se hi aaj Udaan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui hai. Iske tahat chote-chote shaharon aur dur-daraj ke kshetron ko air connectivity se joda jayega. Saath hi ab Jaipur mein metro ka vistar bhi hone ja raha hai. Shekhawati kshetra ke जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है.
0: In a major boost to the India Semiconductor Mission, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the CG Semi-Outsourced Semiconductor Assembly and Test, or OSAT, facility at Sanand in Gujarat today. Developed under the India Semiconductor Mission,

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित

0: 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात

0: ने विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुहिमोरी

0: को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 kHz। स्टूडियो की घड़ी में समय 2:30 और 16 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए पेश है आपका अपना शो एक ही कलाकार।

राह दिंदौरी साहब ने एक शेर बहुत पहले ही कह दिया था कि लफ्ज कम पड़ जाते हैं जज्बात के आगे, संगीत बोलता है फिर हर हालात के आगे। एक ही कलाकार में आज बात उनकी जिनकी पहचान ही संगीत से है। तो आज की कहानी संगीत जगत के ऐसे ही फनकार की जिन्हें तीन अलग अलग नामों से जानते हैं हम। बॉलीवुड उन्हें M.M. करीम के नाम से जानता है, वहीं तेलुगु सिनेमा में वे M.M. कीरावानी के नाम से मशहूर हैं और तमिल सिनेमा में उन्हें मरगद मनी के नाम से पुकारा जाता है।

जी हाँ, भारत के इकलौते ऐसे दिग्गज संगीतकार और गायक जिन्होंने दक्षिण भारत से लेकर बॉलीवुड तक और फिर पूरी दुनिया तक अपने संगीत की खुशबू फैलाई, और ऑस्कर विजेता संगीतकार M.M. कीरावनी एक ऐसे संगीतकार जिनका संगीत प्रेम, भक्ति, दर्द, वीरता यानी इंसानी जज्बात के हर रंग में ढलना जानता है।

4 जुलाई 1961 आंध्र प्रदेश के कोवूर में जन्मे कोडूरी मरकतमणि कीरवाणी। पिता कोदूरी शिव शक्ति दत्ता पेंटर और म्यूजिक कंपोजर, जिन्होंने फिल्मों के लिए कई गीत और स्क्रीन प्ले भी लिखे। मुंबई के सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई करने वाले पिता ने बचपन से ही संगीत से कीरवाणी का परिचय कराया और सिर्फ 10 साल की उम्र से ही उन्होंने वायलिन और हारमोनियम से दोस्ती कर ली। 1987 से अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत करने वाले 61 वर्षीय कीरवाणी को एसएस राजामौली की फिल्म आरआर के लिए गीत नाटू नाटू के लिए पहले गोल्डन ग्लोब से नवाजा गया और फिर सबसे बड़े संगीत सम्मान ऑस्कर अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए। आइए सुनते हैं हम उनके एक और बहुत ही प्रसिद्ध गीत को।

जी हाँ साथियों, आपको याद दिला दें, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आपके संदेश, आपके मेल, हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए हम प्रतीक्षा में हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें शाहजी बोडके हैं, ये हैं हनुमान बोटके के साथ, उत्तम जमदाड़े जी के साथ हिंगोली महाराष्ट्र से, और हमारे कार्यक्रम को बहुत गौर से सुन रहे हैं। उसी तरह कार्यक्रम एमएम करीम जी पर आधारित आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, उनके गीत इन्हें बहुत पसंद हैं। और ये श्रोता साथी हैं संतोष कुमार सोनार, सन्नी मुन्ना बंडू दादा, ये हैं रथ चौक बहादुरपुर खानदेश महाराष्ट्र से। जी, महाराष्ट्र के बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारे हौसले को बढ़ाते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। गांव खिटोनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम तबस्तुम तरन्नुम और तराना हिना और सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को बहुत गौर से सुन रहे हैं। इसी तरह पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं अनिल उषा टिल्लू नायक और मधु नायक, कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज प्रसिद्ध बॉलीवुड संगीतकार एमएम करीम जी पर केंद्रित कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और जानकारी अच्छी लग रही है। और ये लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से। उसी तरह हमारे श्रोता साथी हैं, ये हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान और ये हैं धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल और पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबलपुर कांकेर से फग्गू राम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव हैं। और देखिए, जो हमारे लिसनर्स हैं वो संगीत से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और इसीलिए रेडियो उनका अपना मनपसंद साथी होता है और हमारे साथ वो जुड़कर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, हमारे कार्यक्रम के लिए हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। और आप सुन रहे हैं एक

की कलाकार में आज प्रसिद्ध संगीतकार MM करीम के बारे में। तो चलिए हम आपके इसी तरह संदेश साझा करते रहेंगे आपसे भी, लेकिन फिलहाल करते हैं हम उनके बाद जो हैं आज हमारे कार्यक्रम के केंद्र में। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने वाले कीरा वानी जी जो हैं, उनकी यात्रा भी हर सफलता की यात्रा की तरह आसान नहीं रही दोस्तों। लंबे समय बतौर असिस्टेंट काम करने के बाद जब उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला तो उनकी वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। 1990 से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस प्रतिभाशाली कलाकार को 1991 में तेलुगु क्षण क्षणम से बड़ा ब्रेक मिला। ये वो पहली हिट फिल्म थी जिसने कीरावनी को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। और 1994 में उनकी एक फिल्म आई क्रिमिनल, जिससे उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला हिंदी सिनेमा में कदम रखने का, क्योंकि क्रिमिनल का तेलुगु संस्करण जो था वो 1994 में आया था और हिंदी संस्करण 1995 में आया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा। लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम मचाया फिल्म के संगीत ने। क्रिमिनल फिल्म ने जितना पैसा फिल्म से कमाया था उससे कहीं ज्यादा उसकी म्यूजिक सीडी की बिक्री से कमाया गया और इस फिल्म के गीत तू मिले दिल खिले ने रातों रात मशहूर कर दिया संगीतकार MM करीम को।

जी हाँ, 1998 में फिर उनकी फिल्म आई जख्म, जिसका गीत गली में आज चांद निकला ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आज भी वो गीत जब कहीं बजता है, जैसे कुछ देर पहले हमने आपके लिए बजाया, तो एक कदम हर संगीत सुनने वाले साथी का ठिठक कर रह जाता है उस गीत और संगीत में खो जाने के लिए।

और उसके बाद एक बहुत ही औसत फिल्म का जादुई गाना आया, जादू है नशा है, जो महीनों तक लोगों के जुबान पर चढ़ा रहा। एक के बाद एक हिट गीत देने वाले M.M. करीम, जिन्होंने कई ऐसे गीत कंपोज किए और उनके हर कंपोज किए गीत को सुनने वाला संगीत का दीवाना मदहोश होकर सुनता रहा।

एम कीरावनी कोडूरी मराक थामनी कीरावनी, ऐसे परिवार से आते हैं जहां संगीत और सिनेमा दोनों मिले हैं विरासत में उन्हें। परिवार में कला का माहौल और मेहनत और सफलता उनके कदम चूमने लगी। जानते हैं उन्होंने महान संगीतकार के चक्रवर्ती के सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और यहीं से उन्होंने सीखा धुनों को जीना।

साथियों आपको बता दें, एक ही कलाकार में बात हो रही है प्रयोगवादी मौलिक धुनों के रचनाकार M.M. करीम की। 90 के दशक में जब हिंदी फिल्म संगीत में नए दौर में हिंदी फिल्म संगीत प्रवेश कर रहा था, तब निर्देशक महेश भट्ट ने M.M. करीम की प्रतिभा को पहचाना। क्रिमिनल के बाद ही उन्होंने यानी महेश भट्ट निर्देशित फिल्म जख्म में संगीत दिया। इस फिल्म में M.M. कीरावनी ने भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया। फिल्म की संवेदनशील कहानी के साथ वो गीत बिल्कुल मुफीद रहे। उनकी सरल धुन, भावनाओं की गहराई, इस फिल्म के गीत संगीत ने अपनी अलग पहचान तो बनाई ही। साथ ही आपको बता दें कि एक ही कलाकार में ये जो हमारे साथी हैं आज के M.M. करीम, ये कलाकार, इनके साथ एक किस्सा बहुत ही मशहूर हुआ, वो था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पितामह रामोजी राव के लिए, कि उस समय कीरावनी ने कई फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया

उनके लिए और एक फिल्म पर काम करने के लिए फिल्म के निर्देशक ने से उनका मतभेद हुआ और उन्होंने उस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। रामोजी राव ने जब इसकी वजह उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरी की पूरी फिल्म की कहानी में क्रिएटिव डिफरेंस और रचनात्मकता की कमी लग रही है। ऐसे जो शब्द थे वो रामोजी राव के लिए बहुत ही नए थे, अनोखे थे और अनसुने थे। फिर क्या था, रामोजी राव को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि कीरवानी की जगह किसी और को लेकर आए, कोई MM करीम है, उनका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। ऐसा कहा उन्होंने, यानी जिस दौर में लोग उनकी धुनों के दीवाने थे तब वे MM करीम का नाम भी नहीं जानते थे। 1994 से लेकर अगले 10 सालों तक MM करीम हिंदी सिनेमा के लिए गुमनाम से रहे और लोग सिर्फ उनके गानों के मुरीद थे, वे नहीं जानते थे कि कंपोज किसने किया है।

साथियों, एमएम कीरा वाणी के बारे में ये बताना जरूरी है कि अपने काम को पूजा की तरह करने वाला ये कलाकार, उनका मानना है कि संगीत कहानी का किरदार होती है और बैकग्राउंड की तरह उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। शायद यही कारण है कि उनका हर गीत दिल में चस्पा हो जाया करता था। ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, पद्मश्री विजेता कीरवानी साहब इंटरनेट के पहले भी पैन इंडिया हो चुके थे, लेकिन अब वे ग्लोबलाइज हो चुके हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके खुशहाल जीवन की हम कामना करते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम के माध्यम से जन्मदिन की बधाई देते हैं। आशा करते हैं आज का शो, आज के कलाकार में प्रस्तुत जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम से दीजिए मुझे यानी मनीषा को अनुमति, छोड़े जा रही हूँ इस शो के अंतिम गीत के साथ। आपको नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए पेश है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो आपको और हमारे सब श्रोता भैया बहनान को ना अषाढ़ के महीना की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।
1: जी हाँ चंपा जी, हमारे सब श्रोतान को बधाई शुभकामनाएं। और देखो तो सही कैसे धीमे धीमे और बड़े प्यारे प्यारे से उमड़ते घुमड़ते बदरान के बीच में रसीले फलन के संग, और ये आकाश में जब आते जाते बादल हो ना, वहाँ में बाहर बैठ के आषाढ़ मास को आनंद कछु और है जाए है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, यही मारे तो ये अषाढ़ को जो महीना है ना बड़ो सुहानो लगे, और हमारे ब्रज में तो ऐसे ही या पावस ऋतु के अषाढ़ के काजे कहो गयो है ना। चलो सखी ब्रज कुंजन की ओर।
1: जी हाँ चंपा, ये जो कुंजन की ओर चलवो है ना, कुंज आमंत्रण दे हैं, आप तनिक देखो तो सही कुंजन की सघनता और वनन की जो संपदा है, ये कौन को मन नाय मोवे है। या मैं ऐसे बादल में बूंदन के बीच में ये सघन लता पता कुंज ऐसी हरियाली है गई है
0: जी,
1: कि इन पर पक्षिन को कलरव और इनको देख के नेत्रन को जो आनंद मिले।
0: हाँ।
1: वासु तो बरबस ही हम सब उनकी ओर खिंचे चले आमे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, ब्रज को वैभव तो है ही ब्रज की वन संपदा में। देखो इन्हीं वृक्ष और वनस्पति को और वृक्षारोपण और पर्यावरण को महत्व देते हुए ना हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष यही लिए ना वन सप्ताह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनायो जाए। तो आजकल तो हमारे यहाँ वन सप्ताह बड़े ही हर्षोल्लास से मनायो जा रहे हो।
1: जी हाँ चंपा जी, पूरे भारत वर्ष में या समय वन सप्ताह मनायो जा रहे हो है। और आपको बता दें कि वर्ष 2026 की जो वन सप्ताह की मुख्य थीम है ना
0: जी,
1: वह विषय है वन और अर्थव्यवस्था। चंपा जी, हमारे जो पर्यावरण शास्त्री हैं, उन सब ने मिलके तनिक देखो तो सही कितनो विचार करके ये विषय दियो है। क्योंकि यदि हम देखें तो प्रकृति की संपदा, प्रकृति को अर्थ, प्रकृति को धन, तो ये वन और वनस्पति ही है।
0: यही लिए तो काऊ ने सांची बात कही है, अगर परिंदों के गीत सुनना चाह

0: इनके प्राण हैं।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, यही लिए तो जो ये वन संपदा है, ये प्राणाधार है, संजीवनी है, और इनकी जो सघनता है ना, वो मानव जीवन की ऊर्जा है।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये मनभावन लोकगीत सुन रहे हते। तो नृत्य गोपाल जी, देखो हम अपने श्रोता भैया बहनान के संग यह वक्त चर्चा कर रहे हैं वन सप्ताह की। तो आपने कितनी बढ़िया बात कही कि जो थीम है वो भी वन संपदा की अर्थव्यवस्था से जोड़ के अब की बार रखी गई है।
1: चंपा जी देखो, ब्रज में 12 वन, 12 उपवन, और ये जो एक लंबी श्रृंखला है ना ब्रज के वनन की, ये जो ब्रज के वनन को वैभव है ना, यह ऐसी संपदा है। अगर हमें इमारती लकड़ी लेनी हो,
0: हाँ,
1: तो हमारे वन हमको दे हैं, तनिक देखो तो सही, पूरे जो हमारा उत्तर भारत को मैदानी इलाकों जासों कहें, वहां में आम, नीम, शीशम, सागवान मिले हैं, ये सब इमारती लकड़ी हो। तनिक देखो काम आईवी बारी जो लकड़ी है, बबूल, छोंकर, फरास, नीम, पापड़ी, धो, रेमंजा, हींस, ये सब हमें वनसो ही तो मिले हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, बात आप सही कह रहे हो। देखो कितनी रोचक बात, अषाढ़ के महीना में जैसे ही पावस ऋतु को आगमन होवे, तो देखो जो वृक्ष हैं उनकी लता पतान की जो शाखा है बेउ विस्तार पा जाए, जो पत्ता है बेउ सघनता को ग्रहण कर ले में।

0: जा हिंस, ये सब हमें वंशों ही तो मिले हैं।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, बात आप सही कह रहे हो। देखो कितनी रोचक बात, अषाढ़ के महीना में जैसे ही पावस ऋतु को आगमन होवे तो देखो जो वृक्ष हैं उनकी लता पतन की जो शाखा हैं बेउ विस्तार पा जाएं, जो पत्ता हैं बेउ सघनता को ग्रहण कर ले में हैं। तो ये आषाढ़ को महीना है ना, ये अपने आप में बड़ो सुहानो मनोरम और रमणीक महीना है।
0: चंपा जी, आपने ये जो बात कही है, हम एक चीज भूल गए, जब पत्ता

0: काउ बैठक पे अपनी कवितान को रस बिखेरे हैं, आनंद ले हैं श्रोता, तो क्यों ना आज हम अपने श्रोतान के ताई ये काव्य पाठ सुनवा में।
1: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं काव्य पाठ कविवर अशोक अग्गे जी ते।
2: ब्रजमाधुरी के सभी श्रोताओं को अशोक अग्गे की सबको नमस्कार। बारे मास ब्रज में उत्सव ठाकुर उपमा राशि है।

खरीफ जायद की खेती भारत ने उपजाई है। और भीषण गर्मी के दिन बीते ऋतु असाढ़ की आई है। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, मंद फुहार सुहाई है। उड़द मूंग की दाल करेला भिंडी।

एक सखी जा रही है, एक सखी घर सोने कसी, मानो चंदई देन चली उपमासी। और कोई कहे यह काऊ की नागर, को कहे यह काऊ की दासी। मार्ग बीच

के विश्वास अधूरो मत करियो, विश्वास अधूरो मत करियो। और देखिए हमारे ब्रिज में आमे कमें लोग, सबसे बड़ी बात है कि भरपूर जवानी दम ही दम, बस दाम ही दाम याद आयो, मन लग्यो नहीं हरे चरणन में, सब भूल्यो काम याद आयो, मन लग्यो नहीं हरे चरणन में।

आयो सब छोड़ दई दुनियादारी पर तेरी यारी ना छोड़ी दो चार दिना कहूं घूम लिए ब्रज भूमि प्यारी ना छोड़ी तेरो कर्जा ना उतरेगो कहूं और उधारी ना छोड़ी तेरो कर्जा ना उतरेगो कहूं और उधारी ना छोड़ी पर दर पे तेरे ताका झांकी हे बांके बिहारी न छोड़ी हे बांके बिहारी न छोड़ी छोड़ घर द्वार धन दौलत मिला तुम्हार छोड़ घर द्वार धन दौलत मिला तुम्हार हार मानू बैठे श्यामून को सहारो है तो मान सम्मान कहूं कहूं अपमान मिले तो मान सम्मान कहूं कहूं अपमान मिले सबको भल्यो हो ऐसो मन में बिचारो है काऊ दिना भोजन में माल पुआ खीर मिले काऊ दिना भूखे पेट फाके में गुजारो है काऊ दिना भोजन में माल पुआ खीर मिले काऊ दिना भूखे पेट फाके में गुजारो है और सबको बचावे वही।

0: नाम को उपकार हो। एक छंद गिरिराज जी का और बोल दे रहा हूँ, तो गिरिराज जी हमारे दोनों करते थके खड़े हुए हुए हैं। सोने को मुकुट मनोहारी, सोने को मुकुट मनोहारी, और पाग बंधी है जरतारी, मुक्ता मणिमाल गरे सो है, नख पे गिरिराज सिला भारी, दूजे कर सोहत रतन जड़ी, चांदी की छड़ी लगे प्यारी, दूजे कर सोहत रतन जड़ी, चांदी की छड़ी लगे प्यारी, यह दिव्य छटा बाकी जाकी, श्रीनाथ प्रभु की बलिहारी। अशोक की सब यंकु राधे राधे राधे राधे।
1: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप काव्य पाठ सुन रहे कविवर अशोक अग्र जी को, और उनने तनिक देखो तो सही बारह मासिन को वर्णन कर दियो। उनने हमारे यहाँ की वन संपदा की चर्चा कर ली, फसलन की चर्चा कर ली, और बाकी बिहारी और गिरिराज जी की तो बात ही कहा कही जाए, उनने उनको हूँ नमन कर लियो।
2: नृत्य गोपाल जी, नमन करवे की बात यो हो वे ना के आषाढ़ को महीना लग गयो, तो आषाढ़ सावन भादो कुवार, तो अब ये चातुर्मास को समय ब्रज में या वक्त उपासना को और आस्था के ये चारों महीना हैं, तो चर्चा तो हमारे चाहे गिरिराज जी हैं, चाहे बिहारी जी हैं, चाहे राधा रानी हैं, इन सब इष्टन को बने ही हैं। तो ऐसा करें कि चलते चलते अब अपन की चर्चा तो चल ही रही है, यही चर्चा के बीच में अपने प्यारे भैया बहनान को एक मन भावन सो लोकगीत सुनवाई दें।
1: आप तो जल्दी करो ऐसे कामन के।
2: तो आओ प्यारे भैया बहनाओ, जब नृत्य गोपाल जी ने संकेत कर ही दियो है, आपके संग हम सुने या मन भावन से लोकगीत को।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये सुरीलो सो लोकगीत सुन रहे हते। हाँ प्यारे भैया बहनाओं, बात तो आपके संग करवे को बहुत सारी है, पर आप भी जानो हम भी जाने के समय की अपनी सीमा है। कोई बात ना है, अब आए हैं तो जानो ही पड़ेगा, फिर मिलेंगे। हाँ भैया बहनाओं, इन्हीं प्रेम भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न होवे है। मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जैवी की अनुमति प्रदान करें।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 3:30:16 हो चुके हैं। प्रस्तुत है नाटक फुलमो रांझो कड़ी 2। नाटक के लेखक हैं रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है।
1: आइए सुनते हैं नाटक फुलमो रांझो, लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनेंगे।

0: मेरी जमुए दिराहें चंबा कितनी कदूर।
1: क्या बात है पहलवान, दो तीन दिन से बड़ा तानसन बना हुआ है।
2: बापू
1: आजकल तुझे बहुत याद आ रही है, ऊंची ऊंची रेड़ियां, डूंगी डूंगी नदिया, और ये झोले में क्या डाल रहे हो?
2: वो बापू हम वो हम मतलब हम लड़कों लड़कों ने ना भाग सुना जाने की सलाह बनाई हुई है बापू।
1: वहां जाकर क्या करोगे? वो तो पूजा पाठ वाली जगह है, भद्रवा चले जाओ ना चंबा से चुराह के रास्ते।
2: अरे नहीं नहीं बापू, नहीं नहीं बापू,
1: नहीं नहीं बापू, क्या मेरी क्या आंख कान नहीं है? मेरे तो नाक भी है बच्चे सूंघने के लिए, मेरे कान तो दर्जनों हैं, वो भी हवा में उड़ते हुए।
2: अरे अरे बापू, आप जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है।
1: हाँ हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे पता है। चल ओवरी में चलकर बात करते, चल।
2: हाँ हाँ चलते हैं बापू, बात जो मर्जी पूछ लो आप, चलते हैं, चलिए आइए। ये क्या बाबू, ये क्या कर रहे हो? अरे बाहर से कुंडी क्यों लगा रहे हो बाबू? अरे तुमने तो

0: तीन दिन खाना पानी सारी खातिरदारी ओवरी के अंदर ही हो जाया करेगी।
1: क्या?
0: कुंडी बंद ही रहेगी। अरे कुंडी बंद रहेगी तो पिटाई से भी तो बचा रहेगा ना।
1: बापू बापू मेरी बात तो सुनो बापू, मुझे कब तक दबे रहोगे? मैं तमाशा करूं, तमाशा करूं बापू।
0: काकुराम, ओ काकुराम आना जरा।
2: अभी आया सरकार।
3: आ गया मालिक।
0: शाबाश आ गया। और से देखकर बताना ये ओवरी के अंदर कौन बंद है।
3: ये तो आपके फर्जंद है मालिक। क्या हुआ मालिक?
0: कुछ भी नहीं हो सका। हो तो बहुत कुछ गया होता, अब कुछ भी नहीं होगा।
3: मतलब मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार?
0: इन साहब के अगले 2-3 दिन तो अंदर ही कटेंगे। सुन, अभी घर जाकर अपनी बेटी फुलमू से कहना कि अगले 2-3 दिन जितना चाहे उड़ ले, जहां जी चाहे, मगर 2 दिन के बाद जब तक ब्याह नहीं दी जाती उसका घर की दहलीज से बाहर कटा हुआ नाखून भी नहीं आना चाहिए।
3: क्या क्या हुआ मालिक?
0: फुलमू बता देगी ना क्या हुआ। तू मुझे बहुत अच्छा लगता है काकुराम। और ये जो अंदर मछली की तरह तड़प रहा है ना, उससे अधिक लाडला नहीं है तू।
3: आप माई बाप हैं सरकार।
0: जा सकते हो। हाँ जी। एक बात और, आज रात को सो मत जाना।
3: जी मालिक।
0: ऐसे ही नाटक करना सोए हुए होने का। रात का पहला पहर खत्म होने पर जैसे ही फुलमू उठकर दबे पांव बाहर जाने लगे ना, तो बाजू पकड़कर रोक लेना।
3: ठीक है सरकार।
0: और उसे बता देना कि रांझो नहीं आ पाएगा।
3: जी।
0: बेचारे की मुश्कें कस दी गई हैं। बिना मां की लड़की ऐसे ही आधी रात को उस अंधेरी वीरान जगह पर प्रतीक्षा करती रहेगी, कहीं को जानवर खा गया या चुड़ैल चिपट गई। और तुम तो काकुराम बिल्कुल अकेले रह जाओगे फिर।
3: नहीं मालिक।
0: जा तू जा। कोई नहीं कोई नहीं। देख तू समझदारी से काम लेगा तो मेरा कोई बैर थोड़ी है तुझसे।
3: जी जी मालिक।
1: बाबू बाबू दरवाजा खोलो बाबू, अब तो खोल दो दरवाजा बाबू।
0: सुन चलो, तुझे भी संतुष्टि हो गई ना कि अब फुलमू दर बदर नहीं होगी।
1: बापू ये क्या क्या?
0: अब वो घर से ही नहीं निकल पाएगी। खाना खाकर आराम से सो जाना।
1: खाना खाकर बापू खोलो दरवाजा, खोलो बापू, मेरी बात तो सुनो।
3: हे भगवान, अब क्या होगा, क्या होगा मेरी फुलमू का?

0: वाला है। अरे अरे अब तो किवाड़ खोल देते बाबू, अब तो किवाड़ खोल दो।
1: खोल दूंगा, लेकिन करोगे क्या बाहर आकर?
0: यहाँ क्या है बापू? मुझे भले ही सारा जीवन कोठी में बने कारावास में डाल दो, मगर फुलमू से कभी भी अलग नहीं कर सकते। हाँ बाबू, कभी नहीं कर सकते, भले ही मेरा खाना पानी भी बंद कर दो।
1: अरे, इतनी बेचैनी किस बात की? पहले दो कोर तो उतार ले।
0: कोर उतार लो?
1: हाँ।
0: मतलब ही नहीं बाबू।
1: सुन, एक महात्मा जी को बुलाया हुआ है, उनसे जीवन के कुछ सूत्र सीख लेना, फिर खोल दूंगा किवाड़।
0: महात्मा क्या कर लेंगे इसमें बाबू?
1: चुप कर, महात्मा जी आ रहे हैं।

0: कोई बात नहीं जेठा सिंह जी, सहज रहें। यही बच्चा है ना?
1: जी महाराज, यही है। बिल्कुल बिगड़ गया है। मेरा अपना बेटा नहीं होता तो अब तक खाल उतार ली होती इसकी।
0: नहीं जेठा सिंह जी, आप स्वयं ही शांत और संयमित नहीं।
1: अब
0: सबसे पहले तो दरवाजा खोलो और बच्चे को बाहर निकालो। दूसरा ये कि आपके रहते खुलकर बात नहीं हो पाएगी।
1: कोई बात नहीं महाराज, ठीक है।
0: और हाँ, इसके किसी हम उम्र या फिर किसी सेवक को भेज दीजिए, आवश्यकता पड़ सकती है।
1: जी।

0: हाँ तो बेटा, मेरा बेटा रांझो तो अच्छा ऊंचा लंबा है। हाँ, रंग थोड़ा गंदमी अवश्य है। हमारी फुलमू बिटिया पक्का गोरी चिट्टी और थोड़ी मध्यम कद की।
1: हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। महात्मा जी, आप तो अंतर्यामी हैं।
0: बता सकते हो ऐसा क्यों? क्यों इतनी सुंदर है वो?
1: अब मैं क्या बोलूं, मुझे क्या पता महात्मा जी।
0: ठीक है, मैं जो भी पूछूं, तुम्हें मालूम हो तो जवाब दो, नहीं तो मैं स्वयं ही जवाब दे दूंगा।
1: ठीक।
0: तुम्हारा परिवार तो खानदानी है, राजसी है, मगर फुलमू का परिवार ऐसा ही होगा, थोड़ा गरीब गुरबा सा।
1: थोड़ा नहीं, समझो बस कुछ है ही नहीं।
0: आकर्षण तो सदा विपरीतों में ही होता है बच्चा।
1: अब मुझे क्या पता महात्मा जी, ईश्वर के निकट तो आप ही अधिक हैं।
0: तो सुनो, दुनिया में लालसा तो प्रेम से पहले ही आ चुकी थी, जब मनुष्य का जीवन केवल शिकार के सहारे ही चलता था, तब परिवार की ये व्यवस्था नहीं होती थी। खेती की शुरुआत हुई तो संसाधनों का महत्व समझ आया, जमीन, पानी और मवेशी, ये सारी संपत्तियां अर्जित कर लेने पर इनसे लालसा और मोह का जन्म हुआ। बच्चे, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति का खेल है। मनुष्य समझता है कि मुझे इससे अथवा उससे प्रेम हो गया है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। वास्तव में ये प्रकृति की चाल है।
1: तो ये बात है। प्रणाम महाराज जी।
0: प्रणाम बच्चा, आओ बैठो। रांझो
1: जी,
0: चुंबक देखा है ना तुमने?
1: हाँ हाँ महात्मा जी, एक धातु होती है।
0: बिल्कुल ठीक, उसके केवल परस्पर विपरीत सिरे ही एक दूसरे को खींचते हैं। प्रेमी अपना साथी ढूंढते हुए

0: नाम बच्चा, आओ बैठो। रांझो
1: जी,
0: चुंबक देखा है ना तुमने?
1: हाँ हाँ महात्मा जी, एक धातु होती है।
0: बिल्कुल ठीक, उसके केवल परस्पर विपरीत सिरे ही एक दूसरे को खींचते हैं। प्रेमी अपना साथी ढूंढते हुए उसी गुण पर मर मिटते हैं जिस गुण की उनके अपने में कमी होती है। अब तुम दोनों बच्चे सोच रहे हो

0: प्रीत लगाई भी जाए तो ऐसी जगह लगाई जाए जहां समानताएं अधिक हो।
1: धन्य हो महाराज, आप धन्य हो।
0: अब मैं चलता हूं रांझो, तुम आजाद हो, जहां चाहो आ जा सकते हो।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी।
1: उफ, दिमाग घुमा कर रख दिया इन महात्मा जी ने।

0: पारे पारे फुलमू दिलोथ लोको गल्लां होइयां बीतियां होए
1: गल्लां होइयां बीतियां
0: होए गल्लां होइयां बीतियां
1: गल्लां होइयां बीतियां।

0: राम नाम सत्य है,
1: राम नाम
0: सत्य है,
1: राम नाम
0: सत्य है।
2: अरे अरे अरे अरे सच्ची के मौके पर ये क्या सुन लिया, ये क्या देखना पड़ रहा है?
3: ओह ये क्या हुआ, बहुत ही अशुभ हो गया भाई। सामने से अर्थी आ रही है, ये नहीं कहीं और खड़े होकर प्रतीक्षा कर लेते, शादी तो समय के अनुसार होती है।
4: हाँ हाँ बारात को निकल लेने देते।
3: किनारे हटो, सामने से, सामने मत दिखना।
2: हटो हटो,
5: क्या बातें कर रहे हो? जो दुनिया से चला गया उसके लिए तो सम्मान होना चाहिए।
4: खानदानी परिवार की बारात है, अशुभ होता है, इनका क्या है?
5: पर मृत्यु केवल एक बार ही होती है। मैं कहता हूँ पाल के हटाओ रास्ते से, हटाओ रास्ते से, निकल ले दो इन्हें। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है,
0: राम नाम
5: सत्य है,
0: राम नाम
1: सत्य है,
0: राम नाम
1: सत्य है,
0: राम नाम
6: सत्य है,
7: राम नाम सत्य है,
0: राम
3: अरे ये तो हमारे काकू राम की बेटी की अर्थी है, फुलमू की मौत।
5: क्या कहा? फुलमू? क्या हुआ मेरी फुलमू को, क्या हुआ मेरी फुलमू को? बोलो, बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ मेरी फुलमू को?
8: इसने जहर खा लिया पाले। अब शकुन के डर से हमने ज्यादा किसी को नहीं बताया, नहीं बताया।
3: फुलमू, फुलमू, ये तुमने क्या किया फुलमू, ये तुमने क्या किया?
5: पाल के नीचे उतारो, नीचे उतारो पाल की, जल्दी उतारो नीचे।
3: अरे रुको, इसको इसको मुखाग्नि मैं दूंगा, काकुराम नहीं, इसको मुखाग्नि मैं दूंगा, मैं दूंगा इसको मुखाग्नि।
5: फुलमू ने कहा था,
3: फुलमू ने कहा था, रांझो मैं तेरे साथ नहीं रही, तेरी नहीं रही तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तू इस टापू में मेरा चौथा

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक फिल्मो रांझो, लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रियंका भंडारी, मंगत राम, विशाल कुमार, दक्ष वशिष्ठ, नितिन गुप्ता और प्रवीण शर्मा। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक फिल्मो रांझो कड़ी 2। इस नाटक के लेखक थे रमन केसर और निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।
2: ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर।

प्रसारकों ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में काबो वर्दे को अतिरिक्त समय के 3-2 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. Addressing the program, Prime Minister Modi said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century. But India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया. औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई. पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया.
0: Highlighting other development initiatives launched during the visit,

एक गुमशुदगी की, और इनका नाम है साहिल, पुत्र राजेंद्र प्रसाद हैं। इनकी उम्र तकरीबन 20 वर्ष है और ये मानसिक मंदित आश्रय गृह NH 58 से लापता हैं। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इनके शरीर की बनावट सामान्य है और आंखों का रंग भी सामान्य है, और इन्होंने जिस समय इन्हें अंतिम बार देखा गया था लोवर और टी शर्ट पहनी हुई थी। इनकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर की है। इनकी मानसिक स्थिति खराब है। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर एक नंबर भी है जिस पे आप इत्तला कर सकते हैं, कृपया नंबर नोट करें 9453288531। नंबर हिंदी में सुने 9453288531। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप इत्तला कर सकते हैं। अगली जानकारी है एक गुमशुदगी की, और इनका नाम है ऋचा अग्रवाल, पत्नी विपुल अग्रवाल। ये 17 हरिलोक कॉलोनी की रहने वाली हैं। इनके शरीर की बनावट सामान्य है और ये जो विपुल अग्रवाल हैं, इन्हें अंतिम बार जब देखा गया था तब ये गुलाबी टी शर्ट, जीन्स और ग्रे स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर अब थाना सिविल लाइन मेरठ में सूचना दे सकते हैं। एक नंबर भी है जिस नंबर पे आप संपर्क भी साध सकते हैं, नंबर नोट करें 9675896302। नंबर इंग्लिश में सुने 9675896302। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर या इनके बारे में जानकारी लेने के लिए सिविल लाइन थाना मेरठ में आप संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी है गुमशुदगी की, और ये है पायल, जो पत्नी है सौरभ की, और ये रहने वाली हैं ग्राम बना थाना इंचौली मेरठ की। इनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है और इनकी लंबाई 5 फीट 3 इंच है। इनका बाल काला है और शरीर सामान्य है। इन्हें अंतिम बार जब देखा गया था ये ग्रे रंग के सलवार सूट में थी। इनकी मानसिक अवस्था कुछ ठीक नहीं है। इन्हें अंतिम बार 11 मई 2026 को देखा गया था। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना प्रभारी इंचौली मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदगी की सूचना में अगला जो नाम है वो है निधि रानी का, जो पुत्री हैं श्री सुशील कुमार की। ये घोसीपुर मेरठ थाना लोहिया नगर के रहने वाले हैं। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। लिंग महिला हैं और इनकी जो आयु है वो 17 वर्ष है। ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है और बाल इनका सामान्य है। शरीर की बनावट भी सामान्य है, चेहरा लंबा है। इन्हें अंतिम बार 18 मई 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में ग्राम घोसीपुर में देखा गया था। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर या इनसे संबंधित जानकारी लेने के लिए एक मोबाइल नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कृपया नंबर नोट करें 90

0: 27550375। नंबर हिंदी में सुने 9027550375। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप थाना अध्यक्ष थाना लोहिया नगर मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी भी एक विलुप्त महिला की है और इनका नाम है शमा, जो वाइफ है आसिफ अली की। ये सलातीन कस्बा किठौर की रहने वाली हैं। इन्हें अंतिम बार 17 मई 2026 को देखा गया था सलातीन कस्बा थाना किठौर मेरठ में। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इनकी उम्र 35 वर्ष है। इनकी ऊंचाई 5 फीट 4 इंच है। इनका रंग गोरा है और शरीर की बनावट सामान्य है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए या इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7895736503 पर। एक और नंबर है 9997552112। नंबर हिंदी में सुन लें। पहला नंबर है 7895736503 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9997552112। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप क्षेत्राधिकारी किठौर जनपद मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदगी की ये अंतिम सूचना है श्रीमती सर्वेश की। पत्नी उमेश है, ये निवासी हैं नंगलामल थाना मुंडाली मेरठ की। इन्हें अंतिम बार 20 मई 2026 को 11 बजे ग्राम नंगलामल थाना मुंडाली मेरठ के पास देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण है। उम्र 40 वर्ष है। ऊंचाई 4 फुट 5 इंच है और रंग गहवा है, शरीर इकहरा है। इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना मुंडाली मेरठ में संपर्क साध सकते हैं। इसी के साथ गुमशुदगी की सूचना समाप्त होती है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए पेश है एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
2: the Indian Institute of Petroleum and Energy, IIPE, Vishakhapatnam, has invited applications for Assistant Professor Grade 1 and Grade 2 faculty positions. The institute is seeking qualified and experienced candidates in relevant engineering and allied disciplines to strengthen its academic faculty. Interested applicants should refer to the detailed advertisement available on the IIPE faculty recruitment portal for information regarding eligibility criteria, specialization, experience requirements, pay structure, and the last date for submission of applications. Applications must be submitted online through the institute's official portal. Kindly refer to www.facultyrecruitment.iipe.ac.in. I repeat, it is www.facultyrecruitment.iipe.ac.in. The All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, has invited applications for one post of Chief Security Officer on deputation basis. The post is offered in pay level 13 as per the 7th CPC pay matrix, and applicants should not exceed 56 years of age. Eligible officers possessing the prescribed qualifications and experience in security administration

0: वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र का 23 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक का अंक। इसके अतिरिक्त आप कंपनी की वेबसाइट www.rcfltd.com के भर्ती अनुभाग पर जाकर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है परिक्रमा।
3: सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी।

0: अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
1: हेलो वैष्णवी एंड टू आर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। And it's 4:30. It will be 4:31 now. So you're tuned to Parikrama on Akashwani Gold at 100.1 megahertz with Shagun Chopra and Vaishnavi. So we are very thrilled to begin our program.
0: जी शगुन, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, श्रोताओं को यहाँ पे एक रोचक जानकारी दे चलते हैं।
1: Which is?
0: इस जुलाई में फीफा वर्ल्ड कप की वजह से लाखों फुटबॉल फैंस अपनी फोन स्क्रीन में ही व्यस्त रहते हैं।
1: ओह यस।
0: और लेकिन इसी महीने का एक और शानदार घटना भी होने जा रही है। क्या हो अगर मैं आपसे

0: How? Well, even I can tell our listeners about that. I may act, I don't know, but I actually do know the best part. Every ticket, it is completely free. So listeners, cancel all your plans for these 5 nights in July. First, mark July 9th on your calendar. On this evening, dazzling Venus, the brightest planet in our sky. This will pass right next to Regulus, the brightest star in the constellation Leo. A brilliant planet and a brilliant star almost touching. So just look west after sunset. You can't miss it. We would
1: बिल्कुल
0: not
1: शगुन,
0: want
1: मतलब
0: to.
1: सोच के ही कितना खूबसूरत लग रहा है, तो देखने में
0: You can
1: कितना, और भी
0: विजुअलाइज,
1: जी
0: राइट?
1: बिल्कुल। और श्रोताओं, फिर ठीक 5 दिन बाद 14 जुलाई को आसमान आपको अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाएगा। इस दिन सुपर न्यू मून होगा, यानी चांद पूरी तरह से अदृश्य रहेगा और उसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं होगी। यही वजह है कि ये पूरी साल की सबसे बेहतरीन रात होगी, क्योंकि इस दिन आप अपने मिल्की वे गैलेक्सी को अपनी आंखों से देख सकेंगे। अगर
0: ग्रेट.
1: आप शहर की तेज रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाएं, तो दक्षिणी आसमान में हमारी गैलेक्सी का चमकता हुआ केंद्र साफ दिखाई देगा, जहां 100 अरब से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं।
0: Wow, Milky Way galaxy. We will be able to see it with our naked eyes. So on now, after 14th of July, let me tell our listeners about July 16th and July 17th. Well, we should look west again. A delicate crescent moon will glide right beside Venus, forming one of the prettiest pairings of the summer. The moon and the evening star shining together just

0: Let's begin our program. Well, Vaishnavi told us about the news discussion segment, Dateline India reports, capsules, tributes. There is so much that we will unfold today. We have planned it for you and we have lined it up for you. So let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi dedicates India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra, Rajasthan. Also inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport.
1: गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया।
0: Centre issues notice to Telegram messaging app over widespread piracy reports, asks to submit report within 15 days.
1: भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू।
0: IMD says southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 4 days.
1: और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा।
0: This is our discussion segment, Dateline India. Well, it will be about International Day of Cooperatives. First, there is another topic as well. Mm-hmm. So let's begin with International Day of Cooperatives. Let's begin our discussion with that. Vaishnavi.
1: Shagun, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे ताकतवर बिजनेस मॉडल में से एक का मालिकाना हक अरबपतियों के पास नहीं बल्कि आप और मेरे जैसे आम लोगों के पास है, क्या आपने कभी अपनी लोकल डेयरी कोऑपरेटिव के बारे में सोचा है जहां किसान हर सुबह अपना दूध बेचने आते हैं?
0: ओह राइट, एग्जैक्टली। सो दिस वेरी मॉडल इट गेव इंडिया द अमूल कोऑपरेटिव। दिस इज अ मूवमेंट दैट स्पार्क्ड इंडियाज वाइड रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कंट्री फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट नेशन इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। हाउ ग्रेट।
1: जी, और बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ फिर हम अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को ही ले लीजिए, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन महिलाओं को जो अचार, मसाले या हैंडीक्राफ्ट बनाती और बेचती हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है।
0: And that's the very idea behind a cooperative. And when you were mentioning pickles and these spices, even papad, right? It tastes so good, right? And every year, on first Saturday of July, the world celebrates International Day of Cooperatives. The roots of this celebration, Vaishnavi, they go back to August 19 in the year 1895, when the International Cooperative Alliance was founded in London during the first Alliance Cooperative Congress.
1: 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि 1895 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की शताब्दी के उपलक्ष्य में जुलाई 1995 के पहले शनिवार को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाएगा।
0: वी शुड ऑल्सो टेल आवर लिसनर्स अबाउट दिस ईयर्स थीम। सो दिस ईयर्स थीम इज प्रीटी ब्यूटिफुल, pretty and beautiful, International Day of Cooperatives. So cooperatives for a peaceful world, this is the theme for this year, the year 2026. So at first, peace and business may sound like two completely different things, don't they? But are they? Because peace isn't only about the absence of war. Peace also means trust, it means fairness, it means knowing that nobody, absolutely nobody gets left behind.
1: जी, और इसका मतलब ये भी है कि लोग साथ मिलकर बैठते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। और सहकारी समितियां यही काम करती हैं। पारंपरिक व्यवसायों के विपरीत, जहां निर्णय अक्सर निवेशकों द्वारा लिए जाते हैं, सहकारी समितियां लोगों को प्राथमिकता देती है।
0: एंड वैष्णवी, if an individual is a farmer, a consumer, or someone seeking affordable services, you aren't merely a customer. You can actually become an owner. And this changes the dynamic completely. When people own an enterprise together, they also

0: had limited bargaining power. But thousands of farmers, if they come together, they build one of India's greatest success stories. And that is the strength of cooperation. Or if you think about a group of women in a village, they start making pickles, spices, papad, handcrafted products as well. And working alone, they will reaching the customers. It's actually difficult. And if they work together, they purchase raw materials at lower prices. Then they can divide their responsibilities. They can build a brand and then earn much better incomes.
1: बिल्कुल. और शगुन, इसे हम देखें तो सिर्फ उनका व्यापार ही नहीं बढ़ता है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है. और शायद इसीलिए भारत ने हमेशा सहकारी संस्थाओं की ताकत को समझा है. डेयरी और खेती से लेकर बैंकिंग, हाउसिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है.
0: वेल ट्रूली लेट मी टेल यू हाउ दिस इज एम्पावर्ड फार्मर्स क्रिएटेड लाइवलीहुड्स strengthened rural economies and also ensured that development reaches people at the grassroots. So at the heart of every cooperative lies a very simple belief: people are stronger together than being alone. And now here's something interesting that I would be mentioning. Members in cooperatives, they contribute financially according to their capacity, and then Vaishnavi, they collectively decide how the surplus should be used then.
1: इसका इस्तेमाल कोऑपरेटिव को बढ़ाने में, सदस्यों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में और मुश्किल समय के लिए कोई सुरक्षा फंड बनाने में होता है. ये फैसला सदस्य खुद लेते हैं. सफलता सिर्फ मुनाफे से नहीं मापी जाती, ये इस बात से मापी जाती है कि कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है.
0: Well, this model, it matters more than ever. The world is witnessing rising inequality, social divisions, declining trust. But cooperatives, they come to rescue. They offer a different path, a path where competition doesn't eliminate cooperation. And the numbers, they tell an incredible story. More than 12% of humanity is associated with one of the nearly 3 million cooperatives across the globe. 3 million.
1: बिल्कुल. और दुनिया की 300 सबसे बड़ी सहकारी और म्यूचुअल संस्थाएं मिलकर हर वर्ष 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कारोबार करती है. और शायद सबसे खास बात यही है कि सहकारी संस्थाएं लगभग 280 मिलियन लोगों को नौकरी देती है. यानी कि दुनिया में काम करने वाले हर 10 लोगों में से लगभग एक व्यक्ति को. ये एक वैश्विक ताकत को दर्शाता है शगुन.
0: सो इंडिया प्राउडली स्टैंड्स अमंग द कंट्रीज वेयर द कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज बिकम अ पिलर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड परहैप्स दैट्स द रियल मैसेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस थीम दिस ईयर. अ पीसफुल वर्ल्ड इजंट बिल्ट ओनली बाय गवर्नमेंट्स. सो लिसनर्स, एज पार्ट ऑफ आवर सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, we bring you a conversation with Devendra Sura, who has been working towards tree plantation and environmental conservation.
2: जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं. मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ. साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेल. ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा.
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.
0: So to listen to this conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. So you can listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. This will also be brought, in case you miss it, it will also be broadcast tomorrow morning at 10:30 a.m. So now we will be doing the actual work, the parikrama, right? We will find out what our correspondents have lined up for ourselves, for us and for our listeners.
1: मिथिला की सदियों पुरानी वैवाहिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर माने जाने वाली विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा एक बार फिर सज गई है. इस साल 2 जुलाई से शुरू हुई सभा में बिहार और नेपाल से बड़ी संख्या में वर और कन्या पक्ष पहुंच रहे हैं. आखिर क्या है ये अनूठी परंपरा और क्यों आज भी सदियों पुरानी व्यवस्था लोगों के विश्वास का केंद्र बनी हुई है? आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में.
4: आषाढ़ की दस्तक के साथ मधुबनी जिले के सौराठ गांव में हर साल एक ऐसा अनोखा समागम सजता है जहां न बैंड बाजा होता है न शहनाइयां गूंजती हैं, फिर भी जीवन भर के रिश्तों की नींव रखी जाती है। जिले के रईका प्रखंड स्थित सौराठ सभा परिसर में हर साल आयोजित होने वाले सभा में मैथिल समाज के लोग मूल गोत्र और वंशावली के आधार पर वैवाहिक संबंध तय करते हैं। सभा सजते ही अब तक 7 सिद्धांत

0: आगे जा चुके हैं और पंजीकारों के पास लगातार वर और कन्या पक्ष से लोग पहुंच रहे हैं। इस साल मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग इस सभा में पहुंच रहे हैं। सौराठ सभा पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र कहते हैं,
1: ये पंजी प्रथा जो है वो जेनेटिक विज्ञान 14वीं सदी में जब डेवलप किया तो सात जनरेशन का जीन का व्यवस्था दिया जो सात जनरेशन तक जीन का असर रहता है। लेकिन हमारे पूर्वज से बहुत पहले इसका व्यवस्था दे चुके हैं। तो पितृता सप्तमम केजे तो मातृता पंचमम केजे, यानी पितृकुल के जो सात जनरेशन है और मातृकुल के जो पांच जनरेशन है, मध्य का जो संबंध है एक रक्त संबंध में है। हम लोग वो एक रक्त संबंध वैवाहिक संबंध नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर।
0: तेजी से बदलते दौर में जब विवाह की परंपराएं नया रूप ले रही हैं, सौराठ सभा आज भी मिथिला की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बनी हुई है। परिक्रमा के लिए आकिल हुसैन के साथ निधिश्री की रिपोर्ट।
2: नाउ लेट्स फाइंड आउट अबाउट गोवा। So the Goa government has started the application process for the post-matric scholarship scheme for scheduled tribe students for the academic year 2026-27. The scheme supports students from class 11 up to post-graduation. We'll find out more details from our correspondent.
3: The post-matric scholarship scheme aims to support scheduled tribe students in continuing their higher education with financial assistance. Eligible students studying from class 11 to post-graduation who are residents of Goa and belong to scheduled tribe category can apply. The annual family income should not exceed 2.5 lakh. The entire application process is online through scholarships.gov.in. Both fresh and renewal applications are accepted and students can also apply through common service centers if required. Under the scheme, students receive financial support in the form of scholarships and fee reimbursement depending on their course, helping reduce the financial burden of higher education. The scheme is expected to benefit a large number of ST students in Goa, helping them continue their education with greater confidence and reducing financial barriers to learning. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani Parji.
2: और अब हिमाचल की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश के आठ और पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है और अब हिमाचल की जीआई टैग उत्पादों की संख्या बढ़कर कुल 17 हो गई है। इनमें सिरमौरी लोहिया की जीआई को जीआई टैग मिलना खास तौर पर सिरमौर जिले और गिरपार क्षेत्र के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सिरमौरी लोहिया भेड़ की ऊन से हथकरघे पर तैयार किया जाने वाला पारंपरिक ऊनी वस्त्र है। अपनी गर्माहट, मजबूती, टिकाऊपन और पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध ये लोहिया वर्षों से सिरमौर, विशेषकर गिरिपार क्षेत्र के जनजीवन, लोक संस्कृति और पहनावे का अभिन्न हिस्सा रहा है। जीआई टैग मिलने से सिरमौरी लोहिया की विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण मिलेगा और नकली उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय बुनकरों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग बढ़ने से रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश ने राज्य सरकार से इसके व्यापक प्रसार, ब्रांडिंग, आधुनिक पैकेजिंग, ई कॉमर्स से जोड़ने, शिल्पकारों के कौशल उन्नयन और युवाओं के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का आग्रह किया है। साथ ही सिरमौर और गिरिपार क्षेत्र की अन्य पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प तथा कृषि एवं खाद्य उत्पादों का भी वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से जीआई पंजीकरण दिलाने की मांग की है। निश्चित तौर पर सिरमौरी लोहिया को जीआई टैग मिलना केवल एक उत्पाद का सम्मान नहीं बल्कि पूरे सिरमौर और गिरिपार की सांस्कृतिक असीमता, पारंपरिक ज्ञान और लोक कला की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
2: देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात का सीमावर्ती जिला कच्छ अब केवल अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं बल्कि तेजी से विकसित हो रही हवाई संपर्क सुविधाओं के लिए भी नई पहचान बन रहा है। औद्योगिक निवेश, पर्यटन और व्यापार को नई गति देने में भुज हवाई अड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ में औद्योगिक विकास, पर्यटन और व्यापार को नई गति देने में भुज हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। हाल के वर्षों में हवाई अड्डे पर आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विकास और देश के प्रमुख महानगरों से बढ़ती हवाई संपर्क व्यवस्था ने इसे जिले के विकास का एक प्रमुख आधार बना दिया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भुज हवाई अड्डे के निदेशक नवीन कुमार सागर ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सहज यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने

0: के उद्देश्य से अनेक नई पहल की गई है।
1: भुज एयरपोर्ट जो है इस जिले के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 8-10 सालों में औद्योगिक क्रांति जिस तरीके से क्षेत्र में आई है और साथ ही साथ जो पर्यटन का विकास जो हुआ है वो एक अभूतपूर्व है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन के पेश हुआ है। 2047 में हम जो है साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बने, उसके लिए भुज को नामित किया गया। यहाँ पे मेजर आप कह रहे हैं टर्मिनल रिकन्फ्यूगरेशन शुरू हुआ, जिससे खत्म होने के बाद अब उसको 31 जुलाई की हमारे इंजीनियर्स ने डेट दी है, तो उसके बाद हमारी टर्मिनल कैपेसिटी जो पैसेंजर के लिए है वो दुगनी लगभग हो जाएगी, 540 अभी है और वो 1200 यात्रियों को हम सहजता से प्रति घंटे आवागमन करवा सकते।
0: कच्छ में तेजी से बढ़ते औद्योगिक निवेश, बंदरगाह आधारित विकास, ऊर्जा परियोजनाओं और पर्यटन के विस्तार को देखते हुए आने वाले वर्षों में भुज हवाई अड्डे का महत्व और बढ़ने की उम्मीद है। बेहतर हवाई संपर्क न केवल निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहन देगा बल्कि सीमावर्ती जिले के समग्र आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।
2: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
3: इन टुडेज एपिसोड We pay our tributes to patriot saint Swami Vivekanand, who died on the 4th of July 1902. His vast knowledge of Eastern and Western culture, as well as his deep spiritual insight and broad human sympathy, made an irresistible appeal to humans across the world who came in contact with him. At the Parliament of Religions held in Chicago in 1893, Swami Vivekanand represented India and its cultural heritage.
4: I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
5: Through his mission of interpreting India's spiritual culture, especially Vedantic philosophy, Swami Vivekananda inspired the Indian national consciousness. He enriched religious consciousness through the rational and humanistic teachings of the Vedanta philosophy. His mission was both national and international. A lover of mankind, he strove to promote peace and human brotherhood.
3: Swami Vivekanand organized the Ramakrishna Order of Monks, which is the most outstanding religious organization of modern India.
5: Swami Vivekananda once spoke of himself as a condensed India. In the course of a short life of 39 years, he left for posterity his four classics, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga and Raj Yoga. Salutes the great patriot saint Swami Vivekananda.
3: We also remember Gandhian freedom fighter Pingala Venkaiah, who died on the 4th of July 1963. India's national flag is based upon his design, which Pingala Venkaiah first presented to Mahatma Gandhi in 1921.
5: Pingala Venkaiah was born on the 2nd of August 1876 in Krishna district of Andhra Pradesh. He served as a soldier in the British Army in South Africa during the Anglo-Boer War in Africa, where he first met Mahatma Gandhi. He was 19 when the meeting took place and formed an association which would last for more than 50 years.
3: Pingala Venkaiah met Gandhiji once again in Vijayawada and showed him his publication with the various designs of the flag. Acknowledging the need for a national flag, Gandhiji then asked Venkaiah to design a new flag and present it at the National Congress meeting in 1921. Initially, Venkaiah came up with red and green colors, but it later evolved with saffron color, a spinning wheel at the center, and a third color, white. The flag was officially adopted by the Indian National Congress in 1931.
5: In 2009, the Government of India issued a stamp to commemorate him. In 2015, the All India Radio Vijayawada station was named after Pingala Venkaiah. We pay tribute to the great nationalist.
3: We also remember independence activist Hemant Kumar Nayak, who died on the 4th of July 1932. A resident of Medinipur, West Bengal, Hemant joined a large gathering in his hometown to celebrate the All India

0: Prisoners Day on 4th of July 1932. Despite permission from the authorities, the police forcefully declared the meeting unlawful and tried to disperse the gathering. When the people refused to disperse, the police opened fire, killing many people on the spot, including Hemant Kumar Nayak. We salute the brave martyr.
1: आज पुण्यतिथि है धन सिंह गुर्जर की। सन 1857 में आज ही के दिन मेरठ के कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। 10 मई 1857 को जब मेरठ से क्रांति की पहली चिंगारी भड़की तो धन सिंह गुर्जर ने अंग्रेजों के खिलाफ जनता को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी और मेरठ से लेकर दिल्ली तक क्रांति की आग फैलाने में मदद की थी।
2: विल नाउ टेल यू अबाउट H.K. वेंकटराम, distinguished violinist who has accompanied several artists and a respected teacher rooted in the Gayaki tradition and a top-graded artist in the All India Radio. Venkatram has made his mark through ensemble collaborations including the Veena Venu violin format.

0: अब हम बात करेंगे समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य अम्मू स्वामीनाथन के बारे में। वे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा की उन चुनिंदा 15 महिला सदस्यों में शामिल थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और समानता की आवाज को मजबूती से उठाया था। वर्ष 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जिसने महिलाओं के मताधिकार, शिक्षा और आर्थिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग स्टीफन कॉलिन्स फॉस्टर्स, वेल द कंपोजर प्राइमरली फॉर हिज, वी नो हिम फॉर हिज पार्लर एंड फोक म्यूजिक ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड। ही रोट मोर देन 200 सॉन्ग्स, दिस इंक्लूड्स हार्ड टाइम्स कम अगेन, नो मोर, कैंप टाउन रेसेस एज वेल। मेनी ऑफ हिज कंपोजिशंस दे रिमेन पॉपुलर टुडे।

आज ही के दिन वर्ष 1982 में हिंदी सिनेमा के संवेदनशील और कालजय गीतकार भरत व्यास का निधन हुआ था। ए मालिक तेरे बंदे हम, जिसे अमर प्रार्थना रचने वाले भरत व्यास ने अपने रचनात्मक सफर में 100 से अधिक फिल्मों के लिए 2000 से भी अधिक गीत लिखे थे। आइए आपको सुनाते हैं भरत व्यास का एक गीत।

0: Today, we're also remembering Marie Curie. Well, Polish and naturalized French physicist and chemist, she shared the 1903 Nobel Prize in Physics with her husband, actually, Pierre Curie, for their joint searches on the radioactivity phenomena discovered by Professor Henri Becquerel. The first woman to win a Nobel Prize, the first person to win a Nobel Prize twice, and the only person to win a Nobel Prize in two different scientific fields.
1: 4 जुलाई 1916 को हिंदी सिनेमा की पहली ब्यूटी क्वीन और अपने दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली नसीम बानो का जन्म हुआ था। 1930 और 40 के दशक में उन्होंने पुकार, खून का खून, अनोखी अदा और शीश महल जैसी फिल्मों में अपने प्रभावशाली अभिनय से अलग पहचान बनाई थी। उनकी खूबसूरती और सशक्त अभिनय के कारण उन्हें भारतीय सिनेमा की शुरुआती महिला सुपरस्टार्स में गिना जाता है। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो की माँ थी। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी

0: की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1.05 lakh crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery-cum-petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotara district. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with the engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 3. I beg your pardon, Phase 2. A greenfield refinery is an industrial processing plant for oil, gas or minerals built from scratch on undeveloped clean land. Addressing the program, Prime Minister Modi said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो नीलम बहन, आज के लोक रंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं अनुराधा शर्मा से ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। कलाकार थी अनुराधा शर्मा। और अब आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत जिसके कलाकार हैं पुष्पा गोसाई और सखियां।

अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और लोकगीत। कलाकार हैं सुनीता पांचाल।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये लोकगीत। इस लोकगीत के कलाकार थी सुनीता पांचाल। और इसी के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 5:30 होने वाले, अब आप सुनिए दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार। खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत और हर बड़े मुकाबले के साथ आपका स्वागत है खेल खिलाड़ी में। मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वसीम अहमद। लेकर आए हैं आपके लिए ये कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक मुकाबलों से। इसके अलावा क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले की तैयारियों पर रहेगी खास नजर। साथ ही भारत ए और श्रीलंका ए के बीच जारी मुकाबले का ताजा हाल भी जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे विम्बलडन 2026 के तीसरे दौर की, PSA स्क्वैश टूर, पैरा तीरंदाजी विश्व सीरीज, ISSF शॉटगन विश्व कप की भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे U20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप की और रहेंगी खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेल खिलाड़ी की फीफा वर्ल्ड कप की इस खास रिपोर्ट से।
1: दो टीमें 11-11 खिलाड़ियों की, लक्ष्य सामने वाली टीम के खेमे में घुसकर गोल मारना और अपने खेमे में विरोधी टीम को गोल ना करने देना। पैरों की रफ्तार, दिमागी जुनून, जज्बात, किक्स और हेडर से भरपूर फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी है और साथ ही आज प्रातः खत्म हुए राउंड ऑफ 32 के मैचेस, जिसने प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले तय कर दिए हैं। राउंड ऑफ 32 में कल खेले गए तीन मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया बनाम इजिप्ट, अर्जेंटीना बनाम काबो वर्दे और कोलंबिया बनाम घाना। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम इजिप्ट की। राउंड ऑफ 32 के बेहद रोमांचक मुकाबले में इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। मैच के शुरुआत में इजिप्ट ने इमाम अशूर के शानदार हेडर से बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलिया को मोहम्मद हानी के आत्मघाती गोल की बदौलत बराबरी मिली। इसके बाद दोनों टीमों ने कई मौके बनाए लेकिन कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं ले सकी।

0: निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला एक एक की बराबरी पर रहा, जिसके बाद मैच अतिरिक्त समय तक पहुंचा। अतिरिक्त समय में भी कोई गोल ना हुआ और उसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट की ओर बढ़ गया। पेनल्टी शूटआउट में इजिप्ट ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। उसके चारों सफल पेनल्टी प्रयास गोल में बदले, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दो शॉट गोलकीपर ने रोक दिए और एक अन्य प्रयास भी चूक गया। इजिप्ट के कप्तान मोहम्मद साला ने बेहद आत्मविश्वास के साथ पनेनका शैली में गोल दागकर टीम का मनोबल बढ़ाया और अंतिम सफल पेनल्टी के साथ इजिप्ट ने 4-2 से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया।
1: Egypt. That's how you do it. That's how you win it. They stay in the World Cup and Australia bow out.
0: यह जीत इजिप्ट के फुटबॉल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। पहली बार इजिप्ट ने फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण का कोई मुकाबला जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का पहली विश्व कप नॉकआउट जीत का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। अब सभी की निगाहें अंतिम 16 के मुकाबले पर होंगी, जहां इजिप्ट का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना से 7 जुलाई को होगा। वहीं राउंड ऑफ 32 के अगले मैच में पहली बार खेल रही काबो वर्दे के सामने थी 4 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना। इस बेहद रोमांचक मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंची काबो वर्दे को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। काबो वर्दे ने अपने जुझारू खेल से अर्जेंटीना को अंत तक कड़ी टक्कर दी और मुकाबले को यादगार बना दिया। मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेसी ने लिसांड्रो मार्टिनेज के बेहतरीन पास को शानदार नियंत्रण के साथ गोल में बदलकर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन 59वें मिनट में काबो वर्दे ने शानदार वापसी की। रायन मेंडेस की सटीक तैयारी पर डेरॉय दुआर्ते ने दमदार फिनिश के साथ स्कोर 1-1 कर दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं और मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा। अतिरिक्त समय के 92 मिनट में एक सेट पीस पर लिसांड्रो मार्टिनेज ने नजदीक से गोल कर अर्जेंटीना को 2-1 से बढ़त दिलाई, लेकिन काबो वर्दे ने हार नहीं मानी और 103वें मिनट में सिडनी लोप्स क्राब्राल ने पेनल्टी क्षेत्र के बाहर से शानदार कर्लिंग शॉट लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया। आखिरकार 111वें मिनट में मेसी के कॉर्नर पर क्रिस्टियन रोमेरो के हेडर को रोकने की कोशिश में काबो वर्दे के डाइनी बोर्जेस से गेंद अपने ही गोल में चली गई। यह आत्मघाती गोल अर्जेंटीना की 3-2 की जीत का निर्णायक क्षण साबित हुआ।
2: मेसी'स डिलीवरी इज अ गुड वन एंड इट्स द थर्ड गोल फॉर अर्जेंटीना। क्रिस्टियन रोमेरो, दिस टाइम मेसी द प्रोवाइडर। एंड इट्स एन ऑफुल लॉट टू आस्क काबो वर्दे टू कम बैक येट अगेन। अर्जेंटीना आर थ्रू आफ्टर ऑलमाइटी स्केयर।
0: यह मुकाबला काबो वर्दे के लिए हार के बावजूद ऐतिहासिक रहा। विश्व कप में पदार्पण करने वाली इस टीम ने पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचकर और मौजूदा चैंपियन को अतिरिक्त समय तक संघर्ष करने पर मजबूर कर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वहीं अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब की ओर अपने अभियान को जीवित रखा। अब अर्जेंटीना की अगली चुनौती अंतिम 16 में इजिप्ट होगी। इसी राउंड ऑफ 32 क्रम के आखिरी मैच में आज प्रातः कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल 14वें मिनट में जॉन एरियास ने किया। डेनियल मुनियोस के शानदार मूव पर लुइस सुआरेस के सटीक क्रॉस को एरियास ने गोल में बदलकर कोलंबिया को शुरुआती बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में कोलंबिया ने बढ़त दुगनी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऑफ साइड के कारण एक गोल रद्द हो गया। वहीं घाना ने वापसी का भरसक प्रयास किया, पर कोलंबिया की मजबूत रक्षापंक्ति के सामने उसे सफलता नहीं मिली।
2: And it will be Colombia in Vancouver against Switzerland. It's finished Colombia 1, Ghana 0.
0: इस जीत के साथ कोलंबिया अब राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड से भिड़ेगा। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मुकाम पर है जहां हर सेकंड धड़कनों को तेज कर देता है और हर मुकाबला सीधा फाइनल जैसी अहमियत रखता है। एक नजर डालते हैं राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों पर। पहला मैच ह्यूस्टन में 4 जुलाई को भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे खेला जाएगा, कनाडा और मोरक्को के बीच में। दूसरा मैच पराग्वे और फ्रांस के बीच होगा 5 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सुबह के 2:30 पर फिलाडेल्फिया में। तीसरा मैच ब्राजील और नॉर्वे के बीच में होगा 6 जुलाई सुबह 1:30 पर ईस्ट रदरफोर्ड में। चौथा मैच मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा 6 जुलाई को सुबह 5:30 बजे मेक्सिको सिटी में। पांचवा मैच पोर्तुगल वर्सेस स्पेन के बीच होगा, जो कि 7 जुलाई को 12:30 बजे खेला जाएगा आर्लिंगटन में। छठा मैच होगा यूएसए वर्सेस बेल्जियम 7 जुलाई को सुबह 5:30 बजे सियाटल में। सातवां मैच

0: अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच में होगा 7 जुलाई को रात्रि 9:30 बजे एटलांटा में, और राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच होगा स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच 8 जुलाई को सुबह 1:30 पर वैंकूवर में। अब आज से शुरू होने वाले हैं राउंड ऑफ 16 के 2 हाई वोल्टेज मुकाबले। एक नजर डालते हैं, पहला मैच कनाडा और मोरक्को के बीच जो आज रात भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे खेला जाएगा। उभरती हुई उत्तरी अमेरिकी टीम कनाडा और अफ्रीकी फुटबॉल की सबसे संगठित टीमों के बीच मोरक्को के बीच पहला मैच होगा। यह मैच आज रात भारतीय समय अनुसार रात्रि 10:30 बजे से शुरू होगा। कनाडा जो लंबे इंतजार के बाद नॉकआउट चरण में पहुंचा है, इस समय आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तेज गति वाले आक्रमण और घरेलू दर्शकों के समर्थन के साथ यह टीम अपने विश्व कप इतिहास का नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रही है। विशेष बात यह है कि कनाडा पिछली बार 2022 फीफा विश्व कप के ग्रुप स्टेज तक पहुंचा था, जबकि उससे पहले भी वह लंबे समय तक नॉकआउट दौर में जगह नहीं बना सका था। इस बार उसका लक्ष्य पहली बार बड़ा नॉकआउट प्रभाव छोड़ना है। दूसरी ओर है मोरक्को, जिसने 2022 विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रच दिया था और पहली अफ्रीकी टीम बनी थी जिसने अंतिम 4 में जगह बनाई। अनुशासित रक्षात्मक संरचना, मजबूत मिडफील्ड और तेज काउंटर अटैक इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। कनाडा के लिए यह मुकाबला जीतकर विश्व कप क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश करने और अपने फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय लिखने का सुनहरा अवसर है। वहीं मोरक्को के पास 2022 की ऐतिहासिक सेमीफाइनल यात्रा को दोहराने और एक बार फिर अफ्रीकी फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मौका है। इसी कड़ी में राउंड ऑफ 16 का दूसरा हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। फुटबॉल की दिग्गज फ्रांस और दक्षिण अमेरिका चुनौती पेश करने वाली पराग्वे के बीच यह मैच 5 जुलाई को प्रातः 2:30 पर शुरू होगा। 2 बार की विश्व चैंपियन फ्रांस, जिसने 1998 में अपने घर में और 2018 में रूस में विश्व कप जीता, इस बात का भी गौरव रखती है कि वह 2 बार उपविजेता भी रही 2006 और 2022 में, जो विश्व फुटबॉल में उसकी निरंतरता को दर्शाता है। कोच दिदिये देशांस के नेतृत्व में लाब्लू आज भी दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है। किलियन एम्बापे जैसे विश्व स्तरीय सितारों से सजी यह टीम इस मुकाबले में प्रबल दावेदार के रूप में उतर रही है। वहीं दूसरी ओर है पराग्वे, जो अपनी मजबूत रक्षात्मक रणनीति और तेज काउंटर अटैक के लिए जानी जाती है। यह दक्षिण अमेरिकी टीम इस टूर्नामेंट में जायंट किलर की छवि के साथ आगे बढ़ी है और बड़े देशों को चौंकाने में सफल रही है। फ्रांस के लिए यह मुकाबला जीतकर एक और विश्व कप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने और अपने तीसरे विश्व खिताब की उम्मीदों को जीवित रखने का यह अवसर है। वहीं पराग्वे के लिए यह मुकाबला इतिहास रचने का मौका है। जीत उन्हें विश्व कप क्वार्टर फाइनल में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक प्रवेश दिला सकती है, जो उनके फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी।
1: अब बात एक और भारतीय शानदार प्रदर्शन की। मुंबई में खेले गए HCL स्क्वॉश PSL चैलेंजर टूर 2026 में भारत की तन्वी खन्ना ने शानदार वापसी करते हुए महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। तीसरी वरीय तन्वी खन्ना ने फाइनल में विश्व रैंकिंग में 64वें स्थान पर काबिस इजिप्ट की दूसरी वरीय फरीदा वालिद को 5 गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। शुरुआती 2 गेम 8-11 और 2-11 से गंवाने के बाद तन्वी ने जबरदस्त वापसी करते हुए अगले 3 गेम 12-10, 11-9 और 11-7 से जीतकर खिताब अपने नाम किया। ये फरीदा वालिद के खिलाफ 2 मुकाबलों में तन्वी की पहली जीत रही। खास बात ये रही कि इस साल अहमदाबाद में आयोजित HCL स्क्वॉश इंडियन टूर 5 के फाइनल में फरीदा ने तन्वी को हराकर खिताब जीता था, लेकिन इस बार तन्वी ने उसी खिलाड़ी के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए हिसाब बराबर कर लिया। विश्व रैंकिंग में 74वें स्थान पर काबिज तन्वी का पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन भी शानदार रहा। पहले दौर में उन्हें बाय मिला, जिसके बाद उन्होंने भारत की पूजा आरती रघु को सीधे गेमों में 11-5, 11-6, 11-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की जोई फू को 3-1 और सेमीफाइनल में जापान की अकारी को 3-2 से हराकर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई, जहां खिताबी मुकाबले में उन्होंने शानदार जुझारूपन का परिचय दिया। वहीं पुरुष एकल के फाइनल में मलेशिया के मोहम्मद सियाफिक कमाल ने इजिप्ट की दूसरी वरीय यासिन शोहेदी को भी 2 गेम से पिछड़ने के बाद 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारतीय चुनौती पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गई थी, जहां शीर्ष वरीय वेलावन सेंथिल कुमार को यासिन शोहेदी ने सीधे गेमों में मात दी। वहीं भारत के शीर्ष वरीय पुरुष खिलाड़ी अभय सिंह, जो एशियाई खेलों के पदक विजेता भी हैं और युवा स्टार अना

0: महत सिंह इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे थे। बता दें कि स्क्वॉश पहली बार लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का हिस्सा बनने जा रहा है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन देश के लिए भविष्य की तैयारियों के लिहाज से भी काफी उत्साहजनक माना जा रहा है। तन्वी खन्ना ने इस जीत का सारा श्रेय अपने कोच को देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: Honestly, I am not even like able to grasp it because just reaching the finals was like a tough feat. Yesterday I had a very tough match and today I was 2-love, 8-4 down and I was playing terribly. I don't know, I just felt like my coach, he's come all this way here and he's put in so much work. So I just owe it to him to at least follow what he's saying. And I just started doing that. I just didn't overcomplicate it and I just trusted like a very basic process and I saw that I won the third game. And that gave me immense confidence. I also saw that she was tiring. And after that, I just felt like I had a full grip on the match from that point on. Yeah, I mean, she's an amazing player. She's, I think, only 18 years old. She's really fit, hits the ball really well. And she's been winning all the past tournaments. I think in 1 year, her ranking has gone from 400 to top 60. So she's an incredible player. And I knew coming in today is going to be a tough fight. And I'm just so happy that I was able to turn it around.
0: दुनिया के बेहतरीन निशानेबाज, एक ऐतिहासिक शूटिंग रेंज और विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला, इटली के लोनाटो में एक बार फिर सज चुका है ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप का मंच, जहां आज से शुरू हो रहा है निशानेबाजी का ऐसा महासंग्राम जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। 3 जुलाई से 13 जुलाई तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में इस बार 80 देशों के 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कुल 708 इवेंट स्पोर्ट्स के साथ यह 2026 सीजन का अब तक का सबसे बड़ा शॉटगन वर्ल्ड कप बन गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार खिलाड़ियों और भाग लेने वाले देशों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जो इस प्रतियोगिता के बढ़ते महत्व को और भी दर्शाती है। प्रतियोगिता इटली के प्रसिद्ध ट्रैप कॉनकेवर्डे शूटिंग रेंज में आयोजित की जा रही है, जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शॉटगन शूटिंग वेन्यू में गिना जाता है। यहाँ ओलंपिक चैंपियन, विश्व चैंपियन और कई उभरते सितारे स्कीट और ट्रैप स्पर्धाओं में विश्व कप पदकों के लिए निशाना साधेंगे। भारत भी इस बार 20 सदस्यीय मजबूत दल के साथ मैदान पर उतर रहा है। भारतीय टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। स्कीट महिला वर्ग में भारत की चुनौती संभालेंगी महेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लो और मानसी रघुवंशी। स्कीट पुरुष वर्ग में भारत की ओर से मेहराज अहमद खान, भवतेक सिंह गिल, हरिका सुखबीर सिंह, अनंतजीत सिंह नरूका और ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया निशाना साधते नजर आएंगे। वहीं ट्रैप महिला स्पर्धा में आशिमा अहलावत, मनीषा कीर, नीरू, विधि सिंह और वर्षा वर्मन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि ट्रैप पुरुष वर्ग में शपथ भारद्वाज, कियान चेनाई, अली अमन इलाही, एहवर रिजवी और पृथ्वीराज टोंडाईमन भारतीय चुनौती पेश करेंगे। टूर्नामेंट के शेड्यूल पर नजर डालें तो 5 से 7 जुलाई तक स्कीट स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन मुकाबले होंगे। इसके बाद 7 जुलाई को स्कीट महिला और स्कीट पुरुष के फाइनल खेले जाएंगे। इसके बाद 9 से 11 जुलाई तक ट्रैप स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन राउंड होंगे और 11 जुलाई को ट्रैप महिला तथा ट्रैप पुरुष के फाइनल आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रतियोगिता का समापन 12 जुलाई को ट्रैप मिक्स टीम फाइनल के साथ होगा, जहां एक और विश्व कप खिताब का फैसला हो जाएगा। लोनाटो का यह विश्व कप इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि आने वाली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले दुनिया के शीर्ष निशानेबाज अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के इरादे से यहां उतर रहे हैं। ऐसे में हर निशाना, हर अंक और हर मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारतीय टीम भी इस मंच से दमदार प्रदर्शन कर विश्व शूटिंग में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के इरादे से उतरेगी। अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव और युवा निशानेबाजों का जोश, दोनों पर भारत की उम्मीदें टिकी होंगी। तो क्या लोनाटो की रेंज पर भारतीय निशानेबाज फिर सुनहरा निशाना साध पाएंगे? क्या इस बार भी तिरंगा विश्व कप के पोडियम पर लहराएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले कुछ दिनों में, जब दुनिया के सबसे सटीक निशानेबाज होंगे आमने सामने।

अब रुख करते हैं लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब का, जहां विंबलडन में तीसरे दौर के मुकाबलों के साथ रोमांच अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। एक ओर अनुभवी खिलाड़ी अपने शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नए सितारे भी बड़ी चुनौती पेश करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच के 39 वर्षीय सर्बिया स्टार ने फ्रांस के

आर्थर रिंडर कनेश को 4 सेटों के मुकाबले में 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ जोकोविच ने विंबलडन में 105वीं जीत दर्ज करते हुए पुरुष एकल में रॉजर फेडरर के सर्वाधिक जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इतना ही नहीं, वो 18वीं बार विंबलडन के अंतिम 16 में पहुंचे, जो ओपन एरा में फेडरर के रिकॉर्ड के बराबर है। अब उनकी नजर रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और विंबलडन के 8वें खिताब पर है। अगले दौर में उनका सामना रूस के क्वालिफायर रोमन साफियुलन से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन और शीर्षवर्य यानिक सिनर भी शानदार लय में नजर आए। उन्होंने अमेरिका के जेनसन ब्रुक्सबी को 6-4, 6-3, 6-4 से हराकर लगातार 5वीं बार विंबलडन के अंतिम 16 में जगह बनाई और इस मामले में इटली के निकोला पियंत्राजेली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। शुरुआती दो मुकाबलों में संघर्ष करने वाले सिनर इस बार पूरे आत्मविश्वास में दिखे। अब उनका सामना जापान के क्वालिफायर शिंतारो मोजीचुकी से होगा, जिन्होंने स्पेन के युवा खिलाड़ी राफेल जोदार को हराकर सबको चौंका दिया। महिला वर्ग में शीर्षवर्य आर्याना सेबोलेंका ने पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन जेलेना ओस्टापेंको को 6-4, 6-4 से हराकर अपने खिताबी अभियान को मजबूती दी। अब उनके सामने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका की चुनौती होगी। ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया की डारिया कास्तकीना को सीधे सेटों में हराकर पहली बार विंबलडन के 4वें दौर में जगह बनाई। दूसरी ओर अमेरिका की कोको गॉफ को अपनी हमवतन क्लेयर ल्यू के खिलाफ कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। दूसरा सेट गंवाने के बावजूद गॉफ ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 6-3, 6-7, 6-2 से जीत लिया और उनका सामना स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंसिच से होगा। वहीं चौथी वरीय जेसिका पेगुला ने भी आसानी से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। अन्य मुकाबलों में कनाडा के फेलिक्स ओगर अलियासिम ने भी अंतिम 16 में जगह बनाई, जबकि पुरुष एकल में सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने मिला जब जर्मनी के यान लेनार्ड स्टफ ने 8वीं वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव को सीधे सेटों में हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब विंबलडन में मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। सभी की नजरें प्री क्वार्टर फाइनल पर होंगी, जहां जोकोविच, सिनर, साबुलेंका और गॉफ जैसे दिग्गज खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। चलिए अब रुक करते हैं पैरा आर्चरी की ओर, जहां चेकिया के नोवे मेस्तोनाद मेतुजी में खेली जा रही वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारतीय तीरंदाजों ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना दम दिखाया है। कल खेले गए मुकाबलों में भारत ने टीम स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 और स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात कंपाउंड मिक्स टीम की, जहां विश्व चैंपियन शीतल देवी और श्याम सुंदर स्वामी की जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया को 143 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी पूरे मुकाबले में दबाव के बावजूद बेहद संयमित रही और लगातार सटीक निशाने लगाकर 4 अंकों की बढ़त के साथ मुकाबला अपने नाम कर लिया। इससे पहले सेमीफाइनल में भी भारत ने फ्रांस को 156-144 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। कल का दिन भारत के लिए कई और बड़ी सफलताओं की उम्मीद लेकर आया है और सभी की नजरें इन स्वर्ण मुकाबलों पर टिकी रहेंगी। भारत का दूसरा स्वर्ण पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में आया, जहां पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह और भावना ने इंडोनेशिया को 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यही नहीं, टीम स्पर्धाओं में भारत का दबदबा यही नहीं रुका। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने यूक्रेन को 6-2 से हराकर पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक जीता, जबकि भावना और पूजा की जोड़ी ने ब्राजील को भी 6-2 से मात देकर पैरा रिकर्व महिला डबल्स का गोल्ड अपने नाम कर लिया। वहीं शीतल देवी और पायल नाग ने पैरा कंपाउंड महिला डबल्स में और तोमन कुमार व श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा कंपाउंड पुरुष डबल्स में कांस्य पदक जीतकर भारत के शानदार अभियान को और मजबूती दे दी। अब नजरें व्यक्तिगत फाइनल मुकाबलों पर, जो खेले जा रहे हैं। पैरा कंपाउंड महिला वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में शीतल देवी का सामना ग्रेट ब्रिटेन की जोड़ी ग्रिनहेम से है। पैरा रिकर्व महिला वर्ग के गोल्ड फाइनल में भावना और पूजा आमने सामने, जिसमें इस स्पर्धा में भारत का स्वर्ण और रजत पदक पहले ही पक्का हो गया है। वहीं पैरा रिकर्व पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में हरविंदर सिंह की टक्कर इटली के स्टेफानो ट्राविसानी से है। ऐसे में इन मुकाबलों पर सभी की नजरें टिकी हैं और भारतीय तीरंदाजों से एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय महिला पहलवानों की, जिन्होंने एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर

इंडी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के युवा पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में पहले ग्रीको रोमन, फिर महिला फ्री स्टाइल और अब पुरुष फ्री स्टाइल मुकाबले खेले जा रहे हैं। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य यानी कुल 9 पदक जीतकर टीम स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। भारत केवल चीन से पीछे रहा जबकि जापान तीसरे स्थान पर रहा। यह प्रदर्शन महिला कुश्ती में भारत की मजबूत प्रतिभा और गहराई को एक बार फिर साबित करता है। स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पहलवानों में 50 किलोग्राम वर्ग में प्रवीण, 53 किलो वर्ग में मुस्कान और 76 किलो वर्ग में काजल ढोचक शामिल रही। वहीं 57 किलोग्राम में मान्या राजपूत, 62 किलोग्राम में सविता और 72 किलोग्राम में मनीषा ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा 55 किलोग्राम में काजल, 59 किलोग्राम में कोमल और 68 किलोग्राम में मानसी लाठर ने कांस्य पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या को 9 तक पहुंचा दिया। कुल मिलाकर भारतीय महिला टीम का यह अभियान बेहद प्रभावशाली रहा। अलग अलग भार वर्गों में लगातार पदक जीतकर युवा पहलवानों ने न सिर्फ अपनी क्षमता का परिचय दिया बल्कि आने वाली सीनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए भी मजबूत दावेदारी पेश की। टीम का ये प्रदर्शन भारतीय महिला कुश्ती के उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता है। अब निगाहें पुरुष फ्रीस्टाइल स्पर्धा पर हैं। भारत सभी 10 भार वर्गों में चुनौती पेश करेगा। भारतीय दल में 57 किलोग्राम में अमन, 61 किलोग्राम में दीपक, 65 किलोग्राम में उदित, 70 किलोग्राम में सचिन, 74 किलोग्राम में निखिल, 79 किलोग्राम में विक्की, 86 किलोग्राम में विशाल, 92 किलोग्राम में सौरभ, 97 किलोग्राम में अनिरुद्ध और 125 किलोग्राम वर्ग में मोहित भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ग्रीको रोमन और महिला फ्रीस्टाइल से मिली सफलता के बाद अब देश की उम्मीदें पुरुष फ्रीस्टाइल पहलवानों पर टिकी हैं, जिनसे पदकों की शानदार लय को आगे बढ़ाने की अपेक्षा है।

ये लय आगे बढ़ चुकी है। 57 kg वर्ग में रोहित ने कांस्य पदक अपने नाम किया और आज स्वर्ण पदक मैच में 70 kg वर्ग में भारत के सुनील कुमार लक्ष्मण का मुकाबला कजाकिस्तान के सुंकर सदखमत से होगा। वहीं 69 kg में सौरव यादव का मुकाबला ईरान के सुभान एसपी से होगा। और अब रुख करते हैं क्रिकेट की ओर। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 जो कि मुकाबला आज मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान पर खेला जाएगा। पहला मुकाबला वर्षा के कारण बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया था। ऐसे में दोनों टीमें जीत दर्ज कर श्रृंखला में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। अगर दोनों टीमों के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालें तो अब तक 31 मैच खेले जा चुके हैं। इनमें भारत ने 18 जबकि इंग्लैंड ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 पूर्ण T20 मुकाबलों में भारत ने 4 में जीत हासिल की है। हाल के वर्षों में इस प्रारूप में भारत का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ काफी प्रभावशाली रहा है। भारतीय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर रहेगी। सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 90 से अधिक मैचों में लगभग 2,900 रन बना चुके हैं। उनके नाम 4 शतक और 20 से अधिक अर्धशतक दर्ज हैं और उनका स्ट्राइक रेट 165 से अधिक है। अभिषेक शर्मा ने इसी वर्ष इंग्लैंड के खिलाफ केवल 54 गेंदों पर 135 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, जो भारत की ओर से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। वहीं संजू सैमसन के नाम इस प्रारूप में 3 शतक दर्ज हैं और शीर्ष क्रम में उनका आक्रामक अंदाज भारत की बड़ी ताकत माना जाता है। गेंदबाजी में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद अर्शदीप सिंह होंगे। अर्शदीप T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए 100 से अधिक विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। वहीं स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती ने पिछले 1.5 वर्ष में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 35 से अधिक विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की है। दूसरी ओर इंग्लैंड की बल्लेबाजी का दारमदार जोस बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक और लियाम लिविंगस्टोन पर होगा। जोस बटलर के नाम 1 शतक और 30 से अधिक अर्धशतक हैं। गेंदबाजी में अनुभवी लेग स्पिनर आदिल रशीद इंग्लैंड के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में 140 से अधिक विकेट हासिल कर चुके हैं और इस प्रारूप में इंग्लैंड के सबसे सफल स्पिन गेंदबाज हैं। वहीं जोफ्रा आर्चर की मौजूदगी मेजबान टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को अतिरिक्त धार प्रदान करेगी। शानदार रिकॉर्ड, विश्व स्तरीय खिलाड़ी और 2 क्रिकेट महाशक्तियों की टक्कर, ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को मैनचेस्टर में एक और यादगार T20 मुकाबले की प्रतीक्षा रहेगी।

0: यह मैच आज शाम भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट को ही आगे बढ़ाते हुए हम बता दें, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 5 जून को कल खेला जाएगा। रविवार 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 6 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को मात देकर एक और विश्व कप फाइनल में अपनी जगह बनाई। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड की टीम 8 वर्षों के अंतराल के बाद महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इस मुकाबले में कई अहम उपलब्धियां भी दांव पर होंगी। ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 7वां महिला T20 विश्व कप जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि इंग्लैंड 17 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त कर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने और घरेलू मैदान पर इतिहास रचने की कोशिश करेगा। क्रिकेट की आखिरी खड़ी में बता दें, श्रीलंका के गाल में खेले जा रहे भारत ए और श्रीलंका ए के बीच दूसरे 4 दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट के नुकसान पर 535 रन बना लिए हैं और उसकी कुल बढ़त 169 रनों की हो गई है। बी साई सुदर्शन ने आज शानदार 168 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया। और टेबल टेनिस की बात करें तो
1: और अब टेबल टेनिस की हम बात कर लेते हैं। वसीम, क्या खास है टेबल टेनिस में?
0: ITTF ATTU एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप थाईलैंड में भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त बालिका युगल जोड़ी सिंड्रेला दास और दिव्यांशी भौमिक को फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मैच 2-3 से हारने के बाद उन्होंने रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता का समापन उपविजेता के रूप में किया। वहीं सिंड्रेला दास ने अंडर-19 बालिका एकल के सेमीफाइनल में 2-4 से हारने के बावजूद कांस्य पदक जीता।
1: और इसी के साथ आज के खेल खिलाड़ी में बस इतना ही। काफी खेल खबरों के साथ आज हम आपके साथ उपस्थित हुए। खेल जगत की ताजा खबरों विशेष रिपोर्टों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। मैं प्रेरणा शर्मा और मेरे सहयोगी वसीम अहमद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय

0: प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में कैबिनेट निर्णयों के संदर्भ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा संगीत विभूतियों की फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का लोकार्पण समारोह। 1 जुलाई बुधवार को राष्ट्रीय मीडिया सेंटर सभागार में कैबिनेट निर्णयों के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बताया।
1: कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए, दोनों के दोनों हाईवे के हैं। एक दिल्ली में बहुत एक लंबे समय से डिमांड थी कि नेशनल हाईवे वाला जो पोर्शन है वहां से वसंत कुंज के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए, कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे। फाइनली जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीज की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है। पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की टनल बहुत लंबे समय से जो डिमांड थी, एयरपोर्ट के पास में जो शिवजी की मूर्ति है उस इंटरचेंज से टनल नीचे चालू होगी और वहां से सीधा वसंत कुंज के पास आएगी। आगे आके फिर ये जुड़ेगी एम्स के पास और आगे जाके फिर जो बारापुला का जो ब्रिज है उस ब्रिज तक पूरा कनेक्ट हो जाती है। तो एक तरीके से कंप्लीट एक नई आर्टरी दिल्ली की बन जाएगी, एक पूरा का पूरा ट्रैफिक का एक कॉरिडोर बन जाएगा। ये प्रपोजल है, कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, कानपुर से काबराई। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक आर्टरी है पूरे बुंदेलखंड के कई हिस्सों को जोड़ने वाली, और आगे कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। इस आर्टरी में कानपुर, काबराई, छतरपुर, सागर, भोपाल, डिटेल्स अगर ले 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा।
0: 1 जुलाई बुधवार को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा रंग भवन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रसारण भवन स्थित संगीत विभूतियों की फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का लोकार्पण सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रिमोट का बटन दबाकर किया गया।
2: मैं अनुरोध करती हूं हमारे विशेष सम्मानित अतिथि से, आप कृपया रिमोट का बटन दबाकर स्वर प्रेरणा विथिका का डिजिटल लोकार्पण करें।

0: इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी ने शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा,
1: भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रसिद्धि दिलवाने वाले भारत सरकार के नागरिक अलंकरण से सम्मानित संगीत जगत के 20 कलाकारों के सम्मान में स्वर प्रेरणा वीथिका के लोकार्पण के लिए आज के दिन से अधिक उपयुक्त कोई अन्य तारीख नहीं हो सकती थी। हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्मदिन भी है। हम सभी की तरफ से मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये आयोजन भारतीय संगीत के महान कलाकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के प्रयास का पहला चरण है, जिन्होंने आकाशवाणी को सांस्कृतिक संस्था के रूप में पहचान बनाने में विशेष योगदान दिया है। आगे के चरणों में और भी ऐसे महान कलाकारों के चित्रों को इस फोटो गैलरी में शामिल किया जाएगा। आकाशवाणी के अन्य केंद्रों पर भी स्थानीय संगीत कलाकारों को समर्पित इस प्रकार की इंस्पिरेशनल फोटो गैलरीज बनाई जाएंगी। आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। हिंदुस्तानी संगीत को समर्पित आकाशवाणी का रागम चैनल और भक्ति संगीत को समर्पित आकाशवाणी का आराधना चैनल 24/7 श्रोताओं के लिए YouTube और न्यूज ऑन एयर ऐप पर उपलब्ध है, साथ ही वेव्स पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी के संगीत कलाकारों ने भारत की विविधता को आवाज दी है, भारतीय संस्कृति को गति दी है और सीमाओं से परे जाकर एकता की आवाज को मजबूत किया। इस विशेष अवसर पर मैं एक बार फिर कलाकारों और सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। हमारा ये जुड़ाव संगीत और संस्कृति की समृद्धि के लिए और पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, ये हमारी कामना है।
0: इस आयोजन में आमंत्रित पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन उपस्थित श्रोताओं कला प्रेमियों को मंत्र

0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चहल पहल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु, अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां, ऊर्जायां, परिवहने, उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
3: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत्

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और जैसा कि हमारे बहन भाई जानते हैं, आज शनिवार है तो उनको सुनने को मिलेगा उन्हीं की पसंद का लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले अपने बहन भाइयों को बता दें कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी श्री गुलजारी लाल नंदा जी की जन्म जयंती है। श्री गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म आज ही के दिन 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। आपने लाहौर, आगरा और इलाहाबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल शशि भाई, श्री गुलजारी लाल नंदा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्रम संबंधी समस्याओं पर एक शोध अध्येता के रूप में कार्य किया और 1921 में नेशनल कॉलेज मुंबई में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने। इसी वर्ष वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 1922 में वो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव बने, जिसमें उन्होंने 1946 तक काम किया और उन्हें 1932 में सत्याग्रह के लिए जेल जाना पड़ा। फिर 1942 से 1944 तक भी वे जेल में रहे।
0: बिल्कुल, और नंदा जी अपने सादा जीवन, उच्च विचारों और अद्वितीय ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। आप 1951 में भारत के योजना मंत्री बने और आपने भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: बिल्कुल, और आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 2 13-13 दिनों के लिए देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था।
0: देश के प्रति आपके निस्वार्थ योगदान और उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा के लिए वर्ष 1997 में आपको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो हम शत शत नमन करते हैं श्री गुलजारी लाल नंदा जी को उनकी जन्म जयंती पर। तो नीलम बहन, ये तो

0: हमारे बहन भाइयों ने जाना पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी के बारे में। और देखिए, आज जुलाई महीने का पहला शनिवार है, इसीलिए आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसे पहली बार साल 1923 में मनाया गया था, उस समय से ये हर साल मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मिलजुल कर कार्य करने के लिए जागरूक करना है। देश भर में कई ऐसे संगठन हैं जो सहकारिता के लिए प्रयासरत हैं। सरकार भी इन संगठनों की आर्थिक रूप से मदद करती है।
1: बिल्कुल शशि भाई, और इसके अलावा इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, और साथ ही सहकारिता को जन केंद्रित संस्थाओं के रूप में मान्यता देना है, जो विश्वास बनाने और समुदायों को एकजुट करने में मदद करती है। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2026 की थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता।
0: बिल्कुल, तो नीलम है ना, ये तो बात रही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: मैं सोनू गांव गौर जिला में नगर से बोल रहा हूँ।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज थोड़ा जनवल शर्मा को
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: नाम है
0: जी
2: मन बलमा से फूलवती फोटो डालो जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: सुरेश चौहान जी नवगढ़ से बोल रहे हैं जी।
0: सुरेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: इंद्रपाल जी
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: दो चार नाम ले लूं जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: विजय सिंह लखेरा जी खेड़ी चलवाना से, तेजराम कौशिक सुकुराड़ी से, मोनू नजफगढ़ से, और हमारे श्रोता नफेश सिंह मुदगल जी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
4: इंद्रवीर तेवतिया, नट्टूगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज इंद्रपाल शर्मा की जाई हुई बढ़िया सी रागिनी सुनवा देना, और कुछ नाम लेने चाहूँगा
0: जी।
4: प्रिंस प्रत्यक्ष निष्कर्ष, हमारी बुआ जी राजगिरी भटौना से, भटौना से रामकिशन, श्यामपुर से हरवीर मास्टर जी, और खुशियालपुर से शेर सिंह मोदी, जुलाहपुर से सिंसु सैनी, और शीशपाल हेड़ी।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: इंद्रपाल शर्मा को सुना देना सर जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: बच्चों के नाम है सर जी?
0: जी
5: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: लक्ष्मण सिंह चंदेगढ़।
0: लक्ष्मण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: इंद्रपाल जी के लिए सुनना चाहेंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
7: शशि भाई जी, राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज इंद्रपाल शर्मा को सुनना चाहेंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
8: शशि भाई, राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: मैं चंद्रपाल सिंह जाखड़ बोल रहा हूँ, नबीपुर मुरादनगर से जी।
0: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: इंद्रपाल को सुनवा दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
8: दो चार नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
8: धर्मपाल, राजपाल, राजकुमार और सतबीर चौधरी जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
9: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
9: मैं ब्रिजपाल बोल रहा हूँ जी, गांव राम सावड़ा, जिला सहारनपुर से।
0: ब्रिजपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
9: इंद्रपाल शर्मा को सुना दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
9: एक नाम लूंगा सर।
0: हाँ बोल दीजिए।
9: हमारे बड़े भाई है रंजेड़ी से बसेसर बटार, राम राम जी।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर इंद्रपाल शर्मा से ये उपदेश।

0: राम राम सर।
1: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
0: हवलदार जयप्रकाश ग्राम पातोता बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
1: जयप्रकाश जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: सुरेश चंद गोरा को सुनवा दीजिए साहब, नाम नोट कर लियो
1: जी। कराएं
0: करण खुशी नंदनी राधिका पुत्रिका। राम राम साहब।
1: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार।
1: कौन भाई बोल रहे हैं?
2: विनोद कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ जी, गाँव जोजू कला से।
1: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज सुरेश चंद गोला जी साहब को सुना दो।
1: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई को नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: राजेंद्र जाटव रामपुर मान की पोस्ट मोदी नगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
1: राजेंद्र जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज के कलाकार हैं सुरेश चंद गोलार, कुछ नाम है।
1: हाँ बोल दीजिए।
3: महेंद्र शारदा, राम किशोर, शीला, अनुष्का, मानसी, शिवम और सचिन, और दो हमारे पोते हैं जो गाजियाबाद रहते हैं, प्रियांशु गौतम और टू, और ये पूरे आबिदपुर गांव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: राजे बोल, राजे कटरा से।
1: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: चंद्र गोला को सुनेंगे जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
4: नाम है जी बच्चों के, वंश है, हर्षित है, अनमोल है जी।
1: हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम जना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: सुरेश चंद गोला जी को सुनवाइए जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम है जी?
1: हाँ बोल दीजिए।
5: जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, जगदीश मोटा बादलपुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, और मेरे मित्र हैं एक जो है दिनेश मुखिया जी।
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो शशि भाई को नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: महेंद्र सिंह गोड़ा, विकासपुरी गाँव बराना, जिलावली में शहर।
1: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: सुरेश गोला को।
1: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर सुरेश चंद गोला से ये रागनी, खिस्सा रहेगा राजा मोर ध्वज का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: शोराम बोल रहे हैं जी, डाणी मिट्टी से, जिला भिवानी हरियाणा से जी।
0: शोराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: मनसाराम चौहान और ऋषिपाल चौहान को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ बच्चे हैं जी, इनके नाम लेता हूँ पोतों के।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: मोहित, रक्षित, जतिन, नितिन, दीक्षांत, दीपांशु और अंकित। दो पोते जी, आरती और पूजा।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मोहल्ला वाला शिकारपुर बुलंद शहर से बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ जी।
0: बबली भाई, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान जी की आवाज में अच्छी राग में सुनवा दो सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: और हमारे परिवार का नाम नोट कर लो सर जी।
0: हाँ कराए।
2: पत्नी पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोनू कुमार, लड़की पूजा रानी, लड़का छोटा भीम, शीशपाल अकेला, अनवर बिहारी जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: जी भाई, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: घनश्याम।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ऋषिपाल मनसाराम चौहान को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: नाम बोल दूं?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: मेरी बहन ज्ञानपति आनंदी और ज्ञानदा प्रधान जी हैं। गबू राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार शशि जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: इस हाल से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ शशि जी।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान को सुनना चाहूंगा। बनवारी लाल यादव जी, गामड़ी वाले, शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरा जी महेंद्रगढ़ से। राम राम जी।
0: राम राम जी।

0: राम संसार।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: पुराना श्रोता हूँ, साधु सेन विरासती।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज जीवनसा राम चौहान और साथी कलाकार उनको सुनना चाहूंगा जी।
0: ऋषिपाल चौहान और मनशा राम चौहान।
1: जी हाँ,
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: हाँ जी, कुछ नाम लूंगा जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
1: मेरी बेगम मोहब्बत बेगम, मेरे बच्चे हैं सनाया तकान, क्या मोहम्मद तकान, तबस्सुम तरन्नुम तराना हीना सीमा, और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं नफीस सिंह मुद्गल।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल चौहान और मनशा राम चौहान से ये रागनी। खिस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का।

0: बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने कार्यक्रम ग्राम संसार सुना और अब से कुछ ही क्षण बाद यानी 7 बजे सुनेंगे आप हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को

रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैसे मोहम्मद, लश्करे तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, बहुत बार देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो अपने फसल की सिंचाई करते हैं, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जितनी मात्रा में पौधों को, फसल को पानी की जरूरत होती है, उससे ज्यादा पानी हमारे किसान भाई फसलों को दे देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे के जिस हिस्से पर पानी की आवश्यकता नहीं होती, उस पर भी पानी पहुंच जाता है। इससे पौधे खराब होने और कीड़े लगने का डर सताने लगता है। फिर इसी पौधे को बचाने के लिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अब सवाल ये है कि इन सब से कैसे बचा जा सकता है, तो इन सब का समाधान है टपक सिंचाई।
1: बिल्कुल शशि भाई, हमारे बहुत से किसान भाई इस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं, जिससे पानी की एक बूंद का भी नुकसान नहीं होता। ऐसा करने से वो अपने पौधों को खराब होने से भी बचा लेते हैं और अधिक पानी से खराब पौधों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस या टपक सिंचाई के तहत किसान भाई अपने खेतों में लगी फसलों तक पानी पहुंचा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ट्यूबवेल या बोरवेल से बहुत पानी की जरूरत नहीं पड़ती।
0: बिल्कुल नीलम बहन, इसके साथ ही महंगी बिजली और महंगे डीजल के युग में अगर कम खर्च में सिंचाई का काम हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई टपक सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई अगर टपक सिंचाई का फायदा जान जाएं, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बहुत कम खर्च में टपक सिंचाई का सिस्टम लगाया जा सकता है। इससे सरकार का सपना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी साकार हो जाएगी।
1: बिल्कुल, टपक विधि का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि एक घंटे के भीतर एक एकड़ के खेत की सिंचाई की जा सकती है और पानी की बर्बादी भी रोकी जा सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा नीलम बहन आपने, तो हमारे किसान भाई जरूर टपक सिंचाई जो विधि है, इसका इस्तेमाल करके अपने खेतों में फसलों की सिंचाई करें, ताकि आपका समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे। तो नीलम बहन, ये तो बात रही टपक सिंचाई की, और अब बात करते हैं उन किसान बहन भाइयों की जो अगेती फूल गोभी की रोपाई

0: कि फूल गोभी की अगेती खेती के बारे में और इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर श्रवण सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकी विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: तो डॉक्टर साहब, फूलगोभी एक ऐसी फसल है कि जिसको पहले तो लोग ज़्यादातर सर्दियों में देखते थे, लेकिन अब ये 12 महीने उगाई जाने लगी है और हम बाजार में देखते हैं कि हर समय आती रहती है। तो कहीं न कहीं इसकी बिजाई का, इसकी रुपाई का साल भर कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन जो आगे आने वाले समय में आपके जुलाई अगस्त सितंबर में आएगी, तो उसकी तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे होंगे।
1: जी
0: तो इस समय जो अगुएती फूल गोभी है कि उसकी तैयारी के लिए क्या उसकी कुछ अलग किस्में होती हैं?
1: हाँ, देखिए किसान भाइयों, फूल गोभी की जैसे सर ने अभी बताया कि ये अलग अलग महीनों में उपलब्ध होती है और ये सितंबर अक्टूबर से लेकर के पूरा मार्च तक उपलब्ध होती है।
0: जी
1: इसके लिए अलग अलग किस्में हैं, एक किस्म कोई भी ऐसी नहीं है जो अभी से बोना शुरू करें और उसको आप दिसंबर तक उसको लगा लें, ऐसी कोई किस्म नहीं है। इसलिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग किस्में हैं। फूल गोभी की बात करें तो अभी जो समय है अगेती फूलगोभी का, उसकी चार पांच महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे कि पूसा मेघना जो अभी लगाई जा सकती है और कुछ किसानों ने तो उसकी एक महीने पहले भी बुआई कर चुके हैं, क्योंकि इसका जून से लेकर के जुलाई तक का महीना होता है, ये बुआई का समय होता है।
0: यानी डॉक्टर साहब, जिन्होंने इसके पौधे डाल दी है वो भी इसकी रोपाई कर सकते
1: हाँ,
0: हैं,
1: वो भी उसकी रोपाई कर
0: और
1: सकते हैं।
0: जिन्होंने अभी तक नहीं डाल पाए हैं
1: हाँ,
0: वो भी उनके डालने का सब अभी सही समय
1: अभी
0: है।
1: समय है। साथ ही साथ दूसरी जो किस्म है, जो पूसा मेघना है, इसकी पैदावार कम रहती है, लगभग 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर रहती है। फूल का आकार थोड़ा छोटा है, लगभग 250-300 ग्राम का रहता है। उसकी बजाय अच्छी किस्में जो उपलब्ध, नई किस्में जो आई हैं संस्थान की तरफ से, उसमें पूसा अश्विनी है जो अभी जुलाई के महीने में बहुत अच्छी मानी जाती है लगाने के लिए, और ये अक्टूबर के अंत में तैयार होती है, मध्य अक्टूबर के बाद में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो इस किस्म को भी आप ले सकते हैं, इसका आकार है वो 500-600 ग्राम के आसपास आ जाता है। साथ ही एक किस्म और है पूसा कार्तिकी, तो इसकी भी पूसा अश्विनी की तरह ये भी जो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा है उसमें कटाई के लिए तैयार होती है, और ये नवंबर के प्रथम पखवाड़े में भी तैयार रहती है, तो ये एक लंबा अंतराल लेती है। इन दोनों किस्मों को अभी लगा सकते हैं। साथ ही साथ पूसा संस्थान ने नए जो संकर किस्में भी विकसित की हैं, उसमें पूसा फूलगोभी संकर 101 और पूसा फूलगोभी हाइब्रिड 102 हैं। इन किस्मों को भी किसान भाई ले सकते हैं। इनके पैदावार 20 टन प्रति हेक्टेयर से ज्यादा पैदावार इनकी होती है, और ये यही अक्टूबर के महीने में और नवंबर के प्रथम पखवाड़े में ये कटने के लिए तैयार हो जाती हैं।
0: जैसे आपने पहले जो किस्में बताएं, जैसे पूसा अश्विनी और दूसरी पूसा की किस्में, लेकिन आपने कुछ हाइब्रिड किस्मों का जिक्र किया, इसमें और उसमें अंतर क्या है?
1: हाँ, देखिए जैसे मैंने बताया था कि पूसा मेघना में फूल का आकार छोटा रहता है, ऐसे अश्विनी में थोड़ा ठीक है, 500 ग्राम के आसपास रहता है, और पूसा कार्तिकी में भी वो 550-600 ग्राम का। लेकिन जो संकर किस्में हैं उसमें एक तो आकार जो फूल का है वो ज्यादा है, तो ज्यादा आकार है तो ज्यादा वजन और ज्यादा पैदावार, क्योंकि जो ओपन पोलिनेटेड किस्में होती हैं, जो किस्में होती हैं उनकी पैदावार लगभग 15-16 टन प्रति हेक्टेयर रहती है, वहीं संकर किस्में यदि किसान लगाते हैं तो उनकी पैदावार 20 टन से ज्यादा चली जाती है। ये एक हाइब्रिड जो वेराइटीज होती है उनकी ज्यादा पैदावार की क्षमता होती है। दूसरी, उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, ऐसे नहीं कि खेत में कुछ पौधे अब कट रहे हैं, कुछ थोड़े दिन बाद में कट रहे हैं, कुछ और थोड़े दिन बाद में। ये समस्या ओपन पोलिनेटेड जो किस्में होती है उसमें ज्यादा रहती हैं, और ये हाइब्रिड में कम रहती है। हाइब्रिड में एक साथ कटाई होती है, एक या दो कटाई में पूरा खेत खाली हो जाता है, जो किसान के लिए ज्यादा लाभकारी है। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, ज्यादा पैदावार और एक साथ कटाई के लिए तैयार होना।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो रही किस्मों की बात, लेकिन अगर कोई हमारे किसान भाई इसके पौधे डालना चाहते हैं तो पौधे डालते समय क्या सावधानी रखें?
1: क्योंकि फूलगोभी एक शीतकालीन फसल है और हमने ऐसी किस्मों का विकास किया जो गर्मी में भी आ सकती हैं, उसके साथ साथ ऐसी तकनीकी का भी ध्यान रखने की जरूरत है जो गर्मी में फूलगोभी को सही वातावरण दे, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो नर्सरी उत्पादन होती है। किसान भाइयों, आजकल जो गर्मी है उसमें पौध तैयार करना एक बड़ा चैलेंज है। आप इसके लिए उठी हुई क्यारियां बनाएं जो लगभग 1-1.5 फीट चौड़ी हों और 3 से 5 मीटर लंबी आप ले सकते हैं, जो लगभग 1 फीट के आसपास उठी हुई क्यारी होनी चाहिए, क्योंकि जलमग्नता कभी कभी खेतों में कहीं हो जाती है तो उसमें ये उठी हुई क्यारी नर्सरी तक पानी नहीं जाने देती ऊपर पौधों तक, और आपकी पौध बचाव होती है। उसके ऊपर आप अच्छे से भुरभुरी बना

0: लें उनको हाथों से, और फिर उसके अंदर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लाइन सोविंग करें, छिटक कर बीज बेड पे नहीं बोएं। उसके लिए सीधी सी बात ये कहते हैं हम किसान भाइयों को कि लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर लगभग 1-1.5 इंची जो गहरी नालियां बनाते हैं उसमें बीज डालें, और बीज का उपचार अवश्य करें। चाहे आप बावेस्टिन से करें 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, या जो भाई जैविक खेती करते हैं वो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर 1 किलो बीज के लिए इस उपचारित करके, और उन नालियों में बीज की बुआई करें, और उसके बाद उनको ढक दें मिट्टी से, या जो आप कोई भी ऐसे जो मिट्टी आपके पास रहती है बालू मिट्टी रहती है उसे ढक दें, और उसके ऊपर सूखे घास जरूर रखें। फिर उसके ऊपर धीरे धीरे पानी डालते रहें 2-3 दिन तक। आप देखिए तीसरे या चौथे दिन तक जमाव आ जाता है, उस समय आप उस सूखी घास को हटाइए और बाविस्टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव जरूर कर दीजिए, जिनसे आपकी पौध में कोई बीमारी नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये देखिए कि कहीं ज्यादा गर्मी तो नहीं है, ज्यादा गर्मी है तो जो ग्रीन कलर का, जो हरे रंग का सेड नेट आता है उसको 50% या 75% से ढकने की कृपा करें। उससे क्या होगा कि जो तेज दिन की धूप होती है उसमें आपकी नर्सरी को नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ ये भी देखिए, आजकल मौसम बारिश का है तो जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं वो प्लास्टिक की सीट से नर्सरी को, जब आपको लगे कि मौसम विभाग का अनुमान आया है कि बारिश होगी, उसको ढकने की जरूर व्यवस्था करें, ताकि जो सीधा तेज पानी गिरता है नर्सरी पे उससे आपके पौधों को नुकसान न हो जाए। हाँ, यदि ऐसी कोई संभावना नहीं है तो प्लास्टिक से ढकने की कोई जरूरत नहीं है, और शेड नेट है वो आप रात के टाइम में हटा सकते हैं, लेकिन दिन में अवश्य शेड नेट रखें। इस 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें, और जैसे आपकी पौध 15-10 दिन की हो जाती है एक गुड़ाई अवश्य करें, जो नालियां बनाई आपने जिसमें बुआई की है उसके बीच बीच में गुड़ाई करें, और उसके बाद में हल्की हल्की सी मिट्टी बैठी करें। और जब रोपाई का समय आता है उसमें कई किसान भाई गलती करते हैं कि वो 30 दिन की पौध लगाते हैं उसकी हार्डनिंग नहीं करते हैं, वहां भी उस बात का ध्यान देने की जरूरत है। उसमें मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि जैसे आप रोपाई के लगभग 35 दिन के आसपास की पौध लें, और रोपाई से 7-8 दिन पहले आप 1-1 दिन के अंतराल पर पानी दें, तो उससे क्या होगा जो पौधों में थोड़ी सख्ती आती है और वो फिर आप शाम के समय रोपाई के लिए लेके जाएं, वो ज्यादा अच्छा आपके खेत में पौधे स्थापित होंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो पौधशाला जो हमारे किसान भाई खेतों में या दूसरी जगह तैयार करते हैं वहाँ की बात कही, बहुत से ऐसे किसान भाई हैं कि इसको संरक्षित दशा में भी पौध उत्पादन करते हैं, तो वहां पे हार्डनिंग कैसे कर सकते हैं?
0: हाँ, देखिए कुछ किसान भाइयों के पास ऐसी संरक्षित संरचनाएं होती हैं जिसमें पौध तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सलाह दी जाती है कि जैसे पानी का मैंने बताया कि जैसे 25 दिन की पौध के लगातार पानी उसको देते रहें सुबह शाम जब जरूरत पड़े, उसके बाद में आप एक समय दें और दूसरे समय नहीं दें, तो ये जो सूखापन महसूस करेगी पौध वो भी एक तरीके का हार्डनिंग का प्रोसेस होता है, उससे पौधों में जान रहती है। साथ ही साथ अंत के दिनों में थोड़ा सा शेड नेट भी कम कर दें, जो हरी छाया आपने ऊपर रखी है उसको कम कर दीजिए, ताकि धूप पौधों पे गिरेगी और पानी का कम रहेगा, ये दोनों चीजें पौधे को सख्ती देती हैं, तो इसका जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि जमीन लाइनों में उस तरीके से उसकी बिजाई करें, लेकिन जो संरक्षित वातावरण में करते हैं तो उस किस तरीके से पौधे तैयार करते हैं?
0: इसमें ये रहता है कि ज्यादातर प्रो ट्रेज या प्लग ट्रेज का भी किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। हाँ, छोटी छोटी जो प्लग ट्रेज होती हैं जिसमें 96 सेल छाण में जो सेल्स होती हैं ऐसी भी होती हैं और किसी में ज्यादा भी रहती हैं, उसमें जो मीडिया रहता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा साथ में यदि आप कोकोपिट और वर्मी कम्पोस्ट इन दोनों का कम्बिनेशन भी आप लेते हैं उससे भी आप पौध तैयार कर सकते हैं। उसमें 1 वर्मी कम्पोस्ट हो सकती है और 2 कोकोपिट, ये कम्बिनेशन आप बना करके उनमें सांचों में भर दें और उसमें एक एक बीज आप लगाएं, और तो उससे भी पौध अच्छी तैयार होती है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं किसान भाई, बेड पे भी कर सकते हैं और जो प्लग ट्रेज होती है उनमें भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये कोकोपेट और वर्मिकुलाइट और परलाइट जो बताया, इसकी मात्रा कितनी बराबर रखते हैं?
0: जो कोकोपेट, वर्मिकुलाइट और परलाइट, ये तीनों को हम देखें तो इनमें 3:1:1 का रेशो रखना ठीक रहता है। लेकिन मैंने जो हमारे यहाँ देखा है कि फूल गोभी के लिए ये जो कम्बिनेशन चलता है वर्मिकुलाइट, परलाइट और कोकोपीट वाला, ये ज्यादा कारगर नहीं हो पाता जब हम खेत में इन पौधों को लगाते हैं। तो थोड़ी मेरे किसान भाइयों को सलाह ये है कि आप कोकोपीट और वर्मी कम्पोस्ट वाला जो कम्बिनेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिला है, खासकर अगेती फूल गोभी में, और या जो किसान भाई मिट्टी में पौध तैयार करते हैं उनमें ज्यादा शक्ति मिलती है और वो ज्यादा अच्छे से पौध खेत में सक्सेस हो पाते हैं।
1: मिट्टी और गोबर की खाद मिला के प्रयोग करें?
0: हाँ, ये भी कारगर है, क्योंकि उसमें जो जड़ें फूलगोभी को बहुत सॉफ्ट मीडिया रहता है उसकी जरूरत नहीं होती है, उसको थोड़ा सख्त मीडिया चाहिए ताकि उसकी पौध अच्छे से जमीन को पकड़ें और जब वो खेत में जाएं तो वहां वो चल सकें। और जब उनको ज्यादा सॉफ्ट मीडिया मिलता है, हमारे यहाँ जो गर्मी में जो अगेती में है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है।

0: तो किसान भाई मिट्टी में जो पौध तैयार करते हैं, या मिट्टी का जो मीडिया है वो, या कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मीडिया है, इन तीनों को ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करें, जिससे आपके खेत में जब पौधे जाएं तो वो ज़्यादा सक्सेस उनको मिले, ज़्यादा जिंदा रहें खेत में।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि हमारी जो पौधशाला है उसमें पौध गलन की समस्या हो जाती है।
0: देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ये दो तीन चीज़ों में देखी गई है। जो किसान भाई छिटक कर पौध बोते हैं, वहाँ कहीं कहीं ज़्यादा गहरा बीज गिरता है तो वहाँ बिल्कुल पौधशाला खाली हो जाती है। दूसरी बात ये कि जहाँ डैम्पनेस ज़्यादा है, नमी ज़्यादा रहती है, ऐसी नर्सरी में जहाँ पानी भरा रहता है या ऐसी कोई समस्या है, उसमें ये ज़्यादा आती है, क्योंकि ये कवक से आती है, फंगस से। ये दो तीन फंगस अलग अलग होते हैं। जैसे एक हमने बताया था शुरू में चर्चा की कि बीज उपचार करना शुरुआत में ज़रूरी है। हमने बीज उपचार किया और उसके बाद में यदि लाइनों में सोविंग की, और जैसे मैंने बताया था कि 10 से 12 दिन बाद में हल्की हल्की गुड़ाई करें, मिट्टी की गुड़ाई करें, उससे जो हवा निकलती है तो ये बीमारी कम हो जाती है। ये समस्या वहीं ज़्यादा आती है जहाँ सघनता है नर्सरी में और साथ में पानी की अधिकता है। तो इसका उपचार ये है कि समय समय पे एक तो गुड़ाई करें, साथ ही साथ बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल से जरूर आप अपनी जो नर्सरी है उसकी ड्रेंचिंग कर दें, वो 10वें दिन कर दें और लगभग 17-18 दिन बाद में फिर कर दें, तो उससे ये समस्या कम आ जाती है। और ये देखें कि पानी की ज्यादा आवक हो रही है, बरसात की संभावनाएं हैं, तो नर्सरी को ढक के रखिए, ज्यादा कीचड़ नहीं होने दीजिए, उससे ये समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बरसात का सीजन है, और बरसात के सीजन में अगर हमारे किसान भाई गोभी की रोपाई करते हैं तो क्या सावधानी रखें जिससे उनकी फसल खराब ना हो।
0: जो अगेती फूल गोभी होती है वो पूरी बरसात की सीजन में ही होती है, क्योंकि
1: जी
0: ये अभी हम जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में इसकी कटाई करते हैं, तो पूरा बरसाती सीजन है। और फूल गोभी की खासियत है कि इसको जड़ में ज्यादा पानी पसंद नहीं है, ये जैसे ही पानी खड़ा होगा खेत में फूल गोभी मर जाती है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जल निकास की उत्तम व्यवस्था करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप हमेशा जो अगेती फूल गोभी है उसको मेड़ी पे लगाएं, और मेड़ी जैसे आप ट्रैक्टर से बनवा सकते हैं या आप मजदूर जो हाथों से बनवा सकते हैं,
1: फावड़े से,
0: फावड़े से बना सकते हैं, और ये लगभग आधा फीट या 1 फीट की ऊंची, जितनी ऊंची रहेगी उतनी अच्छी है। इसमें पानी भी कम लगता है क्योंकि आपने सिर्फ पंक्तियों में, लाइनों में पानी देना है, नालियों में पानी देना है, तो बाकी आधा खेत आपका वैसे बच जाता है। और साथ ही साथ इसमें पौधे की जड़ तक पानी नहीं जाता, तने तक उतना पानी नहीं जाता है, तो ये पौधे मरते नहीं है। ये विशेषता इस बात का ध्यान रखें कि मेड़ी पे लगाएं, बिना मेड़ी पे कहीं पर भी फूलगोभी अगेती फसल को ना लगाएं।
1: तो बरसात के सीजन में ज्यादातर जो कीट होते हैं उनका भी प्रकोप देखा गया है, क्योंकि गर्मी भी होती है और कीटों के लिए दूसरी फसलें कम होती हैं, और गोभी ऐसी है कि मुलायम होती है, तो इस पे ज्यादा कीट प्रभावित होते हैं, तो उसको किस तरीके से नियंत्रण
0: हाँ,
1: करें?
0: देखिए अगेती फूल गोभी है उसमें एक तंबाकू की सुंडी है, वो ज्यादा उभर के आती है। ये किसान भाई जब अपने खेत में जाते हैं, जैसे थोड़ी फसल दिखने लग जाती है, तो दूर से भी पत्ते को देख सकते हैं कि उसमें खुरचा हुआ सा दिखता है। जब उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो छोटी छोटी इल्लियों के झुंड मिलते हैं। तो किसान भाइयों को एक सलाह दी जाती है कि ऐसे पत्तों को तोड़ करके किसी बाल्टी में डालें और गड्ढे में दबा दें। दूसरी सलाह ये दी जाती है कि जो तंबाकू की सुंडी है उसके ट्रैप्स आते हैं, फिरोमोन ट्रैप्स जो फास बोलते हैं, वो आप लगभग 10 से 15 प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने खेत में लगाएं। उससे जो नर कीड़े हैं वो सारे उसमें, उस पॉलिथीन की थैली में चले जाते हैं, तो आगे ज्यादा कीड़े नहीं बनेंगे। और यदि फिर भी ये समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता किसी किसान भाई के है, तो उसके लिए जैसे इंडोक्सिकार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं, और उसी के साथ यदि वो उपलब्ध नहीं है तो स्पाइनोसेड का 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल के साथ उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये दोनों दवाई हैं, वो फूल बनने की अवस्था से पहले पहले करें, क्योंकि फूल बनने के बाद में इनका प्रभाव करने से ये फूल के अंदर इसकी जो दवाई का है उसका असर कहीं ना कहीं जा सकता है। हम कहते हैं जो वेटिंग पीरियड है उसका विशेष ध्यान रखना है, और उसके बाद स्प्रे से कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि पत्तों को जो नुकसान करते हैं उनको, पत्तों को बचाना है ताकि फूल बड़ा बने, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इन दो कीड़े ज्यादा आते हैं। और यदि बीमारियों की बात करें तो अगेती फूलगोभी में एक काला सड़न आती है जिसमें पत्तों के ऊपर कोणी आकार के धब्बे बनते हैं, पीले बड़े बड़े धब्बे बनते हैं, और ये खासकर उन्हीं खेतों में ज्यादा आता है जहां पे समतल भूमि में लगाया है या पत्ते जमीन को टच करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेड़े पे लगाते हैं तो पत्ते जमीन पे ज्यादा टच नहीं करते हैं, गीलेपन पे टच नहीं करते हैं, तो ये बीमारी कम आती है। दूसरी बात, जब हमने बताया कि बीज उपचार करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान करें कि आपने यदि बीज उपचार किया है तो ये समस्या थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ यदि फिर भी ऐसी कोई समस्या आती है तो उन पत्तों को तोड़ करके अपने खेत से किसी गड्ढे में दबा दीजिए, तो उससे ये ज्यादा बीमारी फैलती नहीं।

0: हैं। तो ये दो तीन उपाय आप लेते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी। सिर्फ मैं एक बात तो कहना चाह रहा था कि जो फूलगोभी की आप खेत की तैयारी करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फूलगोभी का जो पौधा है वो तभी उठता है, तभी अच्छी पैदावार देता है जब उसको भोजन अच्छा मिलता है। उसके लिए आप ये कोशिश करें कि लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जरूर खेत में डालें। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर डालने की कोशिश करें, और वो उपलब्ध नहीं है तो आप जैसे खेत में सड़ी हुई जो आप कंपोस्ट बनाते हो पत्तों से वो डालने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ 120 किलो नत्रजन और लगभग 50 से 60 किलो पोटास और 50 से 60 किलो फॉस्फोरस जरूर अवश्य डालें। साथ ही साथ अगेती फूलगोभी में देखा गया है कि बोरोन की कमी कई खेतों में देखी गई है, इसके लिए 10 किलो बोरेक्स जब आप खेत में जो अंतिम जुताई करते हैं मेड़ी बनाने से पहले उस समय अवश्य मिला दें। इन दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी फसल को अच्छी पैदावार तो हो ही साथ ही अच्छी गुणवत्ता भी बनी रहे।
1: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, अगर सही तरीके से अगर आप देखभाल करते हैं और बरसात के मौसम में खरपतवारों का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर श्रवण सिंह जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाई सुन रहे थे ये बातचीत फूल गोभी की रोपाई और देखभाल, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर श्रवण सिंह और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब किसान बहन भाइयों आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति, सभी किसान बहन भाइयों को राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं गजल।

0: चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की और सोनिया विहार जल संयंत्र तथा तैमूर नगर ड्रेन के पास नई पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्कों के सौंदर्यीकरण, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, मुनक नहर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। साथ ही अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए।
4: श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा के BDFD पार्क में सौंदर्यीकरण कार्यों और इसमें नई प्रकाश व्यवस्था के लिए 93 नए इलेक्ट्रिक पोल का उद्घाटन किया। इसके अलावा शालीमार बाग में जल भराव और सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए आधुनिक जल निकास प्रणाली और अतिरिक्त सीवेज पंपिंग स्टेशन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों को जल भराव और सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए आधुनिक तथा दीर्घकालिक संरचना विकसित कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने पीतमपुरा परिसर स्थित दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर संस्थान में उपलब्ध शैक्षणिक तथा तकनीकी सुविधाओं, प्रशिक्षण अवसंरचना और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुख और आधुनिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश कर रही है, जिससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
3: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने के उद्देश्य से वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया है। स्थानांतरण और पद स्थापन नीति के अंतर्गत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: तबादला किए गए अधिकारियों में 23 उप लेखा नियंत्रक और 29 वरिष्ठ लेखाधिकारी शामिल हैं। साथ ही 19 वरिष्ठ लेख अधिकारियों को पदोन्नत कर उप लेखा नियंत्रक बनाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पद स्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए।

0: आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के अनुसार अब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अलग अलग समय को बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर दिया गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम के लिए समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग 120 अरब डॉलर है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
2: मैं मानता हूं कि यहां जो सभी भारतीय स्वदेशी खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं, ये एक प्रकार से भारत के भविष्य को तैयार कर रही हैं और ये विदेश से आने वाले सब खिलौने बच्चों के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं, ये इनोसेंट पेरेंट्स को कभी ध्यान ही नहीं आता। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में इस बात का उजागर किया था कि भारत के पास इतना टैलेंट है कि हम एक ग्लोबल टॉय हब बन सके, पूरी दुनिया में भारत के खिलौने जाने चाहिए।
1: आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय एक्सपो इस महीने की 7 तारीख तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कड़कड़डूमा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की। आरोपियों ने ट्रायल शुरू किए बिना लगातार जेल में रखने पर व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर जमानत मांगी थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक स्थानीय और 2 अफ्रीकी निवासी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल होने वाले 3 दोपहिया वाहन और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों अफ्रीकी नागरिक वैध पासपोर्ट और वीजा प्रस्तुत करने में असफल रहे। वहीं एक अन्य मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को सीलमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 350 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज जय सिंह रोड स्थित NDCC कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन किया। शिविर में नागरिकों से सीधे संवाद के माध्यम से 60 जन शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर संबंधित विभागों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान परिषद के 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर एक ही स्थान पर शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की। दक्षिण दिल्ली में प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत लोगों को उनके घरों के पास ही मालिकाना अधिकार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविरों की शुरुआत की गई है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज तेखंड गांव स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA बारात घर में पहले शिविर का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय शिविर तेखंड एक्सटेंशन और तेखंड गांव के निवासियों के लिए आयोजित किया गया है। श्री बिधोड़ी ने बताया कि ऐसे शिविर दक्षिण दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम के जन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जन स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निगम के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्पा सेंटरों, होटलों और मोटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही श्री वाही ने भारी मात्रा में कचरा उत्पादकों जैसे रेस्तरां, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि को अपने परिसरों तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता निरीक्षकों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है।

0: दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जहां देश के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, वहीं आज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से जुड़े दक्षिणी दिल्ली के मुख्य पाइपलाइन पर काम के कारण कल दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।
1: जलापूर्ति प्रभावित होने के कारण कल सवेरे 10 बजे से करीब 8 घंटे तक इन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जल बोर्ड के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में कैलाश नगर, गांधीनगर, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बटला हाउस, खान मार्केट, निजामुद्दीन, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, सराय काले खां, बदरपुर, सरिता विहार, श्रीनिवासपुरी, छतरपुर और इसके आसपास के इलाके शामिल हैं। वहीं तैमूर नगर ड्रेन के पास नई जल पाइपलाइन को मौजूदा पाइपलाइन से जोड़ने के कार्य के कारण कल सवेरे 10 बजे से सोमवार शाम 4 बजे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्रनाथ सिंह ने द्वारका में सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के अंतर्गत आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। एक रिपोर्ट।
2: श्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने बताया कि सहकारिता सप्ताह के दौरान द्वारका, नरेला, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे पौधों का रोपण किया जा रहा है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पक्षियों और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही श्री सिंह ने विशेष रूप से अधिक फलदार पौधे लगाने पर बल देते हुए कहा कि फलदार वृक्ष न केवल हरित आवरण बढ़ाने में सहायक होते हैं बल्कि पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आज सभी सहकारी संस्थाओं और उनके सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ सहकारिता जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त आधार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के संकल्प पर बल देते हुए कहा है कि इसे अब जन भागीदारी से पूरा करने का समय आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है जहां नागरिक पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामुदायिक पौधारोपण अभियान के लिए वृक्ष रथ बुला सकते हैं तथा दिल्ली ग्रीन वॉरियर के रूप में पंजीकरण भी करा सकते हैं।
3: दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे, साथ मिलकर लगाएंगे। 7 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इनॉग्रेशन करेंगे इस पूरी मेगा प्लांटेशन ड्राइव का। मिलकर के पेड़ लगाएंगे और आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दिल्ली ग्रीन वॉरियर के नाते भी, कि सरकार जब भी प्लांटेशन करेगी आपको इनवाइट कर सकते। ईवी पॉलिसी आ चुकी है, कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आइए मिलकर के दिल्ली को हरा भरा करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप के निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महान आध्यात्मिक चिंतक और भारतीय संस्कृति के वैश्विक संवाहक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में आयोजित 35वें आम महोत्सव 2026 का आज दूसरा दिन है। दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय उत्सव दिल्ली हाट और जनकपुरी में कल तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
4: महोत्सव में आम की 400 से अधिक किस्में प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें हुसनारा, केसर, मल्लिका, आम्रपाली, फजली सहित अनेक प्रसिद्ध किस्में शामिल हैं। महोत्सव में आम उत्पादकों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और किसान संगठनों ने भी भाग लिया। साथ ही आगंतुकों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। वहीं इस महोत्सव में

0: आम और आम से बने उत्पाद तथा पौधों की खरीदारी की सुविधा भी उपलब्ध है। ये उत्सव कल भी दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। और के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में व्यापक फेरबदल किया। पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त की। कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की। और सोनिया विहार जल संयंत्र और तैमूर नगर ड्रेन के पास नई पाइपलाइन के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है मुशायरा।
3: तमाम सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, शायरी कोई इकतसाबी चीज़ नहीं है, बल्कि शायरी किसी के मिजाज या तबीयत के मुताबिक इंसान के अंदर पैदा होती है, जो कुदरत की तरफ से एक अतिया है। कुदरत की अता करदा इस नेमत की अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सामईन या नाजरीन के रूबरू कोई शेर पढ़ा जाता है तो अक्सर उन पर एक खुशी या अफसुर्दगी की कैफियत तारी हो जाती है। कभी कभी एक जोश सा देखने को भी मिलता है। इसीलिए अक्सर मुशायरों में लोग किसी एक शेर को दोबारा सुनने की फरमाइश करते हैं। आइए सामईन सुनते हैं मुशायरा। निजामत कर रहे हैं जनाब खालिद अखलाक।
4: आज के इस मुशायरे में जो शोरा हजरात शिरकत फरमा रहे हैं उनके असमाई ग्रामी इस तरह हैं। जनाब शाकिर दहलवी साहब, मैं खालिद अखलाक, मोहतरमा इफ्फत अजीन साहिबा और जनाब मुनीर हमदम साहब। इसकी शुरुआत हम करते हैं बहुत प्यारे और बहुत तय लहजे के शायर जनाब शाकिर दहलवी साहब के साथ, जिन्होंने हालिया वक्त में बहुत तेज़ी के साथ अपना मकाम बनाया है। जनाब शाकिर दहलवी।
5: बहुत शुक्रिया खालिद साहब। एक गज़ल से मैं शुरुआत करता हूँ। मतलब ये है कि यकीन कर कि तेरे गम शनास हम भी हैं।
6: यकीन कर
5: कि तेरे गम शनास हम भी हैं, उदास देख के तुझको उदास हम भी हैं। उदास देख के तुझको उदास हम भी हैं, ये हम जो हंसते थे मजनू की दास्तां सुनकर। ये हम जो हंसते थे मजनू की दास्तां सुनकर, किसी के इश्क में अब देवदास हम भी हैं।
4: बहुत उम्दा। वाह,
6: अच्छा,
5: क्या बात। किसी के इश्क में अब देवदास हम भी हैं, निशानियां हैं यहाँ सब तेरी बताई हुई। निशानियां हैं यहाँ सब तेरी बताई हुई, जहाँ पे तू है वहीं आसपास हम भी हैं।
4: बहुत उम्दा। वाह वाह।
5: जहाँ पे तू है वहीं आसपास।
6: बहुत अच्छा शेर।
5: बहुत शुक्रिया। जहाँ पे तू है वहीं आसपास हम भी हैं। और शेर देखिए कि किसी ने हमको दिखाया जब आईना तो खुला। किसी ने हमको दिखाया जब आईना तो खुला, लिबास होते हुए बेलिबास हम भी हैं।
4: बहुत उम्दा शेर है। वाह वाह वाह।
6: बहुत अच्छा शेर।
5: बहुत शुक्रिया। लिबास होते हुए बेलिबास हम भी हैं, बिछड़ के हमसे अकेले तुम ही उदास नहीं। बिछड़ के हमसे अकेले तुम ही उदास नहीं, तुम्हें गवा के मुसलसल उदास हम भी हैं।
4: अच्छा है।
5: बहुत शुक्रिया सर। एक गज़ल और देखिए, ये तज़मीन है कि वाकिफ हैं दौरे हाल तेरी नाजुकी से हम।
6: वाकिफ
5: हैं दौरे हाल तेरी नाजुकी से हम, हर जुल्म सह रहे हैं बड़ी खामोशी से। हर जुल्म सह रहे हैं बड़ी खामोशी से हम।
4: बहुत उम्दा शाकिर साहब।
5: बचपन से ही अंधेरे की आदत सी है हमें।
4: बहुत
5: बचपन से ही अंधेरे की आदत सी है हमें, फिरते हैं मुंह छुपाए हुए रोशनी से हम।
4: क्या बात।
6: बहुत अच्छा।
5: बहुत शुक्रिया।
6: फिरते हैं मुंह छुपाए हुए रोशनी।

0: बचपन से
1: चलूंगा।
0: ही अंधेरे की आदत सी है हमें, फिरते हैं मुंह छुपाए हुए रोशनी से
1: क्या
0: हम।
1: बात है, हम
0: और ये ग्रह का
1: ईर्ष्या।
0: शेर है, ये है इसलिए भी अपना फरिश्तों में एहतराम,
1: हाँ वाह,
0: है इसलिए
1: इसलिए भी
0: भी
1: अपना
0: अपना
1: फरिश्तों में
0: फरिश्तों में एहतराम, मिलते हैं आदमी की तरह आदमी से
1: अच्छा
0: हम।
1: है। वाह वाह,
0: हम झांक लें जो अपने गरेबा में भूल कर,
1: हाँ हम
0: हम झांक
1: झांकले
0: लें जो अपने गरेबा में भूल
1: भूल
0: कर,
1: कर।
0: मुमकिन है मर ही जाएंगे शर्मिंदगी से हम।
1: क्या बात है,
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया। मुमकिन है मर ही जाएंगे शर्मिंदगी
1: शर्मिंदगी
0: से
1: से हम।
0: हम, और मेहनत यकीन हौसला किस्मत भी है मगर,
1: क्या बात है,
0: मेहनत यकीन
1: मतलब
0: हौसला
1: किस्मत
0: किस्मत
1: भी
0: भी
1: है
0: है
1: मगर,
0: मगर,
1: हिम्मत भी है मगर।
0: पहुंचे हैं इस मकाम पे दीवानगी से हम।
1: क्या बात है,
0: बहुत
1: क्या कहने,
0: शुक्रिया।
1: वाह
0: मेहनत यकीन हौसला किस्मत भी है मगर, पहुंचे
1: वाह, क्या बात है, वाह, पहुंचे
0: हैं
1: हैं
0: इस
1: इस मकाम
0: मकाम
1: पे
0: पे
1: दीवानगी से, दीवानगी
0: दीवानगी
1: से,
0: से
1: क्या
0: हम।
1: बात है, वाह।
0: बहुत शुक्रिया साहब। और ये गजल अभी मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन में कुछ अशआर कहे थे, वो देखिए। मतलब यूं हुआ कि जो शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे आगे,
1: वाह, जो शख्स कभी खुल के ना बोला
0: जो
1: मेरे आगे,
0: शख्स कभी खुल के ना बोला मेरे
1: मेरे
0: आगे,
1: आगे।
0: रोया तो बहुत टूट के रोया मेरे आगे,
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: रोया तो बहुत टूट के रोया मेरे
1: रोया मेरे
0: आगे।
1: आगे।
0: और शेर देखिए कि खुद तो नहीं बदला वो, बदलता है मगर रोज,
1: आहा,
0: खुद तो नहीं बदला वो, बदलता है मगर
1: मगर
0: रोज,
1: रोज।
0: बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे आगे।
1: आहा, वाह
0: क्या
1: वाह,
0: बात है,
1: वाह,
0: बहुत
1: बातें
0: शुक्रिया।
1: कभी लहजा कभी भुलिया मेरे
0: खुद तो
1: आगे,
0: नहीं बदला वो, बदलता है मगर रोज,
1: वाह वाह।
0: बातें कभी लहजा कभी हुलिया मेरे आगे, बारात गमों की है मुसलसल मेरे पीछे,
1: क्या बात है,
0: बारात गमों की है मुसलसल मेरे पीछे, चलता है मसर्रत का जनाजा मेरे आगे।
1: क्या बात है, क्या बात
0: बहुत
1: है,
0: शुक्रिया। चलता है मसर्रत का जनाजा मेरे आगे। और इस शेर देखिए बतौर खास कि मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा,
1: क्या बात है, वाह, मंसूब जो तुझसे है वो
0: मंसूब जो
1: लम्हा नहीं
0: तुझसे है वो
1: दूंगा,
0: लम्हा नहीं
1: नहीं दूंगा।
0: दूंगा, रख दे कोई दुनिया का खजाना मेरे आगे।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह वाह, जीते रहिए वाह।
0: मंसूब जो तुझसे है वो लम्हा नहीं दूंगा,
1: हाँ
0: रख दे कोई दुनिया का खजाना मेरे आगे।
1: वाह,
0: और एक शरीफ देखिए सर के, जिस दिन से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर,
1: क्या बात है, जिस दिन से
0: जिस दिन
1: समाया है
0: से
1: मेरे दिल में
0: समाया है
1: तेरा
0: मेरे
1: नूर।
0: दिल में तेरा नूर, अब नाक रगड़ता है उजाला मेरे आगे।
1: आह हाँ,
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह,
1: वाह
0: जिस दिन
1: वाह,
0: से समाया है मेरे दिल में तेरा नूर,
1: क्या कहना,
0: अब
1: रगड़ता
0: नाक
1: है
0: रगड़ता है
1: उजाला मेरे
0: उजाला
1: आगे।
0: मेरे आगे, ऐसा न हो आंखों से छलक जाए लहू फिर, ऐसा न हो आंखों से छलक जाए लहू
1: लहू
0: फिर,
1: फिर,
0: अब नाम ना लो उसका खुदारा मेरे आगे।
1: वाह वाह
0: आखिर में गजल के चंद अशआर और देख
1: जी,
0: लीजिए,
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: छोटी बहन में गजल है कि वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं,
1: वाह,
0: वैसे तो
1: वैसे तो
0: हम
1: हम
0: अक्सर
1: अक्सर
0: बातें
1: बातें
0: करते
1: करते हैं।
0: हैं, लेकिन सबसे छुपकर बातें करते हैं,
1: वाह वाह,
0: लेकिन सबसे छुपकर बातें करते हैं, आंखों से सुननी होंगी इनकी बातें,
1: आहा, आंखों से सुननी होंगी इनकी
0: आंखों से
1: बातें।
0: सुननी होंगी इनकी बातें, दीवाने चुप रहकर बातें करते हैं,
1: आहा, क्या बात है,
0: दीवाने चुप रहकर बातें करते
1: क्या
0: हैं।
1: कहने, वाह,
0: और इसे देखिए कि जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती,
1: क्या बात
0: जब
1: है,
0: वो
1: मुझसे रूठ के बात नहीं करती।
0: मुझसे रूठ के बात नहीं करती, उसके सारे जेवर बातें करते हैं,
1: आहा, क्या बात है,
0: उसके सारे जेवर
1: जेवर।
0: बातें करते हैं। और ये शेर भी देखिए कि काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा,
1: आहा, काश हमारा
0: काश हमारा
1: मेरा
0: भी
1: भी एक
0: एक
1: घर
0: घर
1: हो
0: हो
1: छोटा
0: छोटा
1: सा।
0: सा, वो देखो दो बेघर बातें करते हैं।
1: बहुत उम्दा है भाई, वाह वाह
0: बहुत
1: वाह, बहुत
0: शुक्रिया।
1: अच्छा शेर है, वो
0: काश
1: देखो,
0: हमारा भी एक घर हो छोटा सा, वो देखो दो बेघर बातें करते हैं, इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है,
1: वाह, क्या बात है, प्यास बुझाना
0: इंसानों की
1: मुश्किल है,
0: प्यास बुझाना मुश्किल है, दरिया झीलें सागर बातें करते हैं।
1: वाह, क्या बात है भाई,
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया। इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है, दरिया झीलें सागर बातें करते हैं, खामोशी का शोर बहुत है कमरे में,
1: हाँ, खामोशी का शोर बहुत है
0: खामोशी
1: कमरे
0: का
1: में,
0: शोर बहुत है कमरे
1: कमरे में।
0: में, आओ चलकर बाहर बातें करते हैं,
1: हाँ, क्या बात है, फिर बहुत बढ़िया,
0: खामोशी
1: वाह,
0: का शोर बहुत है कमरे में,
1: आओ,
0: खामोशी का शोर बहुत है कमरे में,
1: वाह,
0: आओ
1: आओ
0: चलकर
1: चलकर
0: बाहर
1: बातें,
0: बातें
1: वाह
0: करते
1: वाह
0: हैं।
1: वाह,
0: बहुत
1: बहुत उम्दा,
0: शुक्रिया।
1: क्या बात है। समय न भी आप
2: شاگرد

0: नजरें भटक रही हैं, मंजर बहक रहे हैं, आंखों में भर लिया था एक मैकदे को मैंने,
1: वाह
0: आंखों में भर लिया था
1: एक मैकदे को मैंने,
0: एक मैकदे को मैंने,
1: वाह
0: और
1: क्या
0: जाने सितमगरी की ये कौन सी है मंजिल,
1: बात है,
0: जाने सितमगरी की ये
1: ये
0: कौन
1: कौन
0: सी
1: सी
0: है
1: है
0: मंजिल,
1: मंजिल,
0: संजीदा कर दिया है एक मसखरे को मैंने,
1: क्या कहना, वाह
0: और मुद्दत हुई है लेकिन हैरान कर रखा है,
1: कर रखा
0: मुद्दत
1: है।
0: हुई है लेकिन हैरान कर रखा है, एक हादसे ने मुझको उस हादसे को मैंने,
1: वाह
0: एक हादसे ने मुझको उस हादसे को मैंने, बतौर खास शेर में ऐसा कि
1: जी,
0: अब यूं है दास्तां का मफहूम ढूंढता हूं,
1: अब यूं है दास्तां का मफ़ूम ढूंढता हूं,
0: अब यूं है दास्तां का मफहूम
1: मफ़ूम
0: ढूंढता
1: ढूंढता
0: हूं,
1: हूं,
0: मरकज समझ लिया था एक हाशिए को मैंने,
1: क्या बात है, क्या
0: अब
1: बात
0: यूं
1: है,
0: है दास्तां का मफहूम ढूंढता हूं,
1: वाह
0: मरकज समझ लिया था एक हाशिए
1: हाशिए,
0: को मैंने,
1: वाह
0: ए काश आज अपना मैं अक्स देख पाऊं। और मकता भी आप मुलाहिजा फरमाए, अर्ज करता
1: इंशा
0: हूं
1: अल्लाह,
0: कि पहले तो रास्ते को तय कर लिया है खालिद,
1: पहले तो
0: पहले तो
1: रास्ते को
0: रास्ते
1: तय कर
0: कर
1: लिया
0: लिया
1: है
0: है,
1: खालिद,
0: पहले तो रास्ते को तय कर लिया है खालिद, देखा है पीछे मुड़ के फिर फासले को मैंने,
1: अच्छा है,
0: वाह
1: वाह बहुत अच्छा
0: देखा
1: है,
0: है पीछे मुड़ के फिर
1: फिर फासले
0: फासले
1: को
0: को मैंने।
1: मैंने,
0: बहुत इनायत, एक
1: वाह
0: और
1: वाह वाह
0: ताजा गजल ही है
1: जी
0: ये,
1: इंशा
0: इसका
1: अल्लाह,
0: मतलब मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि अपने चेहरे को कभी यूं भी नुमाया रखा,
1: अपने चेहरे को कभी यूं भी
0: यूं
1: नुमाया
0: भी अपने
1: नुमाया
0: चेहरे
1: रखा,
0: को कभी यूं
1: यूं
0: भी
1: भी
0: नुमाया
1: नुमाया रखा,
0: रखा, आईना तोड़ दिया अक्स परेशान रखा,
1: क्या बात है, वाह वाह
0: अपने
1: अच्छा शेर है,
0: अपने
1: अच्छा शेर है, आई
0: चेहरे को कभी यूं भी नुमाया
1: क्या
0: रखा,
1: खूबसूरत
0: आईना
1: मतलब
0: तोड़
1: है,
0: दिया,
1: वाह
0: आईना तोड़ दिया अक्स परेशान
1: परेशान रखा,
0: रखा।
1: वाह
0: और बतौर खास ये शेर देखें कि
1: इंशाअल्लाह,
0: पारसाई का नया दौर नया तर्ज अमल,
1: पारसाई
0: पारसाई
1: का
0: का
1: नया
0: नया
1: दौर
0: दौर
1: नया
0: नया
1: तर्ज
0: तर्ज
1: अमल,
0: अमल, पारसाई का नया दौर नया तर्ज अमल, आंख पर्दे में रखी जहन को उरियां रखा,
1: अच्छा है,
0: आंख
1: वाह
0: पर्दे में रखी
1: जहन को उरिया
0: जहन
1: रख,
0: को उरियां रखा,
1: वाह वाह वाह
0: और ख्वाब ताबीर से इस तरह बचाया हमने, ख्वाब ताबीर से इस तरह बचाया
1: बचाया
0: हमने,
1: हमने,
0: जैसे एक जिस्म को साए से गुरेजा रखा,
1: वाह को
0: जैसे एक जिस्म को
1: साए से
0: साए से
1: गुरेजा
0: गुरेजा
1: गुरेजा
0: रखा।
1: रखा,
0: और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए, अर्ज करता हूं कि काश उनवान बदल देने से बदले तासीर,
1: काश उनवान बदल देने से
0: काश
1: बदले तासीर,
0: उनवान बदल देने से
1: से बदले
0: बदले तासीर,
1: तासीर,
0: नाम मुश्किल का यही सोच के आसान रखा,
1: वाह
0: काश उनवान बदल देने से बदले तासीर, नाम मुश्किल का यही
1: सोच
0: सोच के
1: के आसान
0: आसान रखा,
1: रखा,
0: और
1: वाह
0: उसने एक बार पुकारा था मुझे नाम के साथ,
1: क्या बात है,
0: सर उसने एक बार पुकारा था मुझे
1: मुझे नाम
0: नाम
1: के
0: के
1: साथ,
0: साथ, मुद्दतों खुद को इसी बात पे नाजा रखा,
1: हाँ हाँ वाह
0: मुद्दतों
1: वाह
0: खुद को इसी बात पे नाजा
1: नाजा रखा,
0: रखा, और आज हर शख्स खुदा होने लगा है खालिद,
1: हाँ
0: आज हर शख्स खुदा होने लगा
1: लगा
0: है
1: है
0: खालिद,
1: खालिद,
0: हमने हर हाल में खुद को मगर इंसान रखा,
1: वाह वाह वाह
0: हमने हर
1: क्या
0: हाल में खुद
1: कहने,
0: को मगर इंसान रखा।
1: वाह वाह जी
0: एक और गजल से कुछ शेर
1: जी
0: मुलाहिजा और करें,
1: इरशाद इरशाद,
0: बस करता हूं कि गम भी शर्मिंदगी में डूब गए,
1: गम भी
0: गम भी
1: शर्मिंदगी
0: शर्मिंदगी
1: में
0: में
1: डूब
0: डूब गए, गम
1: गए,
0: भी शर्मिंदगी में डूब गए, जब भी हम महकशी में डूब गए,
1: जब
0: गम भी शर्मिंदगी में डूब गए,
1: भी हम महकशी में
0: जब भी
1: डूब
0: हम
1: गए,
0: महकशी में डूब गए, मौत ने ये कहा करीब आकर आप तो जिंदगी में डूब गए,
1: वाह
0: मौत ने ये कहा करीब आकर
1: आप तो
0: आप
1: जिंदगी
0: तो
1: में डूब
0: जिंदगी में डूब गए,
1: गए,
0: ना खुदा कितने ही सफीने तो तेरी मौजूदगी में डूब गए,
1: हाँ
0: ना खुदा कितने
1: कितने
0: ही
1: तो
0: सफीने
1: सफीने तो
0: तो
1: तेरी
0: तेरी
1: मौजूदगी
0: मौजूदगी में
1: में डूब,
0: डूब गए,
1: वाह वाह वाह अच्छा,
0: तेरी
1: वाह
0: मौजूदगी में डूब गए, और चांद का दाग देखते कैसे हम तो बस चांदनी में डूब गए,
1: वाह
0: चांद का दाग देखते कैसे हम तो बस चांदनी में डूब गए, मैंने देखे हैं ऐसे मंजर भी, सर देखें कि मैंने
1: मैंने
0: देखे
1: देखे हैं ऐसे
0: हैं
1: मंजर
0: ऐसे
1: भी,
0: मंजर भी, खुद शनावर नदी में डूब गए,
1: वाह अच्छा
0: खुद
1: है,
0: शनावर नदी में डूब गए,
1: वाह
0: और शागर भाई अपने

0: गम भुला के खालिद,
1: हाँ
0: अपने 100 गम भुला के
1: अरे
0: खालिद,
1: खाली
0: हम तेरी ये खुशी में डूब गए।
2: वाह
1: वाह वाह,
0: हम
1: बहुत
0: तेरी
1: अच्छा,
0: ये खुशी में डूब गए।
2: हम तेरी ये खुशी में डूब गए।
0: खुशी
2: वाह
0: का जवाब नहीं है।
1: वाह
0: और समाइन, अब मैं एक ऐसी शायरा को दावा देने जा रहा हूँ जिनकी सरपरस्ती हम जैसे नौजवान शायरों को हासिल है। गौना मश्क शायरा मोहतरमा इफ़्ज़रनी साहिबा, आपके हुजूर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की खिदमत में एक नज़्म पेश करूं।
3: जी
2: समाज
3: नहीं,
2: फरमाए, नज्म का उनवान है फनकारी जिंदगी।
3: वाह
2: मैं एक फनकारी जिंदगी हूं, मेरे ख्यालों में कितनी ख्वाबीदा आरजुएं मचल रही हैं। मैं एक फनकारी जिंदगी हूं, मेरे ख्यालों में कितनी ख्वाबीदा आरजुएं मचल रही हैं। मैं सोचती हूं इन्हें जगाकर हकीकतों का नगर बसा दूं। मैं सोचती हूँ इन्हें बचाकर हकीकतों का नगर बसा दूं। तुलुए खुर्शीदे आरजू से शबे अलम का फुसू मिटा दूं।
3: वाह
2: तुलुए खुर्शीदे आरजू से शबे अलम का फुसू मिटा दूं। मैं सोचती हूँ अगर इसारे तजस्सुसो तशनगी से बाहर जरा भी मैंने कदम निकाला। मैं सोचती हूँ अगर इसारे तजस्सुसो तशनगी से बाहर जरा भी मैंने कदम निकाला, कोई धमाका जरूर होगा, कोई धमाका जरूर होगा जो मेरे सपनों के कसरे जर्री को दफतन सरनगू बनाकर मुझे रुलाकर गमे जहां के मुहीब गारों में फेंक देगा। गमे जहां के मुहीब गारों में फेंक देगा। मैं सोचती हूँ कि मुझसे फनकारी जिंदगी पर किसी ने संगे मलाल फेंका तो टूट कर चूर चूर होगा वो शीशे रब्ते शौक जिसमें जमाले खुर्शीद देखती हूँ, सहर की तमहीद देखती हूँ।
0: वाह
2: यही तसलसुल तो मेरा गम है,
3: वाह
2: यही तसलसुल तो मेरा गम है, यही शौक तशनगी है, यही तसलसुल तो मेरा गम है, यही मेरा शौक तशनगी है। मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरे ताबा खुलूस दिल से यकीन दिला दे। मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरे ताबा खुलूस दिल से यकीन
3: यकीन
2: दिला
3: दिला
2: दे,
3: दे।
2: कभी न तोड़ेगा नूरे पैहम के सिलसिलों को, कभी न तोड़ेगा नूरे पैहम के सिलसिलों को, तो मैं भी ठुकरा के जुल्मतों को, हिकारतों को, सऊबतों को, तो मैं भी ठुकरा के जुल्मतों को, हिकारतों को, सऊबतों को, समेट कर अपने जिस्म जा की तमाम पाकीज़ा तर अमानत उभरते सूरज को सौंप दूंगी।
3: क्या बात है, क्या कहने, वाह वाह वाह,
2: शुक्रिया।
3: वाह
2: अब एक गजल तरन्नुम से समात फरमा लीजिए।
3: जी जी जी शादी
2: समाते मतला पेश खिदमत है।

0: निकले।
1: हाँ हाँ हाँ क्या बात है।
0: हम जो ओ हुए
2: एहसास की
0: चादर निकले,
1: क्या बात,
0: जिनको इंसान समझते थे वो पत्थर
2: निकले, क्या कहने, वाह,
0: जिनको इंसान समझते थे वो पत्थर निकले। और शेर समाज फरमाए,
2: जी अच्छा,

0: क्या बात है, यही
1: कहीं
0: लग
1: घर निकले और
0: रहा
1: मकसद मत फरमा ले
0: जी। अच्छा
1: उनके

0: हाँ
1: हाँ
0: वाह वाह वाह। उनके
1: वाह वाह
0: चेहरे
1: वाह, नजर आए हैं
0: धुंधले जर्री,
1: धुंधले जरी,
0: क्या बात।
1: आईना खानों से जो लोग समर कर निकले।
0: वाह
1: क्या
0: वाह वाह वाह
1: कहना,
0: वाह,
1: आईना खानों
0: जो
1: से
0: लोग संवर कर
1: जो
0: निकले, वाह
1: लोग संवर कर निकले,
0: वाह
1: हम
0: वाह,
1: जोड़े हुए एहसास।

0: यानी परवरदिगार है कोई,
1: हाँ, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: आसमानों के पार है कोई,
1: यानी
0: यानी
1: परवरदिगार है
0: परवरदिगार है
1: कोई।
0: कोई, यानी परवरदिगार है कोई। और शेर समाज फरमाए, वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता,
2: वो तुम्हें क्यों नजर
0: वो
2: नहीं
0: तुम्हें
2: आता।
0: क्यों नजर नहीं आता, मेरे सर पर सवार है कोई,
1: हाँ, वाह वाह वाह,
0: वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता,
2: मेरे सर पर सवार है कोई,
0: मेरे सर पर सवार है कोई। और शेर समाज फरमाए, एक चादर मिली है यादों की,
1: एक
2: एक
1: चादर
2: चादर
1: मिली है
2: मिली है यादों की,
0: एक चादर मिली है यादों की, दिल में देखें मजार है कोई,
1: हाँ, वाह वाह वाह
0: एक
1: वाह,
0: चादर मिली है यादों की,
1: क्या बात है सर, वाह वाह
0: दिल
1: वाह,
0: में देखें मजार
1: मजार है
0: है
1: कोई।
0: कोई। और ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ उसको,
2: ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ
0: ढूंढता
2: उसको,
0: हूँ कहाँ कहाँ उसको, मेरे अंदर फरार है
1: क्या
0: कोई,
1: बात है,
2: वाह
0: मेरे
1: बहुत
0: अंदर
1: भरोसा भरा,
0: फरार
1: वाह
0: है
1: वाह
0: कोई।
1: वाह वाह,
0: और देखें कि मीरो गालिब की बात करते हो,
2: मीरो गालिब की बात करते हो,
0: मीरो
2: गालिब की बात
0: गालिब की
2: करते
0: बात
2: हो,
0: करते हो, शायरी है के बार है कोई,
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: शायरी है
1: के बार
0: के
1: है,
0: बार है
2: वाह
0: कोई,
2: वाह,
0: आसमानों के पार है कोई,
3: यानी
0: यानी
1: परवरदिगार
0: परवरदिगार है
1: है,
0: कोई।
1: बहुत उम्दा
3: वाह
1: है,
3: वाह वाह,
1: बहुत उम्दा
0: और
1: कलाम,
0: भाई गजल के और कुछ ही सुनाते हैं,
1: इरशाद
0: सुना फरमाए कि
1: इरशाद सर,
0: देखिए, गजल के इस्तियारे हो गए हैं,
1: गजल के इस्तियारे हो गए
2: गजल के
1: हैं,
2: इश्तियारे हो गए हैं,
0: बहुत रोशन सितारे हो गए
1: वाह
0: हैं,
1: वाह वाह, बहुत उम्दा है सर, वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: रोशन सितारे हो गए हैं, इधर तुम हो उधर दुनिया है सारी,
1: इधर तुम हो
2: इधर
1: उधर
2: तुम हो
1: दुनिया है
2: उधर
1: सारी,
2: दुनिया है
0: इधर
2: सारी,
0: तुम हो उधर दुनिया
1: दुनिया है
0: है सारी,
1: सारी,
0: समंदर दो किनारे हो गए
1: क्या
0: हैं,
1: बात है, क्या बात है,
0: समंदर दो किनारे हो गए हैं। और शेर समाज फरमाए, चरागों की यहाँ बाजी लगी है,
1: चरागों की यहाँ बाजी लगी है,
0: चरागों की यहाँ बाजी लगी है, वहाँ जुगनू भी तारे हो गए
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ हाँ वाह वाह वाह
0: वहाँ
1: वाह वाह
0: जुगनू
1: वाह,
0: भी तारे हो गए
1: क्या
0: हैं।
1: कमाल के अशआर है सर,
0: और
1: वाह वाह
0: शेर
1: वाह,
0: देखें कि मोहब्बत का यही दस्तूर है तो,
1: मोहब्बत का
2: मोहब्बत का यही
0: यही
2: दस्तूर है
0: दस्तूर
2: तो,
0: है तो, चलो हम भी तुम्हारे हो गए हैं,
1: क्या बात है, क्या
0: चलो
1: बात है,
0: हम
1: वाह
0: भी
1: वाह वाह
0: तुम्हारे हो गए हैं,
3: वाह,
0: और चलो कुछ देर उसको याद कर लें,
2: चलो
0: चलो
2: कुछ देर उसको याद कर लें,
0: गुनाह वैसे तो सारे हो गए हैं,
1: हाँ, क्या बात है, क्या
0: गुनाह वैसे तो सारे हो गए। लेकिन भाई के आंखों से कई सूरज वो रोज उगाता है,
1: आंखों
3: से कई सूरज वो
2: आंखों
3: रोज
2: से कई
3: उगाता
2: सूरज
3: है,
0: वो रोज उगाता है, एक शख्स उजालों की तस्वीर बनाता है,
1: क्या बात है, क्या
3: वाह
1: अहम
0: वाह,
1: चीज
0: आंखों
1: पढ़ी
0: से
1: आप,
0: कई सूरज
3: वो रोज
0: वो
3: उगाता
0: रोज उगाता
1: है, वाह
0: है,
1: सर, वाह वाह, लोगों की
0: एक
2: तस्वीर
0: शख्स
2: बनाता है,
0: उजालों की तस्वीर बनाता
3: क्या
0: है,
3: कहने सर, वाह,
0: और इन झील सी आंखों में एक और समंदर है, इन झील सी आंखों में एक
2: एक
0: और
2: और
0: समंदर
2: समंदर
0: है,
2: है,
0: ठहरी हुई कश्ती को जो पार लगाता
1: क्या
0: है,
1: बात है,
3: क्या बात,
0: ठहरी हुई कश्ती को
3: जो
0: जो
3: पार
0: पार
3: लगाता
0: लगाता है।
3: है,
0: मुझे समाज फरमाया कि खुलता है कहाँ सब पर
1: वाह,
0: असरार मोहब्बत का,
1: क्या बात है,
3: वाह,
0: खुलता है कहाँ सब पर असरार
2: असरार
0: मोहब्बत
1: मोहब्बत
0: का,
1: का,
0: आईना कहाँ सबको वो रोज दिखाता है,
1: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: आईना कहाँ सबको
3: वो रोज
0: वो
3: दिखाता है,
0: रोज दिखाता है। और देखें कि कोई भी नहीं होता
1: कोई भी नहीं
3: वाह,
1: होता,
0: रातों की स्याही में,
1: आहा,
0: कोई भी नहीं होता
3: रातों की स्याही में,
0: रातों की स्याही में, इन भीगे चरागों को फिर कौन जलाता
1: क्या
0: है,
1: बात है, वाह वाह वाह
0: इन
3: वाह,
0: भीगे चरागों को
2: फिर
3: फिर
2: कौन
3: कौन
2: जलाता है,
3: जलाता है,
0: आंखों से कई सूरज
3: वो रोज
0: वो
3: उगाता है,
0: रोज उगाता है, एक
3: शख्स,
0: शख्स उजालों की तस्वीर बनाता है,
1: क्या
3: क्या
1: बात
3: कहने
1: है,
3: सर, वाह वाह वाह,
1: सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे जनाबे मुनीर हमदम साहब से उनकी बेहतरीन शायरी, आज के आकाशवाणी के इस मुशायरा प्रोग्राम में जो शोरा हज़रात जिन्होंने शिरकत की, उनके अस्माए ग्रामी एक बार फिर मैं आप तक पहुंचा दूं, जनाब शाकिर दहलवी साहब, मैं खालिद अखलाक, मोहतरमा इफ्फत जर्री साहिबा और जनाब मुनीर हमदम साहब ने अपने कलाम पेश किया, इसी के साथ एक मुशायरा इख्तिताम पज़ीर होता है।
4: सामीन, अभी आप मुशायरे से लुत्फ ले रहे थे, निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब खालिद अखलाक। अब अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा।

حافظ. श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। रात्रि के 8:30 होने को हैं। समय हो गया है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है अभिजीत ने।

0: अभिजीत की आवाज में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और अब सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आ अब लौट चले से, और इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत, शब्बीर कुमार और साथियों ने। तो लीजिए सुनते हैं अगला गीत।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूं।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म आ अब लौट चले से, और इस गीत को आवाज दी थी कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत, शब्बीर कुमार और साथियों ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।

0: रात्रि के 8:30 होने को हैं, अब 8:45 होने को हैं। आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, 9:30 पर आप सुन सकते हैं अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। 8:45 होने को है, प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक

0: पीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है।

बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।

0: हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा, मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई। भारत के

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना Tier 2 और Tier 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक

0: रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders.

0: developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: Lauding the diverse workforce at the plants, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
0: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है
3: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28 फरवरी द सेकंड प्लांट ऑन 31 मार्च एंड टुडे ऑन 4 जुलाई द थर्ड प्लांट गिवन द स्पीड विद विच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 out of those 12 plants अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे
2: आज दुनिया भर में भारत की कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है
0: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachupadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto,

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवियत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निजाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
1: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
0: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल

मकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपए

0: अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों के बरामदात में इजाफे, अंदरूने मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुज़श्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने किल्लत का इज़ाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदामात किए जाएं। जराए ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का यह चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसूल दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकतदारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वजीर आजम का वहां आबाद भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमे से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी वजीर आजम के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतही रबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़राअत, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वें यौम आजादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरका एतमाद पर मबनी है। सनअती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातोंरात मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोचा समझा मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुंबई, थाने और

0: मेरा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है।

0: मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है। यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहां से जाकर भी यहां से अलग नहीं होगे। यहां की वायु, यहां के मेघ और यहां के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
2: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है। यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
0: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही, पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत

0: रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गईं, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, वो बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी ही अगर प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय भी मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का, सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे। और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले

0: 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशर्फ भी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी, जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर, राष्ट्र के हितकर। वार्ताकार हैं।

0: हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
1: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
2: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
1: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्यकृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हाँ भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी, और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे, जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है। मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया।

0: है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी। अपने समय का सूर्य हूं मैं, जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमाशंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यही विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी, उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata,

Mama, get it,

0: खयाल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द खयाल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal followed by Drut Ek Tal.

0: आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: खयाल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द खयाल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि

0: देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1

0: और जैसे कि आपको भी बताया कि आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ चैनल पर, और मैं हूं आज तलत आपके साथ और हम सबके साथ हैं अमित।
1: जी हाँ तलत, अभी जो गीत हमने बहुत खूबसूरत सुना उसको सुनकर मेरे मन में एक बहुत अच्छा सा ख्याल आता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने का, भावनाओं को जो कहते हैं ना कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का बहुत सुंदर माध्यम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ख्यालात की तर्जुमानी अगर मैं कहूँ इसे अगर उर्दू जबान में तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कभी आपका मूड अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी ये दिल चाहता है कि कुछ गमगीन गाने सुने, और
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आपने जुबान

0: की बात कही, क्योंकि जुबां तो कोई भी उसकी शब्दावली, कोई भी उसकी वर्णमाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन जुबां के अंदर भी एक भावना होती है, और वो भावना को समझने के लिए जुबां की जरूरत नहीं, वो दिल की भी जरूरत है। आप चाहे उर्दू में बात करें, चाहे वो रशिया में बात करें, चाहे वो अंग्रेजी में बात करें, या दुनिया की किसी भी भाषा में बात करें, हिब्रू में बात करें, लेकिन भावनाओं से ज्यादा उसको व्यक्त करते समय जो भावनाएं आती है उसका एक अलग ही होता है। कई बार आपने देखा या सुना होगा कि कुछ अंग्रेजी गाने या कुछ अन्य भाषाओं के गाने हैं, वो आपको उसके बोल समझ में ना आए, लेकिन उसकी भावनाएं जरूर समझ में आ
1: जी,
0: जाती है।
1: एहसास जो है वो जिंदा रहना चाहिए। और वो एक गीत है, बहुत खूबसूरत सा गीत है, उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जबाने यार मन तुर्की, यानी कि भले ही जबान जो है यार की वो तुर्की जबान जो है समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो उसकी मोहब्बत है, जो उसका एहसास है, उसका जो मुटफर है, वो आप फील कर पा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसा ही एक जबरदस्त धमाकेदार गीत हम लेकर,
0: हाँ मुझे लग भी रहा था कुछ धमाकेदार गीत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तो तलत कितना अद्भुत है ना कि एक संगीत जो है वो गीत जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका एहसास हमारे साथ काफी देर तक रहता है और एक लंबे समय तक रहता है, और हमें किसी ना किसी की यादों से या किसी बचपन की यादों से या किसी कहते हैं ना किसी प्रेम की यादों से जरूर जोड़ देता है। आपका क्या ख्याल है?
2: बिल्कुल, ये कनेक्शन ही होता है, और आप उसी हिसाब से जिस हिसाब से आपका मूड होता है, जिस हिसाब से आपके उस वक्त ख्याल होते हैं, आप वैसा ही संगीत सुनते हैं। और कभी कभी हमें ऐसा भी हो जाता है, और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर मूड थोड़ा सा डाउन है लेकिन मैंने कोई अच्छा सा संगीत सुन लिया है, कोई अच्छे से गीत सुन लिया है, तो मेरा मूड एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और तलत कहते हैं कि शब्द वहां रुक जाते हैं जहां संगीत शुरू होता है, क्योंकि संगीत केवल सुनाई नहीं देता, वो महसूस भी किया जाता है दिल की गहराइयों से, मन से, आत्मा से। और संगीत अक्सर हमें उन ख्यालों में ले जाता है जो अतीत में हमारे साथ किसी अच्छे या किसी बुरे एहसास को भी जोड़ते हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि किसी गीत को याद आया तो किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे अपने हर दिल अजीज की याद आ गई जो शायद कभी ना कभी हमारे दिल के बहुत करीब और बेहद करीब था।
2: बिल्कुल, जब साज की जो तरंगे हैं और जो उसका रिदम है, जब वो आपके दिल के रिदम के हिसाब से बजने लगता है और उसके हिसाब से वो बहने लगता है, तो आपका दिल जो है वो उसी हिसाब से धड़कने भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है।
1: तो मुझे लेकिन उसके साथ साथ ये भी लगता है कि श्रोताओं को जो है वो बेसब्री से अगले गीत का भी इंतजार होगा, उसके बारे में क्या ख्याल
2: है? बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल की धड़कने तो उनकी भी तेज होंगी, क्योंकि हमारी तो तेज है ही आपको, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में मिल रहे हैं और आपसे मुलाकात हो रही है, ये हम दोनों की खुशनसीबी है।
1: बिल्कुल।

0: तो तलत, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनवाया हमारे हमारे श्रोताओं को। लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी सी बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसे हम अक्सर शब्दों में बयां नहीं करते, और उसको बयां करने के लिए हम अक्सर संगीत का सहारा लेते हैं। आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात में ना एक मजेदार बात भी है,
0: बिल्कुल
1: अमित, के अक्सर ऐसा देखा गया है, क्योंकि मैं तो फीमेल हूँ तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लोग बड़े बड़े खत लिखने के बजाय एक छोटे से गीत का कोई एक मुखड़ा गा दिया, कोई एक लाइन गा दी, तो उसका असर ज्यादा पड़ता है बनिस्बत इसके कि वो लंबा सा चिट्ठा लिखा जाए। और बाकी आप एक मेल पर्सन है तो आप बताइए आपके लिए कौन सी सहूलत।
0: मुझे लगता है कि प्रेम संबंधों को इजहार करने के लिए कई बार गीतों का एक अलग अलग तरीके से सहारा भी लिया जाता है। अक्सर जो है कहते हैं कि पुरानी कविताओं को भी तोड़ मरोड़ कर कुछ जो आशिक है वो उसको बयां करते हैं अपने अंदाज में।
1: तो इत्तेफाक मैं कहूंगी या फिर ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं एरा मिलता ही है आपका और हमारा, तो औरा भी मिल गया है एरा के साथ साथ, तो हम दोनों ही एक ही बात पे मुत्तफिक हैं, हम दोनों एक
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: की एक ही राय है।
0: मुझे लगता है कि अब श्रोताओं के संदेशों को भी कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए, लगातार श्रोताओं के संदेश बढ़ते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता जिसमें अमित आपका जिक्र ज्यादा है, मैं इस बारे में कहूंगी, वो कविता हम तक पहुंची है और ये हमारे पास आया है संगरूर पंजाब से। लिखने वाले हैं सुनील कुमार गुंद और शुचिता नैनीश गुंद, और आप कहते हैं कि आज की रेडियो दोस्त हैं तलत, जिनकी उर्दू जुबान ने कर दिए हैं गम गलत, क्या खूब बतियाते हैं हिंदी में आरजे अमित, उनकी पुरखलूस जुबान गमों को सीमित कर देती है। ये दोनों ही हैं ऑल इंडिया रेडियो के हीरे, गूंजते हैं इनके बोल बेशक ये बोलें धीरे धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी कविता लिखने के लिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बयां किया है अपने दिल की बात को, जिसे कहते हैं ना कि अपने दिल की बात को बयां करने के लिए कविता या फिर गीत वो बहुत बेहतरीन माध्यम होता है, और यही माध्यम जो है ये एक सुंदर प्रस्तुति है।
1: जी
0: तो अगली जो फरमाइश हमें आई है जसपुर उत्तराखंड से, आदाब नमस्कार लिखते हैं, और साथ है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, मोहम्मद रिहान, समरीन, माहिरा नूरा।
1: और अगला मैसेज जो हमारे पास है, और अमित पता है आपको जो सबसे अजीब बात हो जाती है वो हमारे साथ ये हो जाती है कि एक ही शख्स इतने ज्यादा मैसेजेस कर देते हैं कि जो एक बार करते हैं ना मैसेज उनका फिर कहीं छुप सा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला संदेश जो है वो ले लेते हैं, लिखते हैं तलत साहिबा जी, अमित जी नमस्कार, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से इनका संदेश हमें मिला है, और ये पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से हैं। इनके साथ है बवलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश के लिए संदेश भेजने का।
1: और हमारे पास अगला मैसेज आया है खंडवा से, लिखने वाले हैं अब्दुल गफ्फार और अब्दुल हक जियाउल हक डाबर, और छत्तीसगढ़ से आए हैं सोहन जोशी जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है अनिल मोहन जी का, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, साथ ही उषा मोहन, टिल्लू और मधु भी संदेश में शामिल हैं, और इन्होंने एनी सॉन्ग की फरमाइश की है कि कोई भी

0: इनको सुनवा दीजिए अगला संदेश।
1: तो अब देखिए अमित, हम तो यहाँ पर बैठे हैं अपने श्रोताओं की, अपने दोस्तों की फरमाइशें पूरी करने के लिए, लेकिन जब ये वाली बात आ जाती है ना कि आप अपनी पसंद से कोई गीत सुनवा दीजिए, तो दिल जरा और खुश हो जाता है।
0: तो अगला गीत
1: हमारी पसंद का।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश, मेरे यानी अमित और तलत के साथ। और तलत, इस गीत को सुनने के बाद अभी मेरे मन में कुछ ख्याल आया कि संगीत की एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये भी होती है कि वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। भाषा बदल सकती है, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन जो सुर होता है वो सीधे दिल से दिल तक पहुंचते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और दिल से दिल को राह होती है, जो एक दिल में बात होती है वही दूसरे दिल तक पहुंच भी पाती है, वही रास्ता भी बनते हैं। और अगर रास्ता इतना सुरीला हो अमित, तो सफर जो है ना वो बहुत खूबसूरत और मजेदार हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी के साथ श्रोताओं के संदेश भी हमें शामिल करने चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के संदेश जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शामिल करते हैं उनको भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो सफर है ना हमारा संगीत में सफर, वो अब यहाँ तक पहुंच चुका है अमित की 11:40 बस होने में एक ही मिनट बाकी है। और बिल्कुल हमें मैसेजेस अब ले लेने चाहिए। हमारे पास मसरूर हसन का मैसेज आया है सहारनपुर से, आपके साथ हैं शाइना हसन और किशन सपकाल हमें मैसेज कर रहे हैं। शंकर लाल जायसवाल ने हमें मैसेज किया है और आपने की है गीत की फरमाइश। उम्मीद है आप प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो आपकी फरमाइश आप जरूर सुन पाएंगे। हिमकेश्वर साहू ने हमें मैसेज किया है छत्तीसगढ़ भाटा पारा से, और इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है सतीश अनेजा का, और सोनू विश्वकर्मा ने भी हमें मध्य प्रदेश मालवा से मैसेज कर दिया है। राखी वर्मा का मैसेज आ चुका है हमारे पास अमित।
0: बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही साथ हमारे पास संदेश है अहमद फूल वाले का, और अक्रम हुसैन प्रिंस, इन्होंने भी संदेश हमें भेजा है। मोहम्मद कमर का संदेश हमें मिला है, और साथ ही संजय साहू
1: पोटिया कला।
0: सुदर्शन मुखी का संदेश हमें मिला है, राखी वर्मा, किशन सकपाल का संदेश हमें मिला है, और अनिल मोहन का संदेश हमें मिला है, रियासत हुसैन का संदेश हमें मिला है, राजकुमार डुड्डी का संदेश हमें मिला है, और दिलावर खान, विजय चौहान, हाजी मजहर का संदेश हमें मिला है। संदेश लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मीरा सिंह, बुधराज खोरवाल का संदेश भी हमें आ चुका है, बसंत कुमार सिन्हा, इन्होंने भी संदेश हमें भेजा है।
1: और अब संदेश मुझे लगता है बहुत सारी फरमाइशों के हो गए, सुनते हैं एक बहुत ही बेहतरीन गीत
0: जी।

0: तो तलत, आज की जो संगीतमय यात्रा जो हमारी चल रही है फिल्म संगीत की, आपकी फरमाइश की, इसमें हमें महसूस हो रहा है कि गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारे जीवन की यादों, रिश्तों और भावनाओं की वो साथी है जो हमें कहीं ना कहीं लगातार एक दूसरे से जोड़े रखती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है अमित कि जिससे मैं आपको बताऊं कि बचपन में मेरा एक गीत होता था और एक गीत मेरी छोटी बहन का होता था, तो हम दोनों का ये टाइप था कि तुम मेरा गीत नहीं गाओगी और मैं तुम्हारा गीत नहीं गाऊंगी। लेकिन कभी कभार एक दूसरे को छेड़ने के लिए, या फिर अगर उसने ज्यादा अच्छे से वो गाना गा दिया है तो मैं भी उसके साथ गाने लगती थी, तो वो और मैं एक दूसरे को पंच

0: गाते थे, जब वो मेरा गाना गाती थी या मैं उसका गाना गाती थी, और हम सच में फिर वो पंच जो था ना वो लड़ाई में बदल जाता था।
1: खैर ये तो लेकिन बचपन की बात हुई, लेकिन सच्चाई इससे बहुत ही अलग है, क्योंकि संगीत की बहुत बड़ी खूबी ये भी होती है कि वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता, और जो टूटे हुए दिल है उनको तो जोड़ ही देता है, साथ ही रिश्तों में जो खटास होती है उसको भी दूर करके एक दूसरे को एक दूसरे के करीब ले आता है, क्योंकि भाषा बदल सकती है, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन जो सुर होता है, जो दिल की जो सुर में जो भावनाएं होती है वो कभी नहीं बदल सकती है।
0: बिल्कुल, खटास को मिठास में बदल देना वो संगीत का ही काम है, और बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत नजाकत के साथ और बहुत प्यारे अंदाज में वो इस मजे को जो है ना वो बदल देता है।
1: तो मुझे लगता है कि इस प्यारे प्यारे अंदाज के साथ प्यारे प्यारे जो संदेश हैं जो हमारे श्रोता लगातार हमें भेजे जा रहे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, और अगला संदेश आप बताइए किनका आया है।
0: अगला मैसेज हमारे पास आया है एटा से, और लिखने वाले हैं नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ, सुहेल हसन और रशीद वारसी। कदवई नगर सिद्धापुरा से हमें जुबैर अली खान मैसेज कर रहे हैं,
1: और राखी वर्मा का संदेश हमें मिला है साथ ही साथ।
0: और आपकी गीत की फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है राखी, हम बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके गीत जरूर।
1: उषा मोहन का संदेश हमें मिला था,
0: और इसके साथ उषा मोहन जो हैं वो कह रही हैं कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी।
1: वो लिख रही हैं कि नमस्कार अमित कुमार जी, तलत जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई स्वीकार करें।
0: और आप हमें दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे पास
1: नवी हसन का संदेश हमें मिला है
0: जी। नवी हसन, देखिए अभी अमित मैं आपसे यही कह रही थी ना कि हमारे साथ ये परेशानी हो जाती है कि एक ही शख्स कई बार मैसेज कर देता है और फिर जो और लोग हैं वो रह जाते
1: हैं। तो साथ ही साथ रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू का संदेश हमें मिला है,
0: और नाम लड्डू है तो मुंह में मिठास तो घुल ही गई है ये नाम लेते ही, लेकिन ये मैसेज जरा शिकायत भरा है। तो शिकायत आपकी हो गई है अब दूर, तो सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हुजूर।

0: और चलत अगला संदेश हमें मिला है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से, बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर, कमरून निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी का। साथ ही साथ संदेश हमें मिला है मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही।
1: मैसेज हम तक पहुंचा है राजेश वर्मा का, आप हमें मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से मैसेज करें। आपके साथ हैं प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और मऊ से ही मैसेज है हमारे पास, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहो स्वर्णकार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है गांव फ्रांसी हिसार से, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद और पुष्पेंद्र का
1: जी। और आप भी कह रहे हैं कि किसी भी गीत में शामिल कर लें। अगला मैसेज है पलारी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा।
0: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप, साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा।
1: मैसेज हमारे पास अभी भी लगातार आ ही रहे हैं अमित, जल्दी से पढ़ना शुरू करें।
0: गांव हांडी खेड़ा से, जिला सिरसा से, राधेश्याम शर्मा, इंदिरा, सार्थक और सचिन का संदेश हमें मिला है।
1: और इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है हरजिंदर शिंदा जी का भी, आप हमें पंजाब से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं सीता और जसवीर जस्सी।
0: साथ ही बागपत उत्तर प्रदेश से संदेश मिला है संजय ढिंगिया, नमन और अपार का संदेश हमें मिला है।
1: मैसेज हमारे पास आया है कमल बिष्ट का और आप हमें दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं और आपने कहा है कि अपनी पसंद के किसी भी गीत में शामिल कर लें। तो जी बहुत सारे गीत हैं जो आप सभी की पसंद से हैं।
0: आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाहना और
1: शाइना
0: और मैंडी।
1: जी जी जी जी। और अमित, अब वक्त जो है वो ये कह रहा है कि आपसे विदा लेनी है, लेकिन जाते जाते एक मैसेज क्यों ना आप और पढ़ लें।
0: जी हाँ बिल्कुल, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, अंजलि और बाला साहब, इनका संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और मैसेज हमारे पास और भी बहुत से हैं, अगर कोई रह गया है तो हम माफी चाहते हैं कि आपका मैसेज हम नहीं पढ़
0: एक जाते जाते एक और संदेश पढ़ देते हैं। हमारा संदेश जो है पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम और आजाद अंसारी लिखते हैं, कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए।
1: और मैसेज हमने लगभग अपनी कोशिश पूरी की है अमित की, ले लिए जाए, सभी का नाम शामिल कर लिया जाए,
0: लेकिन समस्या ये आती है कि कई बार एक ही संदेश जो है वो लगातार 6-7 बार आ जाते हैं, तो संदेश को पढ़ना भी कई बार थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजेस हो जाता है, और संदेशों की भरमार इतनी है रहती है कि समय जो है वो बहुत कम होता है, सभी संदेशों को शामिल करना थोड़ा कठिन रहता है, एक चुनौती रहता है।
1: और अब वक्त जो है अमित वो इजाजत नहीं देता कि हम और बात करें, लेकिन हाँ गीत एक आखिरी जरूर सुनवा
0: बिल्कुल
1: सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत गीत होना चाहिए हमारे श्रोताओं के
1: बिल्कुल
0: लिए।
1: बिल्कुल। और जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल से

0: दिल तक, आपकी बात हम तक और हमारी बात आप तक।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वो रास्ता है, वो जरिया है हमारा ईमेल आईडी और आकाशवाणी। तो दोस्तों आप सुनते रहिए आकाशवाणी, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। फिलहाल तलत और अमित को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी है। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 12 बजे समाचार होंगे। आप 12 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत भारतीय सेना के 651 कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर पूरा कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 12:10 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, आपका अपना पसंदीदा संगीत कार्यक्रम, जहां हम हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कुछ ऐसे गीतकारों की बात करते हैं जिन्होंने शब्द नहीं बल्कि भावनाओं को आवाज दी, जिनके गीतों में प्रेम है, पीड़ा है, उम्मीद है, संघर्ष है और इंसानियत की खुशबू है। आज एक ऐसे ही संवेदनशील गीतकार को जिनकी कलम ने करोड़ों दिलों को छुआ, उनका नाम है संतोष आनंद। इन्होंने प्रेम, विरह, देशभक्ति और जीवन दर्शन को इतनी सहज भाषा में लिखा कि हर गीत आज लोगों की जुबान पर है।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और आज हम बात कर रहे हैं गीतकार संतोष आनंद की। श्रोताओ, संतोष आनंद का जन्म 5 मार्च 1939 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में हुआ था। बचपन से साहित्य और कविता में उनकी विशेष रुचि थी और वो दिलोजान से कविता और साहित्य में रुचि रखते थे। वो मंचों पर कविताएं पढ़ते थे। उनकी कविताओं में आम आदमी की भावनाएं होती थी और यही वजह रही कि उनकी रचनाएं लोगों के दिलों तक पहुंचती थी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और आज हम बात कर रहे हैं गीतकार संतोष आनंद की। श्रोताओं, संतोष आनंद का फिल्मों में आना एक सपना था और फिल्मों में आने का सपना आसान नहीं होता। कई सालों तक संघर्ष चला, निर्माताओं के दफ्तरों का चक्कर, इंतजार और लगातार रिजेक्शन, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। कहते हैं अगर शब्द दिल से निकलें तो मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात फिल्मी दुनिया के लोगों से हुई और धीरे धीरे किस्मत बदलनी शुरू हो गई।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं संतोष आनंद की और उनके गीतों की। और अभी जो गीत आपने सुना श्रोताओं, ये गीत आज भी भारतीय फिल्म संगीत की सबसे महान रचनाओं में गिना जाता है। फिल्म का नाम है शोर। 1972 में फिल्म आई थी। म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और सिंगर है इसमें लता मंगेशकर और मुकेश कुमार। और शब्द, जी हाँ, शब्द है संतोष आनंद के। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है और सिर्फ गीत नहीं, ये जीवन दर्शन है। आज भी ये गीत हर पीढ़ी गुनगुनाती है और यहीं से संतोष आनंद बड़े गीतकारों की कतार में शामिल हो गए। आपको सुनाते हैं उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत और उसके बाद बात करेंगे उस गीत के बारे में। बहुत ही टच कर जाता है जब इस तरह के गीत सुनते हैं और जब हमें पता चलता है कि वो वाकई ये गीत इन्होंने लिखा है। क्योंकि क्या है, हम सिंगर समझते हैं, फिल्मी किरदारों को समझते हैं, जो सुनते और देखते हैं उन्हें बहुत ही अपने पास पाते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे होते हैं, जो गीत लिखते हैं, उनको शायद हम उस शख्सियत में शुमार नहीं करते जो उनको मिलना चाहिए वो उदार नहीं देते हैं। तो ये गीत सुनिए, उसके बाद बात करेंगे इस गीत के बारे में और संतोष आनंद की उन कृतियों के बारे में जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करती हैं।

श्रोता, 1981 में ये फिल्म आई थी क्रांति। मनोज कुमार की इस ऐतिहासिक फिल्म में संतोष आनंद ने कई यादगार गीत लिखे थे। उनकी लेखनी में देशभक्ति भी थी, प्रेम भी और त्याग भी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, आज भी ये गाना हर शख्स की जुबान पे होता है। जब भी कहीं बजता है लोग गुनगुनाने लगते हैं। हर सांस्कृतिक आयोजन या किसी विशेष समारोह में ये गाना सुना जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे गीत हैं, बहुत सारे ऐसी रचनाएं हैं जो संतोष आनंद जी की याद दिलाते हैं। लेकिन हाँ, इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं, जो संतोष आनंद की गीतों की बड़ी पहचान है। और जिस तरह से वो गीत लिखते हैं, उनके गीतों में जिस तरह के संदेश होते हैं और जिस देशज भाषा का वो उपयोग करते हैं, वो सब इस गीत में नजर आता है, झलक दिखती है।

श्रोताओं, हर कलाकार का जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं होता। संतोष आनंद के जीवन में भी कठिन समय आया। उन्होंने निजी जीवन में बहुत दुख झेले और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रही जिनके चलते वो काफी डिप्रेस भी हो गए थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके चलते उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो कवि सम्मेलनों में जाते रहे, कविताएं सुनाते रहे और लोगों का प्यार पाते रहे। उनका मानना था कवि कभी हारता नहीं, वो अपने शब्दों में हमेशा जीवित रहता है। और यही बात संतोष आनंद जी को आज भी जिंदा रखती है। उनके शब्दों में, उनके गीतों में, उनके कहानियों में और उनके उस एहसास में जिसे आज भी हम

श्रोताओं, बात कर रहे हैं संतोष आनंद की और ये है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी में संतोष जी का एक गीत सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये शब्द जो संतोष जी के हैं, ये गीत जो संतोष जी के हैं, वो आज भी उसी तरह पसंद किए जाते हैं जब ये शुरू शुरू में आए थे। तो श्रोताओं, आज के सफर में हमने जाना एक ऐसे गीतकार को जिसने अपने शब्दों से करोड़ों दिलों को छुआ, संघर्ष किया, सफलता पाई, सम्मान पाया और दर्द भी सहा, लेकिन अपनी लेखनी का साथ कभी नहीं छोड़ा। यही है संतोष आनंद की कहानी। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन हाँ, जाते जाते संतोष आनंद जी का ये आखिरी गीत आप सबके लिए। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए IR Live News 24/7।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रो केमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। इस सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 वोटरों में से 32% से ज्यादा लोगों को गणन प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार शनिवार तक कुल 46,54,989 गणना प्रपत्र बांटे गए और 1,46,438 प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। SIR प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए थे। जैकब बैथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
2: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 651 Indian Army personnel serving under the United Nations have been awarded the prestigious United Nations Medal during a ceremonial medal parade held at the permanent operating base Sake in the Democratic Republic of the Congo. The medals were presented during a ceremony honoring the Indian contingent for its professionalism, operational excellence and dedicated service under the United Nations peacekeeping mission. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri said that ethanol is not a new concept and has been in use for over a century. Addressing a gathering in Rajasthan, Mr. Puri said that the government welcomes constructive criticism of the government's biofuel blending program and assured that the government will incorporate suggestions into its work and make the necessary corrections. A Delhi court rejected the bail pleas filed by Umar Khalid and Sharjeel Imam in Delhi riots conspiracy case. Additional sessions judge Sameer Bajpai of Karkar Duma court dismissed the bail pleas filed by both the accused persons. Heavy rainfall continued to batter several parts of Maharashtra, disrupting normal life across the state. Mumbai and its suburbs received intense showers, prompting the closure of schools in Mumbai, Thane and Palghar. Flood-like situations were reported from parts of Palghar district affecting road and rail traffic. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai, Thane, Palghar and the Ghat areas of Pune and Satara for the next 2 days, while an orange alert remains in force for the Ghat areas of Raigarh, Ratnagiri and Nashik. In FIFA World Cup, the round of 16 is underway between Morocco and Canada in Houston, Texas. Morocco is leading 1-0 against Canada. Azzedine Unahi broke the deadlock for Morocco in the second half of their FIFA match. In another round of 16 fixture, Paraguay will take on France at Philadelphia in United States. The match is scheduled to kick off at 2:30 a.m. In the ICC Women's T20 World Cup, England will take on Australia in the final at Lord's Cricket Ground in London today. The match will begin at 8 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आप सुनते हैं गोल्डन एरा के वो गाने जिनकी छाप आज भी हमारे दिलों पर ताजा है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24/7।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुनहरे और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म CID का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आपने सुना गोल्डन एरा के वो गाने जो हमारी, आपकी और हम सबकी पसंद है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक

0: टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग की कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना पत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: The monsoon session of the parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. J.S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation,

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत बहार का। आइए सुनते हैं गीत बहार कार्यक्रम। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज 24/7।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। रात के 3 बजने को है, ये वक्त होता है समाचारों का। पहले आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20

0: जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पहले 5 दिनों में 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और विदर्भ में आज मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्यूरेटेड CG सेमी स्टेट ऑफ द आर्ट आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन सानंद गुजरात यस्टरडे। Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विल कमेंस ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ। इट विल कंटिन्यू टिल द 13th ऑफ ऑगस्ट। Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Defence Minister Rajnath Singh highlighted India's significant progress in manufacturing and technology. The minister said countries' defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines growing global confidence in Make in India defence platforms. India's long-standing contribution to global peacekeeping mission received a significant recognition as 651 Indian Army personnel serving under the United Nations have been awarded the prestigious United Nations Medal during a ceremonial medal parade held at the Permanent Operating Base Sake in the Democratic Republic

ये आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 मैं हूं आपके साथ कीर्ति। कार्यक्रम गीत व गजलों का लेकर हाजिर हूं और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने वाले हैं गजलें और आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहली गजल के साथ।

सुनवा रहे हैं आपको जगजीत सिंह की आवाज में ये बेहद खूबसूरत गजलें। आइए अगली गजल सुनते हैं, होठों से छू लो तुम।

ये गजल हमें बताती है कि जो बीता हुआ वक्त है वो वापस नहीं आ सकता। खैर, आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गजलें, और अब कार्यक्रम को लेकर चलते हैं समाप्ति की ओर और सुनवाते हैं एक और गजल, चिट्ठी ना कोई संदेश।

0: इसी गजल के साथ गजलों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिलहाल सुबह के 4 बज चुके हैं, अब हमारा सुनिए अगले कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब प्रस्तुत है भगवान मुर्गन को समर्पित कुछ भक्ति रचनाएं। स्वर TM सौंदरराजन का है। अर्चना कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है NS चिदम्बरम की रचना

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

अभी आपने सुना कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्मा के अंतर्गत पोनकुन्नम रामचंद्रन का गायन राग मध्यमावती में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई 2024। सुबह के 4:53.46 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए आपको आज की प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। 5:20 पर देशभक्ति संगीत आप सुन सकेंगे। स्वरंजनी का कार्यक्रम होगा 5:30 पर। सुबह के 6:10 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम वंदना का।

6:40 पर चिंतन होगा, 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस, 7:10 पर संगीतिका रहेगा, साहित्य की कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 पर, हमारे अतिथि का समय रहेगा सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर सुनेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, आपकी पसंद कार्यक्रम होगा सुबह 10:10 पर। 11:10 पर कार्यक्रम सबरस होगा, सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 11:30 पर। दिन में 12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा, एक ही फिल्म से आप सुन सकेंगे दिन में 1:10 पर, एक ही कलाकार कार्यक्रम रहेगा 2:30 पर, 3 बजे होगा कार्यक्रम ब्रज माधुरी। दिन में 3:30 पर सुनेगा रेडियो किड्स, शाम 4 बजे आप सुनेंगे स्वांग के अंतर्गत किस्सा शाही लक्कड़हारा, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुन सकेंगे शाम 5:10 पर, दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी सुनिएगा शाम 5:30 पर, कार्यक्रम ग्राम संसार का समय होगा शाम 6:30 पर।

कृषि जगत का समय रहेगा शाम 7:05, 7:30 पर आप सुनेंगे बाइफकेट एआर लाइव न्यूज 24x7 और इंद्रप्रस्थ चैनल पर ये इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया

0: ये थे हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। फिलहाल सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मृगनयनी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा के उद्घाटन को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक नया कदम बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये एक टेक पावर हाउस के तौर पर भारत की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रावोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। देवघर में राज्य स्तरीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति को अंतिम रूप दिया। पहली बार कांवड़ियों के मार्ग पर रियल टाइम निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 24 घंटे व्हाट्सएप आधारित मॉनिटरिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:10 हो चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। आज आप जानेंगे भद्रासन और अश्वत्थासन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए ऑफिस में बैठ

और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं। पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव, यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह की 5:20 होने को हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं देशभक्ति संगीत। सबसे पहले सुनिए सतीश भाटिया के स्वर में

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति संगीत।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह की 5:30 होने को है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी। आपको सुनवाते हैं निपा चौधरी का गायन राग बैरागी में।